पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:56 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा।

0: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। आइए हम आपको हिंदी समाचार सुनने के लिए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में

0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती वंदन वार।

Chintan. संस्कृत का एक श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात जो आलस करते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती, जिनके पास विद्या नहीं होती वो धन नहीं कमा सकते, जो निर्धन हैं उनके मित्र नहीं होते और मित्र के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये था चिंतन। अब

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरोखा लिखा जोखा आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कान आज भाग 225। संगीत सरिता कार्यक्रम में चल रही है श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक पंडित SL कंडारा। आज तीसरी कड़ी होगी सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर।

सुबह 8:30 पर चित्रलोक, सुबह और शाम 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा जो केंद्रित होगा निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। सुबह 10 आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी, कहानी निवेदिता श्रीवास्तव की, संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 चित्रपट संगीत, 11:30 पर मैटिनी शो कार्यक्रम में विश्व योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम सुनवाया जाएगा, योगीराज भारत भूषण भारतेंदु से बातचीत योग के विषय पर। 12:05 पर यादों की महफिल, 1 सुरीला सफर। 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे। दिन में 3 मनचाहे गीत कार्यक्रम होगा, 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत आप नाटक सुनेंगे मृत्युहीन प्राण। मृत्युहीन प्राण नाटक का पहला भाग आज सुनवाया जाएगा, मूल बांग्ला नाटक आलोक भट्टाचार्य का, हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठौलिया, प्रस्तुतकर्ता सुदर्शन कुमार। कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से बातचीत का तीसरा भाग सुनवाया जाएगा बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में शाम 4 शाम 5 छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिएगा संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार तीसरा भाग। जाने माने अभिनेता अमरीश पुरी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम शाम 7:00। 7:45 पर जिज्ञासा। रात 8 हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में कहानी स्वामिनी का तीसरा भाग, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, वाचन ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। 8:15 पर सुनिएगा चित्रलोक, 8:45 पर समाचार, 9 आपके लिए। रात 10 छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात 11 आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। तो ये था लेखा जोखा आज दिन भर के मुख्य कार्यक्रमों का, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने रामचरितमानस गान, आज भाग 225।

भरत तथा कुलगुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या तथा जनकपुर से आए सभी लोग चित्रकूट में 4 दिनों से निवास कर रहे हैं। श्री राम को देख सभी नरनारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हें वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि दैव अनुकूल हो तभी राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय देख राजा जनक का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया, उन्हें उचित सम्मान से आसन दिए। दोनों टोलियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिथिल हैं, उनकी आंखों में

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का पुनश्च स्वागत है और स्वागत है जाने माने संगीतज्ञ वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा जी का। पंडित जी, वायलिन का विहंगम संसार ये शीर्षक भी आप ही का।

0: दिया हुआ है
1: जी।
0: वायलिन की व्यापकता की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि फिल्म संगीत में कितना अधिक इसका इस्तेमाल हुआ है।
1: बिल्कुल जयंत जी, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। और इस बाजे की व्यापकता को आप देखिए कि पाश्चात्य संगीत में गज के बाजों में इसकी प्रमुखता सिद्ध हुई
0: जी।
1: और बड़े बड़े कंपोजर्स ने इस पे काम किया और बहुत अच्छा काम हुआ। और उनको देख के हिंदुस्तान में भी ये बाजा जब आया
0: जी,
1: तो हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे क्लासिकल और वेस्टर्न भी, जुबिन मेहता का मैं नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने भी इस बाजे का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया अपनी सिम्फनी में। और फिल्म म्यूजिक की बात करें आप तो फिल्मों में तो इसका लाजवाब इस्तेमाल हुआ है। एक ज़माना था 50-50 वायलिन इस्तेमाल होते थे फिल्म स्टूडियोज़ में, और उस ज़माने में इतने अच्छे अच्छे इस पे पीसेस बने, इतना अच्छा अच्छा काम हुआ कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। श्रोताओं को आप एक पीस जरूर सुनाएं लेकिन फिल्म का, जो कि हृदयनाथ मंगेशकर जी ने कंपोज किया हुआ है
0: जी, आशा जी की आवाज में होगा।
1: एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से झूठे नए ना बोले सांची बतिया
0: जी जी, ये वो गीत है। और इस गीत में जो ग्रुप वायलिन बजा है
1: जी,
0: आप उस झलक की बात,
1: उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल,
0: तो उस गीत की ये झलक जहाँ खास तौर से ग्रुप वायलिन बजाया गया है, पहले अपने श्रोताओं को सुनाते हैं फिर उस पर बात करें।

0: क्या बात है, मजा आ गया पंडित जी। लग रहा था कि बस इसे सुनते ही चले जाएं, मगर इसकी विशेषता के बारे में आप बताइए।
1: इस गाने में, इस गीत में जिस तरह से हृदयनाथ मंगेशकर जी ने वायलिन का इस्तेमाल किया
0: जी,
1: मेरे ख्याल से 25-30 वायलिन जरूर होंगे, क्योंकि मैं तो जब गाना रिकॉर्ड हुआ तब उपस्थित नहीं था, तो उसका अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितना सारे वायलिन उसमें बजे हैं और किस दक्षता के साथ वो ऑर्केस्ट्राइजेशन हुआ है।
0: जी हाँ जी,
1: फिल्म में अच्छे अच्छे काम हुए हैं इस बाजे के साथ। और ये वहाँ से अगर शुरू करें आप, रोशन साहब के ज़माने से, मदन मोहन जी के ज़माने से, या नौशाद साहब के ज़माने से, तो एक से एक गीतों में इस वाद्य की उपस्थिति आपको प्रभावित करेगी। और बहुत अच्छे अच्छे पीसेज हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बनाए हैं
0: जी
1: इस वाद्य को लेके। एक गीत मुझे याद आता है, वैसे तो कई सारे गीत हैं जिनका जिक्र करना संभव नहीं यहाँ पे, लेकिन नौशाद साहब का एक गीत आप बजा सकते हैं जिसमें बहुत संजीदा किस्म के पीस उन्होंने इस्तेमाल किए हैं
0: जी।
1: कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई,
0: वाह,
1: लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई।
0: बहुत ही खूबसूरत गाना है
1: जी,
0: आइए सुनते हैं।

0: पंडित जी, ये तो हुई ग्रुप वायलिन की बात
1: जी।
0: जब समूह में वायलिन बजता है, सोलो वायलिन का भी बड़े खूबसूरत ढंग से इस्तेमाल हुआ है फिल्म संगीत में, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: देखिए, सोलो वायलिन को लेके भी इसमें अच्छे अच्छे पीसेस लगाए हैं लोगों ने, और प्यारे लाल जी, लक्ष्मीकांत जी
0: जी
1: जो पुराने संगीत निर्देशकों में रहे, प्यारे लाल जी का तो एक स्कूल ही था, फिल्म म्यूजिक सिखाते थे वो, मतलब फिल्म वाले लोग सब उनके शागिर्द थे वायलिन को लेके। और प्यारे लाल जी के पिताजी, शायद उनका नाम रामप्रसाद जी था, वो बहुत प्रचलित थे पूरे बंबई में गुरु के रूप में सिखाने में, और प्यारे लाल जी खुद अच्छा वायलिन बजाते थे, तो उनके हिसाब से कुछ उनमें उन्होंने कुछ पीसेस दिए हैं। जैसे एक शायद मुझे याद आ रहा, शोर फिल्म, अगर आपको याद आ रहा हो,
0: मनोज कुमार निर्देशित
1: जी जी जी,
0: और इसमें जो गीत है एक प्यार का नगमा है,
1: एग्जैक्टली
0: इसमें बहुत ही सुंदर वायलिन का पीस बजाया है प्यारेलाल साहब ने,
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाए,
1: बिल्कुल श्रोताओं को सुनवाइए।

0: शोर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पंडित जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का उल्लेख हो रहा है आने वाली अगली कड़ी में। प्यारेलाल साहब ने जहां जहां अपना वायलिन वादन जिन गीतों में इस्तेमाल किया है उसका हम विस्तार से जिक्र करेंगे, उसकी बात को आगे बढ़ाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: आज की ये कड़ी यही समाप्त हो रही है। श्रोताओं, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: बिल्कुल, नमस्कार।
2: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

आइए सुने भूले बिसरे गीत। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। लता मंगेशकर के एक बेमिसाल गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं। जिद्दी फिल्म का ये गाना, एक बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म जिसके जरिए कई कलाकारों की शुरुआती यात्रा थी, और प्रेम धवन के बोलते खेमचंद प्रकाश की तर्ज इस गाने में साल 1948 ये फिल्म बनाई थी शाहिद लतीफ ने।

चंदा रे जा रे जा रे, ये गीत आपने सुना। देवानंद और कामिनी कौशल जिद्दी फिल्म के सितारे थे और खेमचंद प्रकाश का संगीत था। इस फिल्म के बारे में ये जो कहा कि ये फिल्म कई सितारों के करियर की शुरुआती फिल्म थी। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, ये किशोर कुमार का गाना था जो उनका शुरुआती प्लेबैक था। अब इत्तेफाक की बात ये है कि अगला गाना है मुकेश का और वो उनका शुरुआती प्लेबैक है।

0: डॉक्टर सफदर आह का लिखा हुआ ये गीत था, अनिल विश्वास की तर्ज थी, 1945 की फिल्म मुकेश की आवाज। जैसे कि मैंने कहा कि ये पार्श्वगायक मुकेश का पहला प्लेबैक था। दरअसल मुकेश का जो पहला गाना है वो ये नहीं है, फिल्म निर्दोष में 1941 में उन्होंने गाना गाया था, दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या, लेकिन ये प्लेबैक नहीं था क्योंकि ये गाना उन पर ही फिल्माया गया था, इस फिल्म के हीरो भी वही थे। दरअसल मुकेश और तलत महमूद ऐसे दो प्लेबैक सिंगर रहे हैं जिन्हें एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक रहा है और उन्होंने कुछ फिल्में भी की। यहां किशोर कुमार का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो तो बाकायदा एक्टर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट क्या नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए साल 1950 पर, चितलकर और साथी, गीत पी एल संतोषी का, संगीत सी रामचंद्र का।
1: ए, मैं हूँ एक खलासी, मैं हूँ एक खलासी,
2: तेरा नाम?
1: मेरा नाम है भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी, खलासी भीम पलासी।

0: 1950 में आई फिल्म सरगम का ये गाना था। चितलकर और साथियों की आवाजें थी। पीएल संतोषी के बोल थे। पीएल संतोषी यानी प्यारे लाल संतोषी आज के जमाने के जाने माने लेखक निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता, और संगीत खुद सी रामचंद्र का था।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: कौन लाया, कौन लाया?
0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: 21 जून को है विश्व योग दिवस और इस बार की थीम है बढ़ती उम्र के साथ योग। विविध भारती लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। हमारे खास मेहमान हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
1: बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है श्वास से रिलेटेड, श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है। मैटिनी शो 20 जून सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से आप भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और 1950 में आई एक फिल्म का गाना हमने ब्रेक के पहले आपको सुनवाया था। अभी हम 1950 में ही रहेंगे। फिल्म बाबुल का गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं। एस यू सनी की यह फिल्म नौशाद के संगीत के लिए जानी जाती है। शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में ये गाना शकील बदायूनी के बोल, दिलीप कुमार और नरगिस थे इस फिल्म में।

बोले बिसरी गीत कार्यक्रम का अगला गाना सुरैया की आवाज में है, पंडित नरेंद्र शर्मा की बोल, एस डी बर्मन की तर्ज और फिल्म का नाम अफसर।

देवानंद और सुरैया ने एक साथ कई फिल्में की, उनमें से एक थी ये यादगार फिल्म। और अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और अमीर बाई कर्नाटकी की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत। संगीत सी रामचंद्र का है, फिल्म का नाम समाधि। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, और ये गाना अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध गाने पर बना था, चिको चिको ओ पोर्टो रिको।

सावन फिल्म के एक गाने का ये उदास संस्करण है जो बहुत ज्यादा सुनाई नहीं देता। लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत हंस राज बहल का था और ये था आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम।

0: जून को है विश्व योग दिवस और इस बार की थीम है बढ़ती उम्र के साथ योग। विविध भारती लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। हमारे खास मेहमान हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
1: बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है श्वास से रिलेटेड, श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम वंदन वार चिंतन श्री रामचरितमानस, संगीत सरिता और भूले बिखरे गीत। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

श्रोताओं, ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 20 जून वर्ष का 171वां दिन है और लीप ईयर की बात करें तो 172वां दिन, यानी साल 2026 में अभी 194 दिन बाकी हैं। दोस्तों, आज विश्व शरणार्थी दिवस है, यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर के उन शरणार्थियों के साहस और संघर्ष को सम्मान देना है जिन्हें युद्ध, हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था।

कार्यक्रम नमस्ते रोहतास सुनने वाले सभी श्रोताओं को मुमताज अहमद का नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं संतोष कुमार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बकौल, हमें हार नहीं माननी चाहिए और समस्या को हमें हराने की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए।

श्रोताओं, अब नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन यानी 20 जून 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता को अंग्रेज़ों से दोबारा छीन लिया था। और आज ही के दिन यानी 20 जून 1943 ईस्वी को रॉयल एयरफोर्स ने लॉन्च किया था जंगी ऑपरेशन युद्ध की पहली शटल बमबारी। मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस लोगों के लिए आज ही के दिन यानी 20 जून 1887 ईस्वी को खोला गया था। आज यह देश के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है। ईरान में आए भूकंप से लगभग 40,000 लोग मारे गए थे। ये भूकंप आज ही के दिन यानी 20 जून 1990 ईस्वी को आया था।

विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर कैमनिक को हराकर पांचवें फ्रैंक फर्स्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट का खिताब आज ही के दिन यानी 20 जून 1998 ईस्वी को जीता था। काहिरा यानी मिस्र में ग्रुप 15 देशों का शिखर सम्मेलन आज ही के दिन 2000 में संपन्न हुआ था। 2005 में आज ही के दिन रूस का मालवाहक यान M53 इंटरनेशनल यूनिवर्स स्टेशन पहुंचा था और जापान ने अपनी सेना को इराक से वापस बुलाने का निर्णय आज ही के दिन यानी 20 जून 2006 ईस्वी को लिया था।

यूरोपीय संघ ने क्यूबा पर लगे प्रतीकात्मक प्रतिबंध को हटाने का निर्णय भी आज ही के दिन 2008 ईस्वी में लिया था। बीज बनाने वाली कंपनी औदात लिमिटेड इंडिया ने अमेरिकी कंपनी लिमाग्रेन के सोयाबीन बीज के कारोबार का अधिग्रहण आज ही के दिन यानी 20 जून 2008 ईस्वी को किया था और मशहूर कवि केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा 20 जून 2014 ईस्वी को की गई थी।

श्रोताओं, अब जान लेते हैं आज के दिन यानी 20 जून को जन्म लेने वाले महापुरुषों के बारे में। तो सबसे पहले हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म आज ही के दिन यानी 20 जून 1958 ईस्वी में हुआ था। जाने माने साहित्यकार, उपन्यासकार और कवि विक्रम सेठ का भी जन्म 20 जून 1952 ईस्वी

को हुआ था और आज ही के दिन फेमस भारतीय हिंदी साहित्यकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का जन्म भी आज ही के दिन 1940 ईस्वी को हुआ था। पत्रकार और लेखक गौर किशोर का जन्म भी 20 जून 1923 ईस्वी को हुआ था। हिंदी के फेमस एकांकीकार भुवनेश्वर का जन्म भी आज ही के दिन यानी 20 जून 1910 ईस्वी को हुआ था और भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मण काशीनाथ का भी जन्म आज ही के दिन 1869 ईस्वी को हुआ था।

सन 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेजली का जन्म भी आज ही के दिन यानी 20 जून 1760 ईस्वी को हुआ था, और महान विजेता सिकंदर का जन्म भी आज ही के दिन यानी 20 जून 356 बीसी में हुआ था, यानी ईसापुर में हुआ था। फेमस अभिनेता राजेंद्र कुमार का भी जन्म 1929 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ था, और फेमस अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भी आज ही के दिन 1950 ईस्वी में पैदा हुए थे। और माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कदम रखने वाले सर एडमंड हिलेरी का जन्म भी 20 जून 1919 ईस्वी को हुआ था।

श्रोताओं, अब जान लेते हैं आज के दिन यानी 20 जून को हमसे कौन कौन से महान पुरुष अलविदा कह गए। हिंदी के पत्रकार और साहित्यकार वेंकटेश नारायण तिवारी का निधन आज ही के दिन यानी 1965 ईस्वी को हुआ था और राजा विलियम चतुर्थ की मौत आज ही के दिन 1837 ईस्वी में हुई थी और उनकी मौत के बाद विलियम चतुर्थ की भतीजी विक्टोरिया उत्तराधिकारी बनी थी।

श्रोताओं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर नज़र डालने से पहले आइए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म राजा और रंग से। इसके गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण पूरे देश के साथ साथ कैमूर जिला में भी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। ये नई योजना वर्तमान संचालित महात्मा गांधी नरेगा योजना को प्रतिस्थापित करेगा। इस योजना के मुख्य विशेषताओं में प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार का वैधानिक गारंटी दी जाएगी, जिससे ग्रामीण परिवारों का

आय शुल्क माफ कीजिएगा, जिससे ग्रामीण परिवारों का आय सुलभ एवं सुदृढ़ होगी। इस योजना के चार मुख्य फोकस क्षेत्र हैं, जैसे जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसम घटनाओं से निपटने हेतु कार्य।

कैमूर जिला प्रशासन द्वारा जनता के समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले के सभी कार्यालयों में जन संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायतों तक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आम नागरिकों से सीधा संवाद किया। जिला पदाधिकारी महोदय के जनता दरबार में विभिन्न विभाग से संबंधित 29 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका नियमानुसार त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। ऑनलाइन पोर्टल पर किए गए प्रविष्टि के अनुसार आज अब तक जिला मुख्यालय स्तर पर कुल 24 अधिकारियों ने 49 नागरिकों के साथ संवाद स्थापित किया। जिले के कुल 11 प्रखंडों में 37 अधिकारियों की उपस्थिति रही, जहां 62 नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। थानों में आयोजित संवाद कार्यक्रमों में 10 अधिकारियों ने 35 नागरिकों के साथ संवाद किया। सबसे व्यापक प्रभाव पंचायत स्तर पर देखा गया, जहां 54 अधिकारियों ने कुल 96 नागरिकों से सीधे बात की। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी तंत्र को सीधे जनता के द्वारा जनता तक ले जाना है।

श्रोताओं, अब नज़र डालते हैं आज के मौसम पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज वर्षा 6 मिलीमीटर बताई गई है और अधिकतम तापमान की यदि बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 45% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 20%। हवा की गति की यदि बात करें तो हवा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी या चलने की संभावना है। पवन की दिशा 280 डिग्री और क्लाउड कवर 4 ओक्टा। मौसम चेतावनी की अगर बात करें तो आंधी और बिजली, तूफान आदि तेज सतही हवाएं चलने की संभावना आज हैं। मौसम की जानकारी अब यहीं संपन्न होती है। अब नज़र डालते हैं आज के अखबार की सुर्खियों पर।

रोज़ की तरह आज भी हमारे पास कई अखबार हैं, जैसे हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर इत्यादि। लगभग सभी अखबारों में जिन खबरों को प्रमुखता दी गई है उनमें क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश डीएसपी बनाए गए, ये सुर्खियां सभी अखबारों में दी गई हैं। मुकेश कुमार गोपालगंज के रहने वाले हैं और आकाशदीप रोहतास के सासाराम के निवासी हैं।

पर्व मुहर्रम के अवसर पर 3 दिन बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित। जिन तारीखों में ये बिजली बाधित रहेगी उनमें 24 जून, 25 जून और 26 जून।

बिहार के अधिकांश भागों में बढ़ी रहेगी गर्मी। स्टार्टअप व उद्योग के लिए होगा बिहार टेक पोर्टल का निर्माण, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार। सदर अस्पताल सासाराम में शुरू हुआ आईसीयू 12 बेडों का डायलिसिस वार्ड भी तैयार।

अभी आप सुन रहे थे अखबार की सुर्खियाँ। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं एक और गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म एक फूल दो माली से। इसके गीतकार हैं प्रेम दमन और संगीतकार रवि। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की, और फिल्म का नाम है एक फूल दो माली।

इसी के साथ कार्यक्रम नमस्ते रोहतास अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। अपने रेडियो दोस्त मुमताज को दीजिए इजाज़त।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा।

जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
5: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे

0: जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नारायणपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: We have been able to achieve that in the first.
5: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
4: They are all designed in India now.
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
6: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
3: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों की सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से समाचार FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 8:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति संगीत। ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म कर्मा से। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आवाज़ें हैं दोस्तों मोहम्मद अजीज़, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की।

देशभक्ति संगीत अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड के 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 8:20 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी का। कार्यक्रम का पहला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म संगम से। इसके गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन। आवाज़ें हैं दोस्तों मुकेश कुमार और बैजंती माला की। इस गीत के फरमाइश करने वाले आप श्रोता हैं कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन, सदफ आरजू, साहिल अरमान, शमा परवीन, सादिया तस्नीम और आलिशा। पुराना दाऊद नगर से आप हैं सैयद सरफराज अहमद, खुर्शीद अहमद, राजेंद्र कुमार। इसी गाने की फरमाइश करने वाले आप श्रोता भी हैं नाज मंजिल मेहसौल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, बच्चू शेख और चीना शेख। इसी की फरमाइश करने वाले आप श्रोता भी हैं कलेर बिहार से मोहम्मद हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, आबिहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू। तो लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश का ये गीत।

रिफा जहानाज, नुजहा जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। और आपने फरमाइश किया है जो आप हैं इस गाने के लिए, वो हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर राही, श्रीमती सरिता गवानकर, प्रिंस एकांक गवानकर। बदलापुर मुंबई से आप हैं सिद्धांत गवानकर, प्रणीता गवानकर, अर्जुन गवानकर। और आकार हाइट्स बहादुर, माफ़ कीजिएगा, बहादुरा नागपुर से आप हैं वैशाली शैलेश, सुमित गवानकर और कुमारी ध्वनि गवानकर यानी परी।

0: बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं
1: नहीं नहीं, नहीं।

कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म जीने की राह से। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आवाज़ें हैं दोस्तों लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। इससे पहले जो आप सुन रहे थे गीत, उसे हमने लिया था फिल्म संगम से। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। तो लीजिए सुनिए फिल्म जीने की राह का ये गीत। इस गीत के फरमाइश करने वाले आप श्रोता हैं फूटानी चौक नरहन स्टेज से ललन मिश्रा, उदय कांत ठाकुर

अमन पराशर, बेबी आराध्य और लल्लू पंडित। मिसर मोहल्ला नरहन बाज़ार से आप हैं भाई फटफटिया झा, गुंजन पराशर, अमित सुमित छोटू, बी के सुर गनैया। आप हैं सरगुजा मैन पाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी से आप हैं परवीन डोम, शरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से आप हैं वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। और आप हैं बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार से आप हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, डॉक्टर माफ़ कीजिएगा दानिश अंसारी। और समस्तीपुर से आप हैं, माफ़ कीजिएगा, सरीमपुर बक्सर से आप हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। जेल रोड दिल्ली से आप हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती।

बिहारी कॉलोनी से आप हैं परवीन डोम, शरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से आप हैं वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। और आप हैं बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार से आप हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, डॉक्टर माफ़ कीजिएगा दानिश अंसारी। और समस्तीपुर से आप हैं माफ़ कीजिएगा सरीमपुर बक्सर से आप हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। जेल रोड दिल्ली से आप हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। तो लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश का ये गीत।

इसी गाने की फरमाइश आप सबों ने भी की है। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कलां गाजीपुर से आप हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय।

कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म दुश्मन से। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आवाज़ है लता मंगेशकर की। फरमाइश करने वाले आप श्रोता हैं फुटानी चौक नरहन स्टेज से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये

इस गीत के लिए फरमाइश आप सबों ने भी भेजी है, ताजपुर मोरवा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जय श्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक और ललन मिश्रा। ग्राम बिलाड़ी सासाराम से आप हैं उपेंद्र पासवान, दिलीप कुमार और अर्जुन कुमार।

इसी गाने की फरमाइश करने वाले आप हैं थाना मोड़े गढ़ नोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन निशा, सदाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शहबाज। आप हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा।

कार्यक्रम का आखिरी गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म चोरी चोरी से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की। इसके गीतकार हैं हसरा जयपुरी और संगीत का शंकर जयकिशन। फरमाइश करने वाले आप श्रोता हैं ज़िला भोंगिर तेलंगाना से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, यूसुफुद्दीन, फजलुद्दीन, फरहानुद्दीन, रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, गोकुल चौक गंगजला सहरसा से आप हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजन कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की वाली, फलना झा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार और निराला।

इसी गाने के लिए आप सबों ने भी फरमाइश की है, कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी। जमशेदपुर से आप हैं डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर इशिता साहनी, डॉक्टर प्रियंका मोदी, डॉक्टर सोनम अली और मोहम्मद अफजाल मलिक। आप हैं ब्रह्मपुरा मनीगाछी से भाई अच्छे लाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार राय और प्रिंस राय।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले।
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया, जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: पसंद आपकी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। मुमताज अहमद को दीजिए इजाज़त। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 8:45 हो चुके हैं। आइए हम आपको प्रादेशिक समाचार और संदेश सुनने के लिए आकाशवाणी के पटना केंद्र ले चलते हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
6: तरीक़ेकार की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
7: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
8: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
9: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
8: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
10: बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों व बहनों ध्यान दें, जहां हो आपके हक की बात सहायता कॉल सेंटर दे आपका साथ हर बार। अगर आपको चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी या अपनी शिकायतों का समाधान, तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-345-6345।
11: सभी दिवस पर सुबह 6 से रात 10 तक सहायता आपके हक और तरक्की का साथी।
10: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
12: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
13: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
14: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
12: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉकड्रिल का आयोजन करेगा। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने से मिली भीषण गर्मी से राहत। वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम से श्री मोदी 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में योजना की राशि आएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह नई ट्रेन राजस्थान और मिथिला क्षेत्र के बीच रेल संपर्क को और सुदृढ़ बनाएगी। सप्ताह में 6 दिन संचालित होने वाली यह ट्रेन खातीपुरा से शाम 5:45 पर प्रस्थान करेगी और लगभग 25 घंटे की यात्रा के बाद अगले दिन शाम 6:30 पर दरभंगा पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन दरभंगा से रात 9:15 पर रवाना होगी और अगले दिन रात 10:30 पर खातीपुरा पहुंचेगी। अपने मार्ग में यह ट्रेन अलवर, मथुरा, कानपुर, बाराबंकी, गोरखपुर, बगहा, नरकटियागंज, रक्सौल और सीतामढ़ी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में जांच तेज कर दी है। एजेंसी ने निलंबित आईएएस अधिकारियों योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा के आवासों समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। साथ ही एसवीयू ने एक निर्माण कंपनी के निदेशक पवन कुमार के आवास पर भी तलाशी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान दोनों आईएएस अधिकारी अपने आवास पर नहीं मिले। यह कार्रवाई ठेकेदार रिशो श्री से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर की जा रही है। आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने रिशो श्री की कंपनियों को टेंडर दिलाने में मदद की थी। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रिपोर्ट और एसवीयू में दर्ज प्राथमिकी के बाद राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉकड्रिल का आयोजन करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। परीक्षा के लिए राज्य के 34 जिलों में 331 केंद्र बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षा में 1,56,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इधर नीट परीक्षा को देखते हुए पटना के बापू परीक्षा परिसर के आसपास आज विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। कुम्हरार मार्ग पर ऑटो, ई रिक्शा और भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं परीक्षा के मद्देनजर बेली रोड पर मेट्रो कार्य के लिए आज से प्रस्तावित ट्रैफिक ट्रायल भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक

0: भ्रामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। राज्य सरकार ने क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप को पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2026 के तहत यह अनुशंसा की गई है। गोपालगंज निवासी मुकेश कुमार और रोहतास के आकाशदीप तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने कई अहम मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। गृह विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियुक्ति की तिथि से अगले 5 साल तक दोनों खिलाड़ियों को सक्रिय रूप से प्रतियोगिताओं में भाग लेना अनिवार्य होगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल मुख्य समारोह कोलकाता में आयोजित होगा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न भागों में भी योग शिविरों और योग जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य शामिल होंगे। पटना उच्च न्यायालय में भी इस अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन होगा। राज्य के प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में योगाभ्यास सत्र का आयोजन होगा। लोक आस्था के महापर्व छठ का पारंपरिक प्रसाद ठेकुआ का स्वाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया स्लोवाकिया दौरे के दौरान वहां की संसद के स्पीकर रिचर्ड राशी को उपहार स्वरूप ठेकुआ प्रदान किया। प्रधानमंत्री के इस कदम को बिहार और पूर्वांचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ठेकुआ उपहार स्वरूप दिए जाने से राज्य के पारंपरिक खान पान को नई वैश्विक पहचान मिली है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, साथ ही राज्य के दक्षिणी भाग में लू की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के पूर्वी भाग एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर होने चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। वैशाली में 3, शेखपुरा में 2 तथा नवादा और जमुई में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने सबौर हर्षित नामक धान की उन्नत किस्म विकसित की है, जो कम बारिश और सीमित सिंचाई की परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन देने में सक्षम है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार

पर सबौर हर्षित धान की फसल लगभग 115 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि अनुकूल परिस्थितियों में इससे 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यह किस्म सूखा सहनशील होने के साथ साथ कम पानी और उर्वरक की आवश्यकता वाली मानी जाती है। प्रदेश में पिछले 7 महीनों में रोजगार के 63,115 नए अवसरों का सृजन किया गया। वहीं बिहार रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 68,822 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में 7 निश्चय 3 की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के निर्देश दिए। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा के 1,799 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। मुख्य परीक्षा में 10,759 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफल अभ्यर्थियों के लिए अब शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। यह परीक्षा 27 मई को आयोजित की गई थी। 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा के लिए नोडल संस्थान भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की ओर से जारी परिणाम के अनुसार वैशाली के हिमांशु अजनबी और कटिहार के रवि कुमार ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया है। दोनों ने 120 में 117 अंक प्राप्त किए हैं। छात्राओं में सीतामढ़ी की अंजना और बेगूसराय की प्रियंका पासवान संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहीं। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 12 जुलाई को होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों के ई प्रवेश पत्र 22 जून से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में थानाध्यक्ष राजीव रंजन को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पुलिस पदाधिकारी पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। इधर बिहार राज्य महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक से अब तक कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन मांगा है। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 30 लाख रुपए मूल्य की 304 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बरामद की है। छापेमारी के दौरान 2,02,000 रुपए, 5 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान 2 तस्कर मौके से फरार हो गए। नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने साइबर ठग गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 54,84,000 रुपये, सोने चांदी के आभूषण, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल पक्कैया नदी में नहाने के दौरान डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। गया जिले के नक्सल प्रभावित लटुआ थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 5 किलो का आईईडी बरामद किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बिहार दौरे से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, रेल मंत्री और सीएम ने छपरा से आनंद विहार नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, 5 वर्षों में बिहार को मिलेंगी 200 नई ट्रेन। प्रभात खबर नीट यूजी पुनर्परीक्षा पर लिखता है, एनटीए का परामर्श, डाउनलोड करें नया एडमिट कार्ड, बदल सकते हैं परीक्षा केंद्र। दैनिक भास्कर ने लिखा है, दारोगा भर्ती, अब एक पद के लिए 6 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। राष्ट्रीय सागर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, पटना शहर से बाहर होंगे सारे कोचिंग सेंटर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। विशेष निगरानी इकाई ने बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन करेगा। और राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने से मिली भीषण गर्मी से राहत। वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।

अभी आप सुन रहे थे पटना से प्रादेशिक समाचार और संदेश FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। सुबह के 9:06 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक झलक।

अब से कुछ देर बाद यानी 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मालिका के अंतर्गत कुछ हिंदी फिल्म संगीत। 10:30 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार।

प्रातः 10 बजे हम आपको ले चलेंगे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 10:05 पर समय होगा कार्यक्रम विकास के सोपान का। इस कार्यक्रम के सूत्रधार होंगे लाल बहादुर दुबे और प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। प्रातः 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक माधुरी के अंतर्गत कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत रसधार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 10:45 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स।

शाम 5:30 पर समय होगा कार्यक्रम युववाणी का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। शाम 6 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत और 6:05 पर समय होगा भोजपुरी समाचार बुलेटिन का, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी का समय होगा शाम 6:10 पर, और 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ गीत के अंतर्गत कुछ भोजपुरी फिल्म संगीत। गुड इवनिंग रोहतास, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:15 कर शाम में, और शाम 7:25 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और ज़िले की हलचल। हेलो मन पसंद, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:50 पर, और प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे 8:00।

8:15 पर शाम में फिर समय होगा कार्यक्रम हेलो मन पसंद का। ये कार्यक्रम 8:45 पर तक चलेगा और 8:45 में हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत कुछ भोजपुरी लोकगीत। 9:15 पर समय होगा कार्यक्रम महफिल का और 9:30 में हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 10:00 समय होगा कार्यक्रम रसरंग का और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट तराने के अंतर्गत कुछ हिंदी फिल्म संगीत। ये था आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। सुबह के 9:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मलिका के अंतर्गत कुछ हिंदी फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत।

ये गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म राजा से। इसके गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। आवाज़ें हैं दोस्तों उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे हमने लिया है फिल्म निकाह से। इसके गीतकार हैं हसन कमाल और संगीतकार रवि, आवाज़ है महेंद्र कपूर की।
1: अभी अलविदा मत कहो।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है फिल्म फूल और कांटे से, आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, इसके गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

कार्यक्रम गीत मलिका में ही संपन्न होता है। मुमताज़ अहमद को दीजिए इजाज़त। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 9:30 होने वाले हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: यह हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितो ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

0: करना।
1: बासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था।

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमति और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रचे और इसका संगीत कनूर रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका यह विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई, आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनू रॉय।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही। हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए, गृह प्रवेश।

0: अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।
1: वो

दासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। बासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी।

0: वटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में बासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच, आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 बासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

20 जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्यन। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये सी

0: पास जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचकल करंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचकल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री इचकल करंजी के कल्पंगना अवडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिनमें पर्यवेक्षकों, कोऑर्डिनेटर, पुलिस बल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। एनटी ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीकों को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी।

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आकलन किया गया और आगे की रणनीति तैयार की गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माही में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से समाचार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 10:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान।

श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है विकास कार्य तथा योजनाओं से संबंधित जानकारियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान और इस अंक के साथ मैं लाल बहादुर दुबे। श्रोताओं 21 जून वैसे तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात के रूप में जाना जाता है, लेकिन 2015 से इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के प्रति जागरूक करना है। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार आज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, मानव को नई नई सुख सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हुई हैं, उसी प्रकार सुख सुविधाओं के चलते मानव जीवन में शारीरिक श्रम का अभाव हुआ है, जिस कारण मानव शरीर को अनेक रोगों जिनमें हाई बीपी, शुगर, अस्थमा, मोटापा, माइग्रेन, सिरदर्द, सर्वाइकल, बैक पेन, अर्थराइटिस वगैरह ने घेर लिया है, उन सभी का निजात अगर संभव है तो वह योग में है। योग केवल शारीरिक क्रिया या व्यायाम ही नहीं है, अपितु यह सर्वांगीण विकास की क्रिया है जो न केवल शरीर पर अपितु मन, बुद्धि और अंतरात्मा को शुद्ध करता है। मानव जीवन में योग की उपयोगिता इस बात से समझी जा सकती है कि योग एक सुखी जीवन जीने की कला है, वहीं शरीर के संबंध में यह केवल शरीर को ऊर्जान्वित ही नहीं करता अपितु मानव के अंदर आत्मविश्वास का संचार भी करता है। नियमित योग करने से सदाचार और नैतिकता को अकूत बल मिलता है। श्रोताओं योग स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है जिसकी उत्पत्ति आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व भारत में हुई। अब इसे पूरे विश्व भर में विज्ञान की एक शैली के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। पाश्चात्य देशों में भी इसे वैज्ञानिकों के द्वारा व्यायाम की एक स्वस्थ शैली के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। यद्यपि योग की उत्पत्ति कैसे हुई इस संदर्भ में अनेक मत हैं, लेकिन यह लंबे समय से चली आ रही एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक परंपरा है जिसका उद्भव सर्वप्रथम केवल और केवल भारतवर्ष में ही हुआ, जिसके अनेक साक्ष्य और प्रमाण हैं। सर्वप्रथम योग का वर्णन विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में आता है। इसके अलावा उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, शिव संहिता, पतंजलि योग सूत्र, गौरक्ष संहिता, हठ योग प्रदीपिका, हठ रत्नावली वगैरह प्राचीन ग्रंथों में भी योग का विस्तृत वर्णन मिलता है। एक सामान्य जन के लिए योग में यम, नियम, षटकर्म, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान आदि के अभ्यास हैं जो व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ और भावात्मक रूप से संतुलित रखते हैं, जिस पथ पर चलकर व्यक्ति अध्यात्म के उच्च शिखर यानी समाधि को प्राप्त कर सकता है, जिसे

0: मोक्ष या कैवल्य कहा जाता है। श्रोताओं, आप समझ गए होंगे कि आज योग के बारे में इतनी बातें करने का मतलब क्या है। जी हाँ, कल 21 जून है यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आज के दिन हम आपके लिए जो विषय लेकर आए हैं वह है मानव जीवन में योग की महत्ता और योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में भारत की भूमिका। इस विषय पर कुछ विशेष जानकारी के लिए हमने संपर्क किया सासाराम शहर के योग प्रशिक्षक श्री विजय कुमार और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सिंपल मेहता से। आप दोनों लोग लगभग एक दशक से अधिक समय से सासाराम शहर वासियों को योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं और योग को जन आंदोलन बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो श्रोताओं, आइए मिलते हैं और बातें करते हैं। योग प्रशिक्षक विजय कुमार जी और सिंपल मेहता जी, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज पूर्व दिवस पर आप दोनों से हमारी मुलाकात हो रही है, तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है, साथ ही 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं।
1: पहले तो मैं आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे बिहार वासियों को, सासाराम वासियों को इस 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करते हैं कि आप योग करते रहें और निरोग रहें।
0: जी, आप क्या कहना चाहेंगे सिंपल मेहता जी?
2: सबसे पहले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे देशवासी हैं और सासाराम के वासी हैं उनको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।
0: विजय कुमार जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मानव के लिए योग की क्या महत्ता है?
1: मानव जीवन के लिए योग इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आज का जो वातावरण अशुद्ध हो गया है, तो इस वातावरण को, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए योग का बहुत महत्व है। वैसे तो ये योग हमारे पुराने प्राचीन ऋषि मुनि का देन है और इसके जनक पतंजलि ऋषि माने जाते हैं और इसको अवतरित करने में हमारे रामदेव बाबा का बहुत ज़्यादा महत्व है। रामदेव बाबा ने इसे 1995 में भारत के पटल पर लाया और इसका विस्तृत रूप इन्होंने धीरे धीरे दिया। आज पूरे विश्व में इसे मनाया जाता है।
0: जी जी,
1: देखिए सितंबर 2014 में मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको रखा, 177 देशों ने इसका समर्थन किया और दिसंबर 2014 में विश्व मंच पर इसे मंजूरी मिली।
0: जी,
1: आज पूरे विश्व में 191 देश 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है और 12वां योग दिवस आने वाला है और ये पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाएगा।
0: जी जी, 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, लगातार 12वां योग दिवस मनाया जाएगा। सिंपल मेहता जी, योग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: योग के बारे में यही कहना चाह रहे हैं कि पहले पूरा महर्षि पतंजलि का, ऋषि मुनियों का एक बुक में ही सिमट गया था, इसको लाने वाले स्वामी रामदेव बाबा ने हम लोग के योग के बारे में बताया, सिखाया और हम लोग घर घर में, जन जन में जितना भी है योग पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं। और यहाँ आज सासाराम में हमारी बहनें जो हमारे क्लास में सीख कर आज हर जगह योग विस्तारित कर रही है और सिखा रही है, भाई लोग से ज्यादा बहनें एक्टिव है।
0: जी जी,
2: आज की डेट में जितना बीमारियां फैला है, माइग्रेन पेन होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, कैंसर है, कमर दर्द में 95% महिलाओं को कमर में दर्द रहती है, हार्ट अटैक आ रहा है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, तो योग जो है हमारा इस सारी बीमारियां को दूर करने के लिए ही योग है। इसीलिए सारी बहनों को हम कहते हैं, अगर जहाँ तक मेरी आवाज जाए सारी बहनें निकल के घर से आए और हमारे साथ आए नेहरू पार्क में, हम निःशुल्क सेवा करते हैं, हम स्वस्थ रहें और सबको स्वस्थ बनाए, निःशुल्क कक्षा चलता है। अभी हमारे एक क्लास में 120 बहनें हैं जो कि प्रतिदिन आती हैं और योग करती हैं। 5 बजे हमारा क्लास चलता है, 5 से 7 2 घंटा।
0: जी जी, आपसे और भी बातें होंगी जिसमें हम जानेंगे कि कुछ रोग होते हैं उसमें कैसे मुक्ति मिलती है, लेकिन उससे पहले हम विजय कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे कि योग का मतलब क्या होता है?
1: योग दो शब्द से बना है। योग का मतलब एक दूसरे को जोड़ना, तारतम्य को उस परम पिता से और अपने शरीर को जोड़ना होता है। योग जो है प्राचीन एक विद्या है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। संस्कृत में युज धातु से ये बना है, आत्मिक शब्द है योग। योग का उद्देश्य व्यक्ति को शरीर, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाना है। योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि यह एक जीवन पद्धति है। इसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान और अनुशासित जीवन शैली का समावेश होता है। नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन शांत और विचार सकारात्मक बनते जाते हैं। मन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। हम जो भी काम करते हैं उसको ध्यान पूर्वक करते हैं।

0: और इसे करने से शरीर के अंदर जितने भी विकार हैं, निगेटिविटी है, वह दूर होने लगती है। योग के 8 अंग होते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वैसे तो योग प्राणायाम इसको बोलते हैं। प्राणायाम जो है दो सबसे मिलकर बना है, प्राण यानी जीवन ऊर्जा या सांस, और आयाम यानी विस्तार या ठहराव। इसका मुख्य अर्थ है श्वास को नियंत्रित और व्यवस्थित करके शरीर की जीवन शक्ति को बढ़ाना। प्राणायाम जो है पूरे शरीर में एनर्जी ला देता है। भस्त्रिका, कपालभाति, वायु प्राणायाम, उज्जायी, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, उद्गीत, ये प्राणायाम होते हैं, जिसे हम लोग नियमित रूप से करके पूरे शरीर को, जो भी निगेटिविटी या टॉक्सिन हमारे शरीर में भरा हुआ है, इससे इस शरीर को शुद्ध करते हैं। और इसके इतने फायदे हैं कि अगर किसी को बीपी हो, शुगर हो या थायराइड हो, अगर हम उज्जायी प्राणायाम करें 5 मिनट केवल, तो उससे हम उसको उसके पूरे शरीर को हील करके ठीक कर सकते हैं।
1: जी विजय कुमार जी, आपने आसन और प्राणायाम के बारे में बताया। खास करके योग में दो ही चीज़ों के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, आसन और प्राणायाम। तो क्या आसन और प्राणायाम दोनों अलग अलग चीज़ हैं?
0: हाँ, दोनों अलग अलग चीज़ है। आसन में व्यायाम होता है, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, मकरासन हो गया, मरकटासन हो गया, और सर्वाइकल के लिए हम लोग करते हैं,
1: शरीर के हर अंग के लिए
0: अलग अलग व्यायाम होता है,
1: उसको आसन कहते हैं।
0: और प्राणायाम श्वास को नियंत्रित और व्यवस्थित करके शरीर की जीवन शक्ति को बढ़ाना, इसके माध्यम से शरीर को पूरा हम लोग हील करते हैं, माने अपने शरीर को सुधारते हैं।
1: जी, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। अब हम सिंपल मेहता जी आपसे जानना चाहेंगे कि योग करने के लिए कोई समय निर्धारित है कि योग कभी भी किया जा सकता है?
2: नहीं, एक्चुअल में योग सुबह ही किया जाता है। अगर आपको शाम में भी करना है तो खाना खाने के 4 घंटे के बाद कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हैं। अगर हार्डली आप बहुत सीरियस हैं, बीमार हैं, आप खटिया पे हैं, नहीं उठ सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कीजिए। आपका 4th स्टेज में भी कैंसर होगा, ठीक कर सकता है। इतना ही प्राणायाम में जितना भी है, जैसे फलों का राजा आम है, उसी तरह प्राणायाम का राजा कपालभाति, अनुलोम विलोम में योगा करेंगे तो आप ठीक हो जाइए।
1: कुछ महत्वपूर्ण योग आसन के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। आप महिला हैं और महिलाओं को कुछ समस्याएं होती है, ज़्यादातर पाया जाता है मोटापा, इसके लिए कुछ आसन या प्राणायाम के बारे में आप बताइएगा।
2: आसन प्राणायाम के बारे में कपालभाति, अनुलोम विलोम है मोटापा कम करने के लिए, और साथ साथ खाना भी परहेज करना पड़ेगा।
1: जी विजय जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण जो आसन और प्राणायाम हैं जिससे लोगों को फायदा हो सकता है, तो इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: इसमें अनुलोम विलोम, अनुलोम मतलब सीधा और विलोम मतलब उल्टा। हम अपने दाहिने नासिका को बंद करके और बाएं नासिका से जब सांस इनहेल करते हैं और दाहिने नासिका से छोड़ते हैं, तो जिसका बीपी हाई रहता है तो ये बीपी धीरे धीरे धीरे धीरे आपका नॉर्मल होने लगता है। अगर आप चंद्र नाड़ी से सांस लेते हैं बाएं नासिका से, तो बीपी आपका धीरे धीरे कम होने लगता है। और बीपी जिसका लो रहता है तो वो बाएं नासिका को बंद करके दाहिना से ले तो उसका बीपी धीरे धीरे ग्रो कर जाता है, बढ़ जाता है। जैसे बीपी किसका 70 रहता है, 65 रहता है, तो वो केवल सूर्य नाड़ी से सांस को इनहेल करे तो धीरे धीरे उसका बीपी कंट्रोल होने लगता है।
1: यानी कि जिनका बीपी बहुत डाउन रहता है या बहुत हाई रहता है, उनके लिए अनुलोम विलोम एक बहुत ही बड़ा प्राणायाम है। और जो बायां स्वर होता है वह चंद्र स्वर, दाहिना जो होता है सूर्य स्वर। यानी कि जिसका बीपी
0: हाई है उसको चंद्र स्वर से सांस को लेना है, और कम से कम अनुलोम विलोम को 10 मिनट वो करे, तब जाके उसका फायदा पूर्णतः मिलेगा। अगर जिसका बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है और वो आधा घंटा करता है, तो उसको तो 1 महीना के अंदर कहिए, अगर उसका बीपी 190 होगा तो 130 पर आ जाएगा, निश्चित आएगा, इसमें दो मत नहीं है। भस्त्रिका, भस्त्रिका मतलब प्राणवायु को भरना और छोड़ना। भस्त्रिका में क्या करते हैं कि प्राणवायु को दोनों नासिका से इनहेल करते हैं सांस को, और उसको कुंभक लगाते हैं। इसमें 3 क्रिया होती है, पूरक, कुंभक और रेचक। 3 क्रिया होती है,
1: पूरक यानी
0: सांस को भरना, कुंभक मतलब उसको रोकना,
1: और रेचक यानी छोड़ना।
0: ये 3 क्रिया अगर कोई जान जाता है, अगर उसको लंग्स का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, मतलब सांस फूलता है, हाँफता है, लेकिन अगर वो भस्त्रिका प्राणायाम करे, सीख ले, तो जिंदगी भर के लिए चला जाएगा। उसका सर्तिया इलाज है। क्या होता है, लंग्स में उसमें गड़बड़ी हो जाती है और सांस फूलने लगता है, तो प्राणवायु को जब पूरा इनहेल करेगा भस्त्रिका से और होल्ड करेगा, तो लंग्स फैलेगा, उसमें हवा भरेगा और फैलेगा। चूंकि उसमें

0: ऑक्सीजन की कमी है, हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर टॉक्सिन भरा हुआ है। इस टॉक्सिन को जितना बाहर फेंकेंगे निकालेंगे तभी तो हमारा शरीर शुद्ध होते जाएगा। सांस वाले बीमारी जिनको है अगर भस्त्रिका करे तो ये बिल्कुल सांस वाली बीमारी खत्म हो जाएगी
1: जी। और खास करके आजकल देखा जाता है कि लोगों में माइग्रेन की बहुत बड़ी समस्या होती है, ज्यादातर लोग इससे पीड़ित रहते हैं, इसके लिए कोई है प्राणायाम या आसन
0: क्या है? अगर वो भ्रामरी प्राणायाम करें, इसमें क्या होता है, पहला अंगुली माथे पर रहता है, तीन अंगुली आंखों पर रहता है और अंगूठे से कान के नीचे साइड वाले ढक्कन को बंद करके और भौंरा जैसे गुंजायमान करता है इस तरह हम निकालेंगे तो इससे जो माइग्रेन की समस्या है वह धीरे धीरे धीरे धीरे दूर होने लगती है और इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। भ्रामरी माइग्रेन के लिए एक रामबाण जैसे है।
1: श्रोताओं, आज हमारी बात हो रही है सासाराम के जाने माने योग प्रशिक्षक श्री विजय कुमार और श्रीमती सिंपल मेहता जी से, और विषय है मानव जीवन में योग की महत्ता और योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में भारत की भूमिका। तो आइए कुछ और बातें उनसे की जाए। तो विजय कुमार जी, अब हम जानना चाहें कि आज के समय में अधिकांश लोग पेट के रोग से ग्रसित रहते हैं, कई तरह की समस्याएं होती है, वायु विकार से लेकर के तरह तरह की उन्हें समस्याएं होती है, इसके लिए आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि कुछ योग आसन प्राणायाम जिससे लोगों को राहत मिल सकती है।
0: जिन्हें भी पेट की समस्या है, वे अग्निसार अगर करते हैं, जिनको पाचन की समस्या है पेट में, दाह जलन गैस बनते रहता है, वे अग्निसार की क्रिया करते हैं तो उनका धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन शक्ति बढ़ने लगता है। इसमें क्या है कि प्राण वायु को इनहेल करते हैं और इनहेल करके जब सांस को पूरा निकाल देते हैं उसके बाद नाभि को अंदर खींचते हैं, नाभि को खींचकर और इसको ऊपर नीचे हिलाते हैं, इससे धीरे धीरे पाचन की क्रिया है, जो पाचन शक्ति है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है और पेट की समस्या धीरे धीरे दूर होने लगती है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है अग्निसार क्रिया।
1: अब हम सिंपल मेहता जी आपसे जानना चाहें कि आप चूंकि सासाराम में बहुत दिन से लोगों को प्रशिक्षित कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं योग के प्रति, खास करके आपने बताया अभी कि नेहरू पार्क में हम लोग प्रतिदिन सुबह में 5 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं और 1.5-2 घंटा लगभग आप लोग अपना समय देते हैं, वहाँ पर जो लोग आते हैं इसके प्रति क्या जागरूक हुए हैं?
2: वहाँ जो भी बहने हमारे आती हैं पार्क में, पहले लोग सोचता था कि वहाँ पैसा लगता था, लेकिन वहाँ निःशुल्क सेवा है तो बहुत लोग बहने जाकर अपनी बहन को अगल बगल बताती है। और योग के साथ साथ हम जो खेल होता है ना, बचपन को जो हम लोग खेले थे, सारी बहने 60-70 साल की उम्र में है, सारी बहने आकर इतनी चॉइस से हर संडे को खेल होता है, कबड्डी जैसे हो गया, पोसंपा हो गया, खो खो हो गया, छुआछुअंत हो गया, सारी बहने इतनी एक्टिव रहती है आने के लिए उस दिन कि अगर सप्ताह के संडे के दिन देखिएगा तो हमारी बहनें जितनी भी घर में बैठी रहती हैं वो खेल च्वाइस से खेलने के लिए एकदम उपस्थित हो जाती हैं। हमसे जाने से पहले हमारी वहाँ कम से कम 25-30 बहनें गेट पर एकदम हाजिर रहती है, जो कि गार्ड गेट भी नहीं खोलता है, इतना हमारी बहनें एक्टिव हो गई हैं वहाँ आगे बैठने के लिए।
1: यानी आपका प्रयास रहता है कि जो महिलाएं वो बचपन की जो यादें हैं खेल है उससे वो जुड़ जाती हैं, लगता है कि हम उस बचपन के दौर में चले।
2: आदम उन लोगों की उम्र है 55, लेकिन काम करते हैं बचपन वाला, उनको बचपन ला देते हैं और साथ साथ में साल में एक बार सारी बहनों को हम घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, कहीं अयोध्या, वृंदावन, कभी हरिद्वार, कहीं ना कहीं हमारा टूर बना रहता है पिकनिक तौर पे, कहीं यही सासाराम में, कहीं माझरकुंड पहाड़ पे जाते हैं, कहीं भी तारा चंडी जाते हैं, कहीं ना कहीं बराबर हमारी बहने, हम लोग का ड्रेस कोड है और साथ में भजन कीर्तन भी होता है, हवन भी होता है, सारी बहनों को हम सब बहुत एक्टिव है हमारे।
1: चलिए, तो आज हम आपसे सुनना चाहेंगे 2-4 लाइन जो आप लोग योग कराते समय कुछ गीत गाती हैं उससे संबंधित कुछ 2-4 लाइन अगर आप सुनाना चाहें तो हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं।

समैया बीतल जाता। पहला पण्या में बाटे भस्त्रिकाए भैया, दूर होइए खासी नजला दाम लागी न रुपैया, दूर होइए खासी नजला

0: जाता करा योग रानी रोगे भैया बहनी समैया बीतल जाता।
1: जी, बहुत बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सिंपल मेहता जी। विजय कुमार जी वैसे तो बहुत पहले से भी हमारे

0: ऋषि महर्षि इस क्षेत्र में प्रयास किए थे, लेकिन हम लोग शायद उस चीज को भूल गए थे या उसके प्रति ध्यान नहीं रहा था, लेकिन रामदेव जी ने थोड़ा प्रयास किया और अब तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास रहा 2014 के बाद यानी 2015 से शुरू हो गया, हम लोग 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कल मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर आप कुछ हमारे श्रोताओं से कहना चाहते हैं तो कुछ कह सकते हैं?
1: हम अपने जितने भी हमारे श्रोता बंधु इसे सुन रहे हैं उनके लिए संदेश देंगे कि जैसे हम प्रतिदिन सुबह में 4:15 बजे उठते हैं और यहाँ से नहा धोवा कर नेहरू पार्क में जाते हैं और निःशुल्क योग सिखाते हैं, और जिस तरह हम अपने को स्वस्थ किए हैं उसी तरह मैं चाहता हूं कि मेरे जैसा ही लोग स्वस्थ रहें, ये पूरा समाज स्वस्थ रहे। जितने भी लोग आते हैं हमारे योगा क्लास में, मैं उनको दिल से उनको सिखाता हूं और बताता हूं कि आप इस तरह कीजिए ताकि आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहे।
0: आप कितने वर्षों से यहाँ पर जो सासाराम नेहरू पार्क है इसमें आप लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं चाहे जागरूक कर रहे हैं लोगों को?
1: करीब 12 वर्षों से हम लोग नेहरू पार्क में जा रहे हैं और वहाँ प्रशिक्षण का कार्य।
0: आज क्या स्थिति है, पहले आप देखे होंगे और आज क्या लोग ज्यादा रुचि लेते हैं?
1: आज के समय पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं। पहले बहुत कम लोग आते थे, टहलकर चले जाते थे, लेकिन आज बहुत लोग औरतें इधर उधर बैठकर भी बहुत योगा करती हैं और बहुत अच्छा अवेयरनेस आ गया है और एक जगह बैठकर लोग योगा प्राणायाम करते रहते हैं और ये हमें अच्छा लगता है।
0: ये तो, जी आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा क्योंकि लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं योग के प्रति, उन्हें बता रहे हैं और खास करके जो कुछ सामान्य समस्याएं होती हैं लोगों को इससे मुक्ति दिला रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका भी दुबे जी, और आप भी योग करें और निरोग रहें।
0: जी जी बिल्कुल। और सिंपल मेहता जी, आप महिला बहनों से क्या कहना चाहेंगे?
2: यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी बहनें प्रतिदिन योग करें, करो योग, रहो निरोग, घर घर हम जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे।
0: जी जी धन्यवाद। आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया और हमारे श्रोताओं को योग का क्या महत्व है और विश्व स्तर पर योग को ख्याति दिलाने में भारत की क्या भूमिका रही इस विषय पर बातें की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी।
2: धन्यवाद सर।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे योग प्रशिक्षक विजय कुमार जी और सिंपल मेहता जी से की गई हमारी बातचीत। विषय था मानव जीवन में योग की महत्ता और योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में भारत की भूमिका। श्रोताओं, निसंदेह आज के इस प्रतिस्पर्धा व विलासिता के युग में अनेक रोगों का जन्म हुआ है जिन पर योगाभ्यास से विशेष लाभ देखने को मिला है। संभवतः रोगों पर योग के इस सकारात्मक प्रभाव के कारण ही योग को पुनः प्रचार प्रसार मिला। हालांकि रोगों के उपचार में आधुनिक दवाइयां और शल्य चिकित्सा भी उपलब्ध है, लेकिन अक्सर इनकी स्थिति कई प्रतिकूलताओं से जुड़ी होती हैं। इसीलिए योग को चिकित्सा में उपचार पद्धति के रूप में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि योग एक हानि रहित चिकित्सा पद्धति है जिसमें खर्च भी 9 के बराबर है। अतः कहा जा सकता है कि आज के भाग दौड़ भरे युग में जहां लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, वहीं उन्हें अनेक असाध्य रोगों, शारीरिक एवं मानसिक रोग जैसे मानसिक तनाव, हाई बीपी, शुगर, अस्थमा, दमा, मोटापा, माइग्रेन, सिरदर्द, सर्वाइकल, बैक पेन, अर्थराइटिस वगैरह ने जकड़ रखा है। इन रोगों का निदान तथा व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्थान योग के द्वारा ही संभव है, जिसका नियमित अनुसरण कर व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। इसके अलावा समाज में फैली अराजकता, अव्यवस्था, हिंसक प्रवृत्तियां वगैरह योग के मूल यम नियमों के आदर्शों पर चलकर ही ठीक हो सकती हैं, जिससे समाज में शांति और सद्भावना कायम हो सकती है। श्रोताओं, बस आज इतना ही, लेकिन यदि आज के कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपने लिखा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन 821115। पत्र के अलावा आप हमें ईमेल के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanisassaram akashvanisassaram@gmail.com। श्रोताओं, समय अब आपसे और अधिक बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान अब यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह एक नई जानकारी लेकर हम पुनः आपके बीच होंगे, आज ही के दिन ठीक इसी समय। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे, नमस्कार। कार्यक्रम संकलन एवं सूत्रधार लाल बहादुर दुबे और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान, सूत्रधार थे लाल बहादुर दुबे। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी के अंतर्गत पूछे भोजपुरी एल्बम लोकगीत। कार्यक्रम का पहला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आवाज़ है भरत शर्मा व्यास की।

इसी के साथ है कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड के 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 10:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रसधार के अंतर्गत कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। कार्यक्रम का पहला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसके गीतकार हैं अशोक शिवपुरी और संगीतकार भी अशोक शिवपुरी। आवाज़ है बद्री बहार की। एल्बम का नाम है मोहब्बत पुकारे।

निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

इसी के साथ यह कार्यक्रम रसधार अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 11 बज चुके हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

छूकर मेरे मन को, याराना फिल्म से अभी ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इस गीत को लिखा था और राजेश रोशन की तर्ज थी।

0: द ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। आप सुन रहे हैं इस वक्त विविध भारती से चित्रपट संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

बड़े दिल वाला, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

फिल्म पड़ोसन से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, आशा भोसले और सखियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

मन दौड़ने लगता है। और ये गीत अभी आप सुन रहे थे रजनीगंधा फिल्म से मुकेश की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आप सुन रहे हैं मैटिनी शो। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पालघर पीठाधीश्वर योगिराज भारतभूषण भारतेंदु। विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से विश्व योग दिवस के दिन पर। हमारे विद भारती के तमाम भारत के सभी श्रोताओं को योगिराज भारतभूषण की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
0: क्या बात है। मुझे ये बताइए भारत भूषण जी कि इस बार की जो थीम है वो है बढ़ती उम्र के साथ योग। तो बढ़ती उम्र के साथ योग का क्या महत्व है, यहां से हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं।
1: बढ़ती उम्र के लिए ही योग के सानिध्य में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: जैसा कि हम सभी लोग पहले शतायु हुआ करते थे, सभी लोग कम से कम 100 साल तक उम्र होती थी, लेकिन जो हम लोगों की सोसाइटी, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, जो एक तरह से मिलावट होता गया लाइफ में, सोसाइटी में, हमारे खान पीन में, सब में, जिसके कारण लोगों की उम्र जो है दर पदर थोड़ा कम होता गया। तो ये जो अभी का जो मिशन चल रहा है हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है पूरे भारत में
0: जी।
1: तो जैसे 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि लोग शतायु हों, 100 साल जिए इस योग को सीख करके, तो उम्र को बढ़ाया जाए
0: और स्वास्थ्य को भी
1: बढ़ाया जाए,
0: है ना। अच्छा मुझे बताइए कि 40 पार के बाद के जो लोग हैं, जो 40 बरस पार करके अब थोड़ा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके जीवन में योग कितना जरूरी है और वो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कितना समय निकालें कि वो रोज योग कर पाएं।
1: देखिए रही बात जो 40 के ऊपर वाले उम्र के जो भी लोग हैं, हम तो सदा से ही पूरे भारत में ही योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पूछने पता चलता है कि आप अपने लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते। तो जो अपने उम्र बताई कि 40 वर्ष के ऊपर वालों के लिए, तो उन लोगों के लिए समय नहीं रहता, बोलते हमारे लिए समय ही नहीं मिलता खुद के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 40 के ऊपर वालों को

0: को 24 घंटे में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना योग के लिए बहुत ही आवश्यक है।
1: ये जो थोड़ा सा है इसमें कितनी मात्रा है ये समय
0: थोड़ा
1: की?
0: सा मात्रा में कम से कम 20 मिनट,
1: जी, कम से
0: जी
1: कम 20 मिनट।
0: कम से कम 20 मिनट,
1: और अगर बहुत दिल से निकालें तो कितना हो जाएगा
0: दिल से
1: वो?
0: निकाले तो 45 मिनट, 1 घंटे कर लें तो सोने पर सुहागा है।
1: क्या बात है
0: जी
1: जी। तो क्या क्या करना चाहिए, जैसे 20 मिनट का समय है जिस व्यक्ति के पास, वो क्या क्या करे, और जो व्यक्ति थोड़े बड़े दिल वाला है 45 मिनट निकाल रहा है, वो क्या क्या करे?
0: देखिए, सबसे फर्स्ट जो पहला है,
1: जी
0: 40 ही नहीं, बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है श्वास
1: जी
0: से रिलेटेड,
1: हाँ
0: श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
1: जी
0: और 40 को देखा जाए तो उनको युवा में माना जाता है, यंग, हमारी जो पावर है, यूथ भी कह सकते हैं हमारे देश के, तो उनके लिए आप प्राणायाम के साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 राउंड 15 राउंड सूर्य नमस्कार आवश्यक है। उसके अलावा आप स्टैंडिंग में है, सीटिंग में है, लाइन डाउन में है, इसमें बहुत से आसन हैं जो कि करके 40-45

0: जाता है यंग, हमारी जो पावर है यूथ भी कह सकते हैं हमारे देश के, तो उनके लिए आप प्राणायाम के साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 10 राउंड 15 राउंड सूर्य नमस्कार आवश्यक है। उसके अलावा आप स्टैंडिंग में है, सीटिंग में है, लाइन डाउन में है, इसमें बहुत से आसन हैं जो कि करके 40-45 मिनट में अपने को एकदम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान भी करना जरूरी है, मेडिटेशन,
1: जी, तो मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम
0: आसन।
1: में कौन कौन से प्राणायाम जो हैं वो बहुत जरूरी हैं?
0: प्राण
1: भ्रामरी, शीतली,
0: जी जी
1: है
0: जी
1: ना?
0: हाँ, प्राणायाम में शुरू में तो जैसे शोधन क्रिया कर लीजिए, भस्त्रिका करके
1: हाँ,
0: अपने फेफड़े को
1: सबसे
0: लंग्स
1: पहले
0: को क्लीन
1: भस्त्रिका
0: करते
1: करना
0: हैं,
1: है,
0: कपालभाति,
1: सबसे पहले कपालभाति करनी
0: कपालभाति,
1: है। जी
0: देन उसके बाद में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, उज्जयी, अंत
1: इतने
0: में
1: सारे कर रहे हैं?
0: हाँ अंत में ओम चैंटिंग कर लीजिए।
1: अच्छा,
0: ये पूरा
1: ठीक है
0: पैकेज
1: ठीक
0: हो
1: है।
0: गया,
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए कॉम्बो है
1: ये जो आपने प्राणायाम बताए इतने सारे,
0: जी।
1: इनका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और इनसे क्या चीजें बैलेंस होती हैं?
0: इनसे सबसे पहले तो जो शुरुआत है,
1: जी
0: कपालभाति से अपने फेफड़े की शुद्धि होती है,
1: अच्छा,
0: जो दिन भर चलते हैं, पोल्यूशन है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्लीन होता है, ये शुद्ध हो जाता है फेफड़ा। और भस्त्रिका है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाती है, उसको मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, कैपेसिटी, उसकी क्षमता बढ़ाती है लंग्स को। और अनुलोम विलोम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया इसको। हम
1: अच्छा
0: लोगों के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं,
1: जी जी
0: जिसमें तीन प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन तीनों को बैलेंस रखने के लिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम कहा गया है,
1: जी
0: जिससे नाड़ियां सब बैलेंस रहती हैं।
1: जी
0: और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे आप सुनते भी होंगे कि लोग बोलते हैं आज मूड अच्छा नहीं है, कभी होता है कि बहुत अच्छा मूड है, कभी ऑफिस का काम पेंडिंग है, किसी से तकझक भी हुआ है, लेकिन मूड अच्छा रहता, चलो जो होगा देखा जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि सारे काम सब हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन उदास रहता है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये मूड ऑफ और ऑन है, तो ये जो मूड अच्छा रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो
1: अच्छा
0: हमारे सिर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, भ्रामरी करने से उसमें एक सिक्रीशन टाइप का होता है, जिससे मूड अच्छा रहता है, मस्तिष्क में लुब्रिकेशन बनाते हैं, जैसे इंजन में मोबिल ऑयल होता है ना, इंजन में ऑयल बराबर है तो अच्छे से चलती है,
1: जी
0: इसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी वो जो सिक्रीशन होता है उससे मूड अच्छा रहता है।
1: अब देखिए ना,
0: तो
1: हम रेडियो पर हैं
0: जी
1: तो सब कुछ हमको बोलकर ही बताना है,
0: हाँ,
1: करके दिखा नहीं
0: दिखा
1: सकते।
0: नहीं
1: पर
0: सकते।
1: भ्रामरी प्राणायाम वही है ना, जिसमें उंगलियों से
0: हाँ,
1: आंखों को
0: आंखों
1: ढका
0: को
1: जाता
0: बंद करते
1: है।
0: हैं और अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है,
1: जी
0: मुंह बंद रखना है,
1: हाँ
0: पूरा सांस नाक से अंदर लेना है
1: जी,
0: और मुंह बंद करके ही नाक से सांस को छोड़ना है और हमिंग करना है,
1: हमिंग करना
0: बटरफ्लाइट की
1: है।
0: तरह।

0: और
1: और
0: उससे जो कंपन होते हैं
1: कंपन होगा अपने सिर
0: जी।
1: में, तो जब वहां कंपन होता है तो वहां से फिर वो सीक्रेशन होता है,
0: जी
1: माइंड कूल रहता है।
0: क्या बात है।
1: फिर उसके
0: तो
1: बाद
0: प्राणायाम की बात हुई,
1: जी
0: ध्यान की भी बात करेंगे, लेकिन आपने ना सूर्य नमस्कार की बात की है।
1: जी
0: मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो शुरुआत करते हैं वो 12, 25 है ना, 50 ऐसा करते हैं, लेकिन जो धाकड़ लोग होते हैं वो तो बहुत सारे सूर्य नमस्कार करते हैं। जो बंदा अभी अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल रहा है, वो शुरू करे तो कितने से करे कि वो अगले दिन के लिए खड़ा हो पाए?
1: देखिए, जो कभी नहीं किया है
0: जी
1: हाँ, तो उसको आप शुरू में एक राउंड से शुरू करिए।
0: अच्छा
1: योग का मतलब ही है जोड़ना,
0: जी
1: योग प्लस है जोड़ना। तो अपने शरीर में, अपने लाइफ में अगर स्वास्थ्य को लाना है, जोड़ना है, तो उसको धीरे धीरे धीरे धीरे स्वतः स्वतः, पहले एक राउंड मतलब दो स्टेप, लेफ्ट एंड राइट, जैसे 12 काउंटिंग का एक सूर्य नमस्कार होता है, 12 लेफ्ट लेग से, 12 राइट लेग से। तो एक राउंड आप पहला दिन करिए,
0: अच्छा
1: फिर दूसरे दिन दो राउंड करिए, एक हफ्ते तक आप दो राउंड तीन राउंड ऐसे करिए, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे, धीरे धीरे धीरे धीरे उसको
0: बढ़ाइए।
1: बढ़ाते जाइए।
0: नहीं, कई लोग जोश में आते हैं तो फिर किसी की कमर, किसी का कुछ
1: जी, ये सही कर रहे हैं। तो
0: जी,
1: जोश में आकर होश नहीं खोना है,
0: बिल्कुल
1: योग हम कर रहे हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम योग कर रहे हैं
0: जी।

0: योग को धीरे धीरे जोड़ना है।
1: जी, सामान्य रूप से कितने सूर्य नमस्कार सवेरे सवेरे कर लेना एक अच्छी जीवन शैली की निशानी है?
0: देखिए, जो ऑफिस वाले हैं, वर्किंग में हैं, तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
1: काफी होता है।
0: काफी होता है।
1: अब मैं आपको आपके पसंदीदा विषय की तरफ लेके जाता हूं। ये जो सूर्य नमस्कार है, इसके फायदे बताइए कि क्या क्या हैं। इसको संपूर्ण योग कहा जाता है ना?
0: जी, सूर्य नमस्कार में कई आसन एक साथ हो जाता है।
1: जी
0: हाँ, तो उससे क्या होता है कि आपको अलग अलग कई आसन करने की आवश्यकता नहीं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड लेटने का भी हो जाता है। इसमें कई आसन हो जाते हैं, भुजंगासन से लेके पर्वतासन, ऐसे कई आसन उसमें हो जाते हैं, तो जिससे आपको अलग अलग आसन करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से काम्बो जो सूर्य नमस्कार किया जाता है, वो बेनिफिट आपको पूरा हेड टू टोज तक
1: मिल जाता
0: मिल
1: है
0: जाता है।
1: जी।
0: ये
1: तो
0: सबसे
1: ये एक
0: इम्पोर्टेंट है,
1: सबसे इम्पोर्टेंट बात है,
0: सूर्य नमस्कार।
1: और पूरे दिन आप बहुत ज्यादा जोश में रहते
0: जोश
1: हैं।
0: में रहते हैं, और जिनको ये भी ध्यान रखना है कि इसी योग इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में ही करें। कभी कभी क्या है, कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, जो दिक्कतें हैं
1: जी,
0: तो उसको उसके हिसाब से धीरे धीरे क्या करना है, कितना करना है, उसी हिसाब
1: और
0: से
1: आपकी
0: वो
1: जो शारीरिक परिस्थितियां हैं
0: उसके
1: वो
0: अनुसार।
1: बाकायदा ईमानदारी से
0: जी
1: बताना है कि
0: हाँ,
1: भाई ये
0: जिन
1: समस्याएं
0: जिनकी
1: हैं।
0: एज ज़्यादा है उनको ध्यान में रखना है
1: हाँ, मैं वही
0: इन
1: पूछने आ
0: सबको।
1: रहा था बिल्कुल, कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 50-60 की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र का है और वो करना चाहता है,
0: जी,
1: तो वो क्या करे और क्या ना करे?
0: कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, पहली बात तो किसी योग गुरु के सानिध्य में रह करके धीरे धीरे करें। बुजुर्गों में बहुत से हमारे शिष्य ऐसे हैं जो कि एज उनकी काफी है, बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार करते हैं।
1: जी,
0: क्यों कर लेते हैं कि वो शुरू से ही
1: नियमित
0: वो
1: रूप से करते आए
0: नियमित
1: हैं।
0: रूप से योग और सूर्य नमस्कार आसनाज वगैरह खूब अच्छे से करते हैं, तो बहुत अच्छे कर लेते हैं। लेकिन जो अभी नए हैं, जिन्होंने कभी किया नहीं, तो उनको बहुत ही ध्यान में रहकर उनको सभी जो आसन से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके उनको फिर अपने रूटीन में लाना है सूर्य नमस्कार को, और बहुत तनाव या प्रेशर दे करके जोश में नहीं करना है।
1: जी, मैं समझ गया।
0: जी,
1: मुझे ये बताइए कि मनाही नहीं है ना बुजुर्गों को सूर्य नमस्कार करने के लिए?
0: कोई भी चीज़ इसमें ऐसा मना ही नहीं, लेकिन हर योग को कोई अगर रोगी है, कोई व्याध से व्याधित है, तो उसको उसके अनुसार योग को करना चाहिए और योग गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है। पहले कोई व्याधि से ग्रस्त है तो उनको उस व्याधि में कौन से आसन नहीं करने हैं वो ध्यान रखना है, तो वो ना करते हुए फिर उसके बाद में क्या करना है वो करना चाहिए।
1: बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इस बात की तरफ आ रहा हूं कि आजकल क्या हो गया है कि सब जगह कंप्यूटर हैं,
0: जी
1: लोग जो हैं वो अपने दफ्तरों में अपने लैपटॉप पर या अपने सिस्टम पर बैठे हैं
0: जी
1: और दिन दिन भर बैठे हैं। बीच में थोड़ा ब्रेक लिया है, चाय वाय पी, उसके बाद फिर बैठे तो पता चला पूरे दिन का बैठना जो है वो 12 घंटे 15 घंटे हो गया। ऐसे लोगों के लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं, और उनको, क्योंकि देखते ये हैं कि किसी की गर्दन दुख रही है, किसी की कमर दुख रही है, किसी की कूल्हे दुख रहे हैं,
0: जी
1: टेल बोन की समस्या हो गई है, बहुत तरह तरह की जो
0: जी
1: लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं
0: जी
1: वो बढ़ रही हैं। तो ये ऑफिस वर्किंग पीपल के लिए आप खास तौर पर क्या कहेंगे?
0: देखिए, ऑफिस वर्कर्स ही नहीं,
1: जी
0: आज का जो समय चल रहा है यूनुस जी, लोगों का हर चीज़ पर्सनलाइज की तरफ जा रहे हैं। सबका अपना होना चाहिए सब कुछ, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको अपनी चीज़ चाहिए, अपना मोबाइल, अपना गाड़ी, अपना घर, अपना कमरा, अपना लैपटॉप, सारे पर्सनल चीज़ें होती जा रही हैं। तो उसमें हमने योग को पर्सनलाइज किया है, जैसे ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए ऑफिस योगा, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट योगा, गृहिणियाँ जो अपने घर में रहती हैं, सुबह बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, सास ससुर उनकी सेवा करना है तो किचन में ज़्यादा समय रहती हैं तो उनके लिए किचन योगा है, किसानों के लिए किसान योगा है, पत्रकारों के लिए पत्रकार योगा है, पुलिस वालों के लिए पुलिस योगा है, यंग्स के लिए योगा 2020 है। तो ऐसे ऐसे पर्सनलाइज हमने योग का पैकेज रखा है। तो जो ऑफिस में जो काम करते हैं उनका, क्योंकि कारण क्या है कि वो ज़्यादातर लैपटॉप पर रहते हैं, कंप्यूटर पर रहते हैं, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, वो उनको ख्याल नहीं रहता कि हमारा पोस्चर किधर है क्या है, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो जिसके तनाव के कारण उनके शरीर में

0: किसी भी पोस्चर में कोई भी कभी भी खिंचाव आ गया तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं
1: जी
0: ऑफिस वालों के लिए। तो ऑफिस वालों के लिए समय दूर से आते हैं तो उनको समय भी नहीं मिलता है, तो अपनी कुर्सी पर बैठ करके कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ टाइम टाइम पे 1-2 घंटे बीच में रेस्ट गैप ले करके वो योग करके ऑफिस योग का करके वो स्वस्थ रह सकते हैं, उनको बैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा मेंटली, तो वो ऑफिस के लिए ऑफिस योगा बहुत ही
1: आपने इस तरह से वर्गीकरण
0: फायदेमंद है।
1: कर लिया है,
0: जी
1: अलग अलग लोगों के लिए
0: हाँ,
1: अलग
0: जिससे
1: अलग तरह
0: सब
1: के
0: सभी
1: योग
0: स्वस्थ
1: जो
0: रहे।
1: है तय कर लिए आपने।
0: जी
1: अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है और आप न केवल कई बड़ी हस्तियों को सिखाते हैं बल्कि जनता के बीच योग की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने का
0: जी
1: काम आप कर रहे
0: जी जी
1: हैं। विश्व योग दिवस तकरीबन 2015 से मनाया जा रहा
0: जी
1: है, बीते इन 11 सालों में आपने क्या देखा है? क्या योग की लोकप्रियता और इसके प्रति लोगों का रुझान अब बढ़ता जा रहा है?
0: अब कोर्स बहुत ही बढ़ता जा रहा है हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में योग के प्रति, और जब से कोरोना का समय आया है
1: जी
0: उसके बाद से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, और जिसका कारण है कि आज हम देखते हैं कि हर पार्क में लोग इकट्ठा होते हैं, जो योग कर सकते हैं योग करते हैं, टहलने का काम करते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो करके लोग अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ उठाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो लोगों की जागरूकता बहुत बड़ी है अपने स्वास्थ्य के प्रति, लोग
1: जी
0: अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी लिविंग स्टाइल, और योग के प्रति योग ध्यान प्राणायाम साधना इसके प्रति तो लोगों की रुचि बहुत ही बढ़ी है, और हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि घर घर योग सभी रहे निरोग।
1: वाह। अच्छा, एक बड़ा जो लोगों का रुझान है वो है वजन घटाने की तरफ, क्योंकि अमूमन अब लोग ओवरवेट होते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: पर बहुत कोशिशें करते हैं और वजन घटता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे कि केवल योग करना ही काफी है या उसके लिए एक संपूर्ण पैकेज होता है कि किस तरह से आप क्या खाए पिए, कैसे जिए कि वजन भी नियमित रूप से कम हो और एक संतुलित जीवनचर्या बन सके?
0: जी रही बात वजन कम करने की, तो आप देखते हैं कि अमूमन लोग चाहते हैं कि हम योग से बहुत कम समय में वजन को कम कर लें, तो ऐसा
1: चमत्कार
0: चमत्कार और संभव नहीं है,
1: जी।
0: क्योंकि जितने समय में जो वजन बढ़ा है,
1: हाँ, कई लोग तो बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं
0: हाँ
1: जंक फूड
0: 5 साल
1: खा
0: में 2 साल में
1: खा
0: हाँ इतने टाइम में बढ़ा है, तो उसको कम करने में भी समय लगेगा,
1: के जी
0: और योग से जो वजन आपका कम होगा वो ज़्यादा दिनों तक मेंटेन रहेगा। तो योग ही नहीं, योग के साथ आपको अपने आहार विहार पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उसके साथ में वर्कआउट जो आप करेंगे योग का सबसे अच्छा रिजल्ट आता है आपका सूर्य नमस्कार से, उसके साथ साथ सब जितने भी अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज है प्राणायाम है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन से आप केवल फिजिकली नहीं मेंटली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे होते हैं ध्यान से, क्योंकि
1: अच्छा
0: सब कुछ ब्रेन से ही संचालन होता है।
1: जी,
0: हाँ, जैसे रोगों का शुरुआत होता है स्ट्रेस से होता है, लोगों को पता नहीं लेकिन स्ट्रेस हो गया तो कहाँ से होता है, ब्रेन से ही होता है, तो उसके बाद ही तरह तरह की बीमारियां मेनू की तरह जुड़ती जाती हैं, तो ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन।
1: बिल्कुल। तो मेडिटेशन तो कहीं भी किया जा सकता है, चाहे वो आप अपने ऑफिस में हो,
0: कहीं भी कर
1: स्कूल में
0: सकते
1: हो,
0: हैं
1: कॉलेज में हो,
0: आप,
1: घर पे हो।
0: कभी भी कहीं भी कर सकते हैं मेडिटेशन,
1: जी
0: और हम लोग तो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आपने आहार विहार की बात की, आजकल जंक फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग कहीं भी
0: जी
1: खड़े हो जाते हैं
0: जी
1: और
0: जी
1: सड़क के किनारे के किसी भी चीजों को खा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि सेहत की समस्याएं होती हैं और वजन बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। क्या योग करने वाले व्यक्ति की जीवनचर्या के तहत आप ये इजाजत देते हैं कि वो इस तरह से मजे से बाहर खाता पीता रहे?
0: देखिए सब कुछ हमारे ब्रेन से ही सब कुछ संचालन होता है
1: जी
0: मस्तिष्क से ही,
1: जी
0: और अपने को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं किस भाव से खा रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप योग ध्यान से अपने जीवनचर्या को आहार विहार को संतुलित किए हुए हैं तो आप बाहर की चीज़

0: को आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने सेहत के प्रति आप जागरूक हो रहे हैं। और रही बात बाहर की खाने की, तो आप अच्छे भाव से खाएंगे तो भगवान शिव ने विष को भी धारण कर लिया था, लेकिन वो उनको नुकसान नहीं किया। तो कहने वाला कि जबरदस्ती जानबूझ के नहीं खाना पीना है, लेकिन कभी हो गया तो
1: जरूरत से ज्यादा नहीं।
0: जी जरूरत से ज्यादा नहीं।
1: जी, आज के नौजवानों का क्या रुझान आप देख रहे हैं योग के प्रति? और क्या कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया था और उन्हें आप सही रास्ते पर लाए?
0: ऐसे बहुत से नवयुवक हमसे मिलते हैं, बहुत से मिले हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग भी करते थे और अनियमित दिनचर्या के कारण उनके फिजिकल सिस्टम भी चेंज हो गए थे, बेडोल हो चुके थे। लेकिन उनको सही मार्ग मिलने पर, जैसे हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं, गुरु जी आप जैसे 20 साल पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। हाँ, तो उनको एक प्रेरणा भी मिलती है कि कोई भी जैसे योग फील्ड में है आप देखेंगे तो फिट ही रहते हैं,
1: जी
0: तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और युवा शक्ति भी, अब हमारी जेंजी जो आजकल जेंजी बोलते हैं, बहुत ही समझदार और बहुत ही होनहार बच्चे हैं और वो सब चीज़ों को समझते हैं और हमसे आपसे ज़्यादा वो जागरूक हैं। और उनको क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरी है लाइफ के लिए, वो कर रहे हैं, सही दिशा में वो जा रहे हैं, अपने भविष्य को भी लेकर हमारे देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों में और नवयुवकों में तो बहुत परिवर्तन आया है। और मैंने देखा है कि जिम भी करते हैं और योगा भी करते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम भी करते हैं। तो
1: बिल्कुल, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, आज की दुनिया ऐसी है जहाँ स्क्रीन की तरफ रुझान बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका जो ध्यान बहुत भटकता है पढ़ाई में, क्योंकि
0: जी
1: मोबाइल हाथ में है। अगर एक बार सोशल मोबाइल मीडिया में घुस गए तो कई घंटे चले जाते हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। ये जो फोकस है,
0: जी
1: इसके लिए किस तरह के योग करने चाहिए, ये छात्रों की बात कीजिए आप।
0: सबसे पहले तो हम छात्रों की बात आती है, और मैं योगी ही योगीराज हूँ, तो हमारे जो छात्र हैं चाहे वो जूनियर कॉलेज को हों चाहे कॉलेज के, पहला तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे आशा भी करेंगे, तो पहला कि जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाएं, जीवन का जो मूल है वो शक्ति का, वीरवान बने और शौर्यवान बने। और उसके साथ साथ जो मोबाइल की जो स्क्रीनिंग है, मोबाइल है लैपटॉप स्क्रीन का जो ज़माना चला है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारा योग और मेडिटेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के इस स्क्रीनिंग से। तो उसके लिए भी मोबाइल चर कह लीजिए कि मोबाइल स्क्रीन को भी अपने लाइफ में जितनी आवश्यकता है सीमित करना है, और किस फील्ड में उसे में क्या लाभ है उसको जोड़ना है, और खुद से उनको समझ करके उनके लाइफ में क्या ज़रूरी है। स्टडी बच्चों को पढ़ना भी स्क्रीन के अलावा हो नहीं रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट है जितना समय सीमित है उतना ही उसको उपयोग करें, और फिजिकली वर्क में भी अपने को ध्यान दें, खेल कूद भी करें, योग करें, प्राणायाम करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: जी, एक और बहुत जरूरी बात और एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी बात मैं करना चाहता हूं, वह है हमारी महिलाएं। उनमें से कुछ हैं जो गृहिणियां हैं,
0: जी
1: और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बाहर काम करने जाता है। उनके जिम्मे बहुत सारे काम हैं, तो वो घर भी संभालती हैं,
0: जी
1: बच्चों को भी ध्यान देना है, और ऊपर से फिर अपना जो काम है वो भी नियमित रूप से करते रहना है। ऐसे में वो अपने स्वास्थ्य को अमूमन नजरअंदाज करती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: पहले तो हम अपनी देश की नारी शक्ति को हम प्रणाम करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद ही कोई उठा सकता है। और रही बात उनको खुद की, अपने स्वास्थ्य की, तो हम तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारी गृहिणियाँ हैं, हमारी नारी शक्ति है, वो अपने पर ध्यान नहीं रखती हैं, ध्यान ही नहीं दे पाती, क्योंकि इतना उनका व्यस्त जीवन रहता है सुबह से शाम तक का। बहुत से हमारे नारी शक्ति हैं जो कि घर का भी काम करती हैं, ऑफिस का भी काम करती हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि 24 घंटे में 20 मिनट अपने लिए समय कैसे भी निकालें, क्योंकि इस शरीर से ही पूरा संसार है, इस शरीर से ही पूरा घर परिवार है, समाज है, सोसाइटी है, इस शरीर से ही है। तो अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकालकर सुबह या शाम जब भी समय मिले, नहीं कुछ तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट ध्यान शुरू करें, तो उससे क्या है कि उनको, महिलाओं को बहुत ज़्यादा चैलेंजेज होते हैं, तरह
1: जी,
0: तरह की
1: मन भी कई बार अशांत रहता है।
0: अशांत रहता है मन, और सब मन से ही सारी चीज़ें होनी है, और बहुत से ऐसी जो व्याधियाँ हैं कि उनको बहुत जल्दी परेशान करती है, गायनोलॉजिकल हुआ या इससे बहुत

0: से चीज़ें, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है जो योग मेडिटेशन और
1: क्या
0: प्राणायाम।
1: महिलाएं सूर्य नमस्कार कर सकती हैं?
0: क्यों नहीं कर सकती, बहुत अच्छे से कर सकती हैं, करती हैं,
1: जी
0: लेकिन ज़्यादा एज के हैं उनको सावधानी रखनी पड़ेगी। और जो भी करें सीख करके योगा इंस्ट्रक्टर या गुरु के सानिध्य में करके करें, करती हैं सब, यंग हैं नारी शक्ति, तो सूर्य नमस्कार भी कर सकती हैं, 20 मिनट 25 मिनट करके पूरे दिन स्फूर्ति से काम कर सकती
1: लेकिन
0: हैं।
1: किसी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में करना ज्यादा अच्छा
0: हाँ,
1: है।
0: सीख लें तो वो बेहतर है, क्योंकि
1: जी
0: योग अगर सही किया गया तो गुणनफल में फायदा होता है,
1: जी
0: अगर गलत किए तो गुणनफल में उसका नुकसान भी हो सकता है।
1: जी
0: तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु के सानिध्य में रह करके सीख के करें।
1: चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से विश्व योग दिवस पर क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद क्योंकि आप बांसुरी भी बजाते हैं तो हम सबसे अंत में आपका संगीत भी सुनेंगे। पहले विश्व योग दिवस पर आप अपनी बात कहिए जो हमारे श्रोताओं से आप कहना चाहते हैं।
0: हम अपने सभी विविध भारती के सभी श्रोताओं को हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो योग महोत्सव का जो पर्व चल रहा है हमारे देश में 100 दिन का, और 21 जून को हम लोग अंतिम महोत्सव का मनाएंगे, और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि लोग 21 जून को ही ज़्यादातर लोग योग करते हैं, उसके बाद बहुत से लोग छोड़ देते हैं।
1: मतलब हर साल 21 जून को करते
0: इक्कीस जून को
1: हैं
0: साल में एक बार ही करते हैं, पूरे जोश से सब बढ़िया टी शर्ट खरीदेंगे, बढ़िया ट्रैक वगैरह खरीद के
1: हाँ
0: योगा मैट भी खरीद लेते हैं।
1: हाँ
0: तो एक दिन करते हैं, उसके बाद फिर रख देते हैं।
1: जी
0: तो हम अपने विविध भारती के तरफ से हम सभी श्रोताओं को, पूरे विश्व के सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, केवल 21 जून को ही न करें,
1: जी
0: पूरे वर्ष भर करें, हर दिन योग अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ और सुंदर बने रहें। यही हमारी श्रोताओं से हमारा निवेदन है।
1: और
0: और
1: अब हम आपसे बांसुरी सुनना चाहेंगे।
0: जी, हम बांसुरी सुनाएंगे श्रोताओं को, और इस बांसुरी धुन के साथ में हमारे श्रोता आराम से बैठ जाएंगे, अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, तो थोड़ा सा मेडिटेशन हमारी बांसुरी की धुन पर, आंखें बंद करके श्वास लें, श्वास अंदर श्वास बाहर, अपने श्वास को देखना है
1: जी
0: और इस मधुर बांसुरी के साथ ध्यान करना है।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही मीठी बांसुरी की धुन आपने सुनाई और हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने इस धुन के सहारे ध्यान जरूर किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पालघर पीठाधीश भारत भूषण भारतेंदु जी, आप विविध भारती में आए और आपने योग के इतने सारे गुर हमें बताए और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। फिर से योग दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आप विश्व योग दिवस पर ये विशेष प्रस्तुति सुन रहे थे जिसमें योगीराज भारत भूषण भारतेंदु से आपके इस दोस्त यूनुस खान ने बातचीत की और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इसी के साथ आज का मैटिनी शो यहीं खत्म होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने

0: के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

पराया धन, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आरडी बर्मन की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में आपको वो गीत सुनवा रहे हैं जहां कहीं ना कहीं इंतजार है, मुलाकात है।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, और अंतराल पर जाने से पहले आप सुन रहे थे खानदान फिल्म से गीत। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लायलपुरी ने उसे लिखा और खयाम का संगीत था।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विजय पथ फिल्म से। जमीर काजमी ने इसे लिखा था, अनु मलिक का संगीत। यादों की महफिल में आज वो गीत जहां कहीं इंतजार है, मुलाकात है और प्यार है।

0: फिल्म पाप से इस गीत को अभी आप सुन रहे थे, अनु मलिक ने संगीत दिया था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

हरिहरन और सुखविंदर सिंह की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और एआर रहमान का संगीत। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली सिक्स, इस फिल्म से ऐश किंग की आवाज, प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत।

विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर 2 से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, अनु मलिक और मिथुन का संगीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा, अंजाम फिल्म से इसे लिया गया था। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यही संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर और आज इस सफर में मैं रहूंगी आपके साथ अनुराधा। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज के इस प्रोग्राम में एक इबारत या जिसे कहते हैं टेक्स्ट, उसे पोस्ट किया जाता है फेसबुक पेज पर और आपको शब्द चुनने होते हैं। साथ ही साथ ये बताना होता है कि उस इबारत में से जो शब्द हैं उनमें से कौन से गीत बन रहे हैं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आपके प्यार भरे संदेश, प्यार भरे गीतों की लिस्ट हम तक पहुंच चुकी है और आपने शब्द भी बहुत सारे खोज लिए हैं। हालांकि इबारत बहुत छोटी थी लेकिन उसमें शब्द बहुत सारे थे, तो आपने वो खोज लिए हैं, मैं पढ़ चुकी हूं और शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की। लेकिन उससे पहले हम उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, हम ये इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, रिमझिम ये बारिश, बादल का समा, जमीन ने चुपके से छू लिया आसमान, रुनझुन सी आहट, एक सपना सा आया, एक लड़की की मुस्कान में दिल खो सा गया, हाथ में खिलता गुलाब और रोशन एक दिया, और दिल का दीवाना कुछ कह ना सका, उस पल लगा जैसे यही है जहां, वो बारिश, वो जमीन, वो आसमान। तो ठीक है, आप बताइए मुझे कौन कौन से गीत इनसे आपको लगता है कि आज के इस लिस्ट में शामिल होंगे। और ये भी देखते हैं कि आपकी और हमारी गीतों की

लिस्ट कितनी मिलती जुलती है, लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि एक गीत ऐसा है जो बार बार कमेंट्स में आया है, और जब भी बारिश की बात होती है, सावन की बात होती है, रिमझिम की बात होती है, वो गीत सबसे पहले जुबान पर आता है। तो उसी गीत से शुरुआत की जाए।

रिमझिम गिरे सावन। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत, योगेश का लिखा हुआ, आरडी बर्मन की तर्ज और मंजिल फिल्म से अभी मैंने आपको सुनवाया। और सबसे ज़्यादा चाहने वाला, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला ये गीत आपके कमेंट्स में भर भर के था। और भी गीतों की बारी आएगी, लेकिन आपके संदेश ले लेते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की छोटी सी सुंदर सी इबारत, जब रिमझिम बारिश बादलों और आसमान के बीच एक खूबसूरत एहसास जन्म लेता है, रिमझिम गिरे सावन, वो तो हम ले चुके हैं। बारिश याद दिलाती है बचपन की, जब बेफिक्र से बारिश के बादलों के साथ उड़ने को जी चाहता था। और प्रकृति में हर तत्व का संतुलन है, मौसम तब तक अधूरा है जब तक झमाझम बारिश ना हो जाए। लेकिन बारिश की कमी अभी थोड़ी लग रही है, थोड़ा इंतजार ज्यादा करवा रही है बारिश। लेकिन आपके जो मैसेजेस हैं वो भी एक खूबसूरत बरसात लेकर आई है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो मैं विविध भारती का वो फेमस गीत जो हर समय हर मौसम में बजता है, बहुत ही लाजवाब सुंदर गीत है, रिमझिम गिरे सावन, उसके बारे में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बारिश शुरू नहीं हुई लेकिन विविध भारती के सुरीले सफर में बारिश और गीतों के बौछार की बारिश बड़े तेज हवा के साथ आगे चल रही है और ये सफर पूरा करना चाहते हैं हमारे साथ।

बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम बारिश और भीगा आसमान छाएगा सुरीला सफर में। और एक और श्रोता हमारे हैं जिन्होंने लिख भेजा है कि आपकी इबारत ने सचमुच बरसात की बूंदों की तरह मन को भिगो दिया है। ये पंक्तियां प्यार, प्रकृति और संकोच के खूबसूरत मिलन की तस्वीर दर्शा रहा है। बारिश का मौसम और जमीन आसमान का जुड़ाव एक रूहानी माहौल बनाता है। शब्दों की ये रूहानी बुनावट और मोहब्बत का मुकम्मल एहसास दिल को छू लेने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, बारिश की बात हुई है तो इसी से जुड़ा कुछ सवाल लेते हैं। जब बात बारिश की आती है, बरसात की आती है, पहली बरसात की आती है किसी खास के साथ, तो वो एहसास ही बहुत स्पेशल, बहुत खास होता है। तो आपकी कुछ पहली बरसात की यादें आप ताज़ा करना चाहें तो लिख भेजें, बहुत ही कम शब्दों में, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके संदेश पढ़ सकूं। तो बारिश के रूहानी एहसास, पहली मुलाकात या कुछ ऐसा जो बारिश में आपको याद रह गया हो, मुझे लिख भेजिए।

फिल्म दर्द से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लालपुरी ने इसे लिखा और खयाम का संगीत था। बारिश बरसात से जुड़े आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कल तो हमारे यहाँ इतनी रिमझिम बारिश हुई, सुबह 8 से 10 तक मूसलाधार वर्षा हुई और पानी चारों तरफ भर गया। एक तरह से रेनी डे ही हो गया और कोई कहीं ऑफिस ही नहीं जा पाया। अच्छा है ना, आपको छुट्टी मिल गई इसी बहाने। एक और श्रोता लिखते हैं कि जैसे ही ये पहला गीत बजाया हमने, वैसे ही बहुत मजा आ गया क्योंकि रिमझिम से यही गीत उन्हें सबसे पहले याद आता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, इसी गीत पर पिछली बारिश के दिनों में हम मुंबई आए हुए थे। मरीन ड्राइव और समंदर किनारे में और मेरी धर्मपत्नी एक छाता लेकर चल रहे थे। बारिश हो रही थी और इस गीत पर बेटी ने वीडियो भी बनाया था और हमारी हाइट भी लगभग वैसी है जैसी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी की है। जी हाँ, ये छोटे छोटे से पल हमेशा याद रहते हैं और कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाना, फोटोज खींचना, कहीं ना कहीं ये याद बहुत ही मीठी यादें रहती है और ऐसा जरूर करना चाहिए जब भी वक्त मिले। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मंजिल फिल्म का गीत बजाकर बस एक आस जगा रही है, एक आस जग रही है। यहाँ पर 44 डिग्री तापमान में झुलस रहे हैं और आसमान देखते हैं, बादल तो नहीं दिख रहे, बस आग बरस रही है। कहाँ से आपने ये मैसेज संदेश भेजा है हमें ये भी लिखिए और वहाँ का मौसम कैसा है हमें ये भी लिखिए। एक और श्रोता करते हैं, लिखते हैं कि बूंदों से भिगोने वाली शानदार गीत से आपने आरंभ किया है और ये विविध भारती का बहुत ही फेमस गीत है, हमेशा बजता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो या ना हो, लेकिन ये गीत सुनते ही बारिश के बूंदों से हम भीग जाते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज तो मौसम और प्रकृति से संबंधित विषय पर ही चर्चा होगी और इन्हें लगता है कि बारिश, जमीन, खुशी, अपनापन ये विषय हो सकते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बचपन में गांव में जब वे थे तो पहली बारिश में खेतों से उठती सौंधी खुशबू मदमस्त मादक माहौल बना देती थी। जी हाँ, ये सौंधी खुशबू बहुत कुछ याद दिलाती है। तो आप मुझे लिख भेजिए कि आप कहाँ से हमें संदेश भेज रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, बारिश हुई है, कुछ छींटे बरसे हैं या फिर कैसा तापमान है, और आपकी बारिश से जुड़ी यादें ज़रूर मुझे भेजिए। लेकिन साथ ही साथ कई यादें बहुत अच्छी भी होती है और कई यादें थोड़ा सा परेशान भी कर देती है, तो आप इस तरह के किस्से भी लिख सकते हैं मुझ तक।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन का संगीत था। और आपके बारिश में भीगे खत मुझ तक पहुंचे हैं।

यूं कहें मैसेजेस पहुंचे हैं, डिजिटल खत कह सकते हैं इसे, जो संदेश आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरती बूंदों और मिट्टी की सौंधी महक के बीच बारिश में हुई वो हमारी पहली मुलाकात आज भी जहन में ताजा है। अचानक आई तेज बौछार से बचने के लिए हम दोनों एक ही छोटे से शेड के नीचे आकर खड़े हुए थे, और एक तरफ आसमान से बरसता पानी था, दूसरी तरफ हमारे बीच की वो अनकही झिझक। हवा के ठंडे झोंकों के साथ जब हमारी नजरें मिली तो बिना कुछ कहे ही एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हो गया। बहुत ही खूबसूरती से आपने उस मुलाकात को लिखा है, और सचमुच एक कहानी जो है वो नजर आ रही है। इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है, बहुत ही खूबसूरत संदेश है ये। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आजकल बारिश सिर्फ नाम की होती है, रिमझिम बारिश नहीं होती, एक झटके में आंधी तूफान के साथ आती है और चली जाती है। हमारे श्रोता एक और हैं जो लिख रहे हैं कि ये कागज़ की कश्ती, ये बारिश का पानी, जब भी बारिश की बात आती है तो कागज़ की कश्ती चलाने का बचपन में अपना एक महत्व रहता था, वो उन्हें याद आता है, और गज़ल सुनना चाहते हैं। देखते हैं आज की लिस्ट में क्या क्या गीत शामिल हैं। एक और श्रोता हमारे हैं जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम सफ़र में चल रहे हैं, बेटी कार चला रही है और हेडफोन से सुरीला सफ़र का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता अपनी परेशानी, अपनी चिंता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग ना जाने किस किस चीज़ की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे प्राण अटक जाते हैं। कई सालों बाद ऐसे होने जा रहा है और बरसात बहुत कम हो रही है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और ये जो मानसून अटका पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इससे खेती को बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा और न जाने क्या होगा। देखिए कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए भगवान के ऊपर, है ना, बस जैसे जो आ रहा है उसे उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस यही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं सूरत गुजरात से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और ऊपर से चिलचिलाती गर्मी है, आपके बारिश के गाने अलग हैं, तो अब हम क्या करें। आप गीत सुनिए और आनंद लीजिए। हमारे को श्रोता कहते हैं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से लिख रहा हूं और यहां तक अभी बारिश का लेश मात्र स्पर्श तक नहीं है, मानो आसमान से आग बरस रही है। एक और श्रोता हमारे बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखते हैं कि एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा सा जवाब आया अभी, बहुत ही खूबसूरत। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और ये जो बारिश का मौसम है जिसने हमें दीवाना बना रखा है, उस पर ये गीत।

लव स्टोरी फिल्म से ये गीत आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में आप सुनेंगे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज़।

पानी लगती। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है और ये बारिश भी दीवानी लग रही है क्योंकि हमें बहुत सारा इंतजार करवा रही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुणे में तो अब तक बारिश का नाम ही नहीं है और बाहर चिलचिलाती धूप है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक दूसरे श्रोता लिखते हैं कि मौसम चाहे कैसा भी हो, सुरीला सफर में जो मौसम होता है वही आसपास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे हैं जो लिखते हैं कि बारिश के दिनों में मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी दोनों छोटी थी, दोनों हाथ पकड़कर छत पर जा रही थी, उनको बारिश में भीगना है पर सब उनको मना कर रहे थे। वो छाता लेकर बड़ा सा और भीगती गई और बहुत देर तक आनंद लेती रही और थोड़ी देर के बाद छतरी बंद करके खूब भीगी और फिर खूब मजे किए। ये बचपना उनका देखकर हम सब हंस दिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुंज से लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन तापमान 27-28 के बीच ही रहता है। कुल मिलाकर प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं। जाने कैसी ये बारिशों की मनमर्जियां हैं, कहीं जमकर बरसना कहीं बस अर्जियां हैं, है बेबस सब इनके आगे। मेरे गांव के आसमां से यूं तो रोज गुजर रहे हैं बिना बरसे ही बादल, न जाने कैसी ये बारिशों की खुदगर्जियां हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी श्रोता लिखते हैं कि अभी तक संदेश नहीं लिख पाए क्योंकि कहीं बाहर थे और अभी घर पहुंचे हैं, अभी मां ने भोजन दिया है और साथ ही साथ संदेश भी लिखेंगे। साथ ही एक और श्रोता है वो लिख रहे हैं कि मैं गा रहा हूं, मेरी श्रीमती जी गा रही हैं रेडियो के।

सभी श्रोता गा रहे हैं, विविध भारती गा रही है और ये सुहाना सफर में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता है, वो अयोध्या से हमें संदेश भेज रहे हैं कि यहाँ पर तापमान चढ़ा हुआ है, मई में एक दो बार बारिश हुई, जून का 20 दिन इंतजार में गुजर चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, कभी कभी एक दो बार आंधी की कुछ फुहारें पड़ी है, जून 9 के बराबर है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म से ये जो गीत उन्होंने सुना, इसमें जब ये रिलीज हुई थी उसके बाद नायक और नायिका की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी, इतने लोकप्रिय हो गए थे वो, ऐसा जादू चल गया था कि लड़का लड़की शब्द आम बोलचाल भाषा का हिस्सा बन गया था और ये बहुत ही खूबसूरत गीत उन्हें लगता है, उस दौर की मासूम मोहब्बत और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर जाता है। हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये गीत बहुत ही पसंद आ रहा है उन्हें और अभी उनके शहर में बारिश नहीं आई है, बारिश के गीत तो बहुत सारे हैं और कुछ गीत उन्हें याद नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए जो हम आपको सुनवा रहे हैं और आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुरीला सफर।

पुरानी यादें ताज़ा कर जाता है। हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये गीत बहुत ही पसंद आ रहा है उन्हें, और अभी उनके शहर में बारिश नहीं आई है। बारिश के गीत तो बहुत सारे हैं और कुछ गीत उन्हें याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए जो हम आपको सुनवा रहे हैं, और आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुरीला सफ़र।

मैंने प्यार किया, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था। हमारे श्रोता लोग जो हैं वो हमें मौसम के बारे में बता रहे हैं। जालंधर सिटी में तापमान 37 डिग्री है इस वक्त। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि मेरे बेटी, दामाद, बेटा और नाती वैष्णो देवी घूमने गए हैं और सूचना मिली है कि वहाँ का मौसम बहुत ही हसीन, सुंदर और ठंडक से भरा हुआ है। जी हाँ, वहाँ पर गर्मी के वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चिलचिलाती धूप में बारिश के गाने सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स के एग्जाम में केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हों। हमारे एक श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि धुआंधार बारिश में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हो गई थी। वो नए नए डाक विभाग में सिलेक्ट हुए थे और नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में उन्हें जाना था। बाइक से अप डाउन करते थे, बीच में एक नदी थी जिस पर एक पुल हुआ करता था और बारिश के दिनों में ऑफिस की छुट्टी होने पर वो निकल पड़े। ऑफिस की छुट्टी होने पर, अच्छा, जब ऑफिस ख़त्म हुआ तो वो निकल पड़े और ज़ोर से बारिश हो रही थी और पुल पानी पर चढ़ चुका था और ऐसे में जब वो क्रॉस करना चाह रहे थे उसे तो बहाव इतना तेज़ आया कि बाइक समेत पानी में धकेल दिया गया पानी के बहाव ने उनको। और गनीमत है कि अच्छा तैराक होने के नाते वो किनारे तक पहुँच गए लेकिन बाइक बह गई। जी हाँ, ये परेशानी तो होती ही है लेकिन अच्छी तैराकी ने आपको बचा लिया। और सचमुच कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को सीखना ज़रूरी होता है और होना चाहिए, शौक के तौर पर भी, और एक पैशन भी होता है जो ऐसी ऐसे जब सिचुएशन आती है तो ऐसे में हमको बचा भी लेता है। एक और श्रोता है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। अहमद फराज की लिखी पंक्तियां हैं ये। एक और श्रोता है, वो कहते हैं कि 10 गीतों की लिखी हुई इबारत में से 8वें नंबर पर ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गीत में लता मंगेशकर ने ये पगला है, इन शब्दों को बहुत ही अलग अलग तरीके से गाया है और गौर से सुनने लायक है। जी हाँ, अजमेर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि बारिश तो नहीं है, रिमझिम बारिश, हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है और काले बादलों का समा है आसमान में बन रहा है और थोड़ी बहुत खुशी आती है पल भर की लोगों के चेहरे पर कि बारिश होगी लेकिन काले बादल टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेते हैं। इंदौर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गाने सुनने के लिए बादल आ गए हैं, सुबह धूप थी लेकिन अभी अचानक मौसम में बदलाव आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारा मौसम, हमारे जो प्रोग्राम है वो सुन रहा है और इसीलिए तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में अगला गीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी वर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे हमसफर के साथ में पहली बारिश बाराखंबा गया था और वहां दोनों भीग गए थे। दोनों ने एक साथ चाय पी और सचमुच ही वो पहली बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। अभी उनकी हमसफर उनके साथ नहीं है लेकिन विविध भारती का साथ सदैव ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि धूप ने धरती को कितना तपाया है, अब हर नजर ने बादलों को बुलाया है। खंडवा की राहों में बस यही अरमान है, बरसे मेघ झूमकर, यही सबका इंतजार है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। सुरीला सफर का अंदाज बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस खूबसूरत गाने के साथ शुरू हुआ आज का कार्यक्रम। सचमुच बारिश आने वाली है और हमारे यहाँ तो पहली बारिश हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और प्रकृति को झूमते हुए देख मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ये हमें संदेश भेज रहे हैं इच्छावर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश से मच्छर बहुत आते हैं रात को और दिन में मक्खियां, और दोनों में कंपटीशन लगा हुआ रहता है और इंसानों को परेशान करने का, तो इन सभी से जरूर बचें। बिल्कुल, जो भी जरूरी एहतियात है उसे बरतें और जरूर जरूर बचें इन सब चीज़ों से, क्योंकि बारिश तो है ही लेकिन साथ में बीमारियां भी इस मौसम में बहुत ज्यादा आती है, तो अपना ध्यान रखें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के जो गीत हैं ये लोगों को सुकून दे रहे होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि भीगना तो तय है, चाहे बारिश में हो या गर्मी में। अभी दुकान पर काम करते करते हमारी बातें सुन रहे हैं वो, और बाहर घने बादल छाए हैं, दुकान के अंदर पसीने से भीग रहे हैं वो। 2019 की एक बात कहते हैं एक श्रोता, और उन्होंने लिखा है कि अगस्त महीने में पटना में इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पटना बारिश से डूब चुका था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हुई वो पानी पीने की हुई। पीने का जो पानी था उसकी बहुत दिक्कत हुई, वो नहीं मिल पा रहा था और जहाँ तहाँ कैसे करके इंतज़ाम किया गया मोहल्ले में, और कोई गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी उस वक्त। तो ऐसे में ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी देती है। जी हाँ, इन सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश के फुहारों के साथ हंसी के सुरीले फुहारे तब निकले थे जब साथ में मेरी हमसफर थी और पैदल चलते हुए फोल्डिंग छतरी तेज हवा के कारण आधी ऊपर की तरफ हो गई थी। हम भीग भी रहे थे और हंस भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत संदेश। और अब ये गीत इस फेरिस्त में।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसके साथ ही हम बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर। आपके मैसेजेस मुझ तक बहुत से आए हैं, मैंने कोशिश की है कि सबके मैसेजेस पढ़ूं, सबके संदेश पढ़ूं, लेकिन हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार ओले बरस रहे थे, साइज भी उनका ठीक ठाक था, फोन से वो पिक ले रही थी और उनकी गर्दन पर एक ओला आकर गिरा जो कि बहुत पेनफुल था। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बाइक पर बारिश में भीगते हुए घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आपके गीतों के साथ बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर बारिश भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश है। और लेकिन अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपने आज का ये सफर तय किया अनुराधा के संग। इजाजत चाहती हूँ इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। अब से कुछ देर बाद पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम से श्री मोदी 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में योजना की राशि अंतरित की जाएगी। इस अवसर पर पटना के बामेती सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। इस दौरान पटना में बापू परीक्षा भवन समेत राज्य के प्रमुख केंद्रों पर परीक्षा के आयोजन का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। इसे लेकर यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। नीट पुनर्परीक्षा के लिए राज्य के 34 जिलों में 331 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 1,56,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। परीक्षा के मद्देनजर बेली रोड पर मेट्रो कार्य के लिए आज से प्रस्तावित ट्रैफिक ट्रायल भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इधर राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग विशेष बसों का परिचालन करेगा। साथ ही रेलवे की ओर से नीट परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए कल विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कल आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होकर नेतृत्व प्रदान करेंगे। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में भी योग शिविरों और योग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य शामिल होंगे। वहीं प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में भी योगाभ्यास सत्र का आयोजन होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ, भोजपुर और बक्सर जिले में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान

0: कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। राज्य सरकार ने क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप को पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2026 के तहत यह अनुशंसा की गई है। गोपालगंज निवासी मुकेश कुमार और रोहतास के आकाशदीप तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने कई अहम मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। शेखपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले वायरल वीडियो के मामले में आरोपी युवक को कुसुम्भा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र से रफीगंज गोह मुख्य मार्ग पर पिकअप वैन और ऑटो रिक्शा की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। अररिया जिला अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए LIA की बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला प्रशासन, SSB और अन्य खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप वसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की रकम जारी करेंगे। अब से कुछ देर बाद मगरबी बंगाल के हुगली में मुनाकिद प्रोग्राम से जनाब मोदी 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में DBT के जरिए 18,880 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मुंतकिल करेंगे। बिहार के 73,00,000 से ज़्यादा किसानों के बैंक खातों में इस स्कीम की रकम मुंतकिल की जाएगी। इस मौके पर पटना के बामिती ऑडिटोरियम में मुनाकिद होने वाली तकरीब में वज़ीर आला सम्राट चौधरी समेत कई मौजूद शख्सियात मौजूद रहेंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कल होने वाले नीट UG री एग्ज़ाम से कबल आज कौमी सतह के मॉक ड्रिल का इनाकाद कर रहा है। इम्तहान से कबल मयारी तैयारी के जायजा के लिए यह मशक किया जा रहा है। इस दौरान पटना में बापू परीक्षा भवन समेत रियासत के अहम मराकज़ पर इम्तहान का इनाकाद का कबल अज़ वक्त मशक किया जा रहा है। इसके पेश नज़र ट्रैफिक निज़ाम में भी तब्दीली की गई है। नीट री एग्ज़ाम के लिए रियासत के 34 अज़ला में 331 मरकज़ बनाए गए हैं। इम्तहान में 1,56,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों के शरीक होने का इम्कान है। इम्तहान के मद्देनज़र बेली रोड पर मेट्रो काम के लिए आज से मुजवज़ा ट्रैफिक ट्रायल भी फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। इधर रियासती हुकूमत ने बदउनवानी से पाक माहौल में इम्तहान मुनाकिद कराने के लिए हिफाजत के बेहतर इंतजाम किए हैं। इम्तहान दहिंदगान की सहूलत के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट खसूसी बसें चलाएगा। साथ ही रेलवे की जानिब से कल नीट इम्तहान उम्मीदवारों के लिए खसूसी ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। 12वें बैन अल-अक़वामी यौम योगा के मौके पर कल मुल्क भर में मुतअद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। इस सिलसिले में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में बैन अल-अक़वामी यौम योगा के प्रोग्राम में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगी। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोलकाता में मुनक़द होने वाली मरकजी तकरीब में क़यादत करेंगे। इस साल यौम योगा का थीम है सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा। राजधानी पटना समेत रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में योगा कैंप और योगा बेदारी के प्रोग्राम मुनक़द किए जाएंगे। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक़द होने वाली मरकजी तकरीब में वज़ीर आला सम्राट चौधरी समेत रियासती काबीना के कई अरकान शरीक होंगे। वहीं रियासत के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भी योगा की मशक के सेशन का इनाकाद किया जाएगा। राजधानी पटना समेत रियासत के जनूब मगरबी हिस्सों में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भभुआ, भोजपुर और बक्सर अजला में लू चलने के इम्कान के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया है। महकमा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा, जहां का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आज रियासत के शुमाल और जनूब मशरकी हिस्सों में

0: कुछ मकामात पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। शेखपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर असलहा लहराने वाले वायरल वीडियो के मामले में मुलविस मुलजिम नौजवान को कुसुम्भा थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। औरंगाबाद जिला के रफीगंज थाना इलाके में रफीगंज गोह शाहराह पर पिकअप वैन और ऑटो रिक्शा के दरमियान होने वाले तसादुम में दो अफराद हलाक हो गए जबकि दो दीगर जख्मी हुए हैं। अररिया जिला के सरहदी इलाकों में अमनो अमान और सिक्योरिटी के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने के लिए LIU का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इसमें ज़िला इंतजामिया SSB और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान ने शिरकत की। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाईकोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा हो या ओ लेवल CCC लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीजीएल 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के कुल 4500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026

26 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.centralbank.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडाबेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रवति परिदा जी, ओडिशा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथयात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है।

0: मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है।

0: हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं।

0: सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण,
2: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जब जब फूल खिले फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

गीता दत्त की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। आप इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में गीत आप मधुमति फिल्म से सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।
4: मैं

मेरे महबूब इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, आंखें फिल्म से हमने से लिया है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने से लिखा।

0: कैसे कभी कभी।
1: फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू ने। साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना ने। और उल्लास, माफ कीजिए, अहिल्यानगर केड़गांव से भाऊ साहब नवथर, अक्षय, चंदन, जय कुमार और रुचिता ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से। संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने। उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने। जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभू दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से, अनजान ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियाद हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर ने इस गीत को सुनना चाहा था। गंगानगर बीकानेर से कैलाश सैनी, गोविंदा और उत्तम सोनी।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

0: कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है। इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं और मैं यहां झूठ मूठ चली ही जाऊं अब।
1: जिनी।
0: हाँ
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश। हाँ? आहिस्ता इधर इस तरफ।
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी, हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
2: उस तरफ, उधर, जाओ आगे।
1: जिनी, तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
2: जुड़ू, भाई बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
3: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी?
2: नहीं, फिलिप्स गलत इंफॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। This disgraceful on our part.
3: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
2: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
3: बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
4: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
2: लुक छिप कर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ
0: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
2: ठहरो।
0: हाँ?
2: कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
0: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
2: सांझ से? बस जी थोड़ी देर से, और अब इस सांझ ठेले तक?
0: जी मैं घर जा रही हूँ।
3: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
0: मीटिंग नहीं तो नहीं देखी।
2: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात और क्या।
0: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूं?
2: हाँ हाँ, जाओगी?
0: जी।
2: जाओगी क्यों नहीं। अच्छा क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
0: जी हाँ।
2: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइज की कविताएं पढ़ती हो?
0: हाँ।

0: पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
1: उसे जानती भी हो?
0: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे?
2: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कवि नहीं है शायद।
0: अच्छा, तो अब मैं चलूं?
1: हाँ जाओ जाओ।
2: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मॉलेस क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
1: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं, नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।
2: ओह,

हाँ, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है। सही शब्द नहीं।

0: हाँ, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ माँ, माँ
1: क्यों रे बेंच, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना,
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच से प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या ऊटपटांग बके जा रहा है।
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूं मां, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ।
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास, कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास, इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है। हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: ओ राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ, तुम कवि बेंजामिन मालवेस की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे छोड़ भी, पागल कहीं
2: का।
0: जीनी
1: आ बेटी, अंदर आ जा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से हैं। वो परीक्षा नजदीक आ पहुंची है, तभी बेंच से इकोनॉमिक्स के चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
1: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
2: जी अच्छा।
0: जीनी कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है?
2: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
0: अच्छा होगी कोई।
2: हाँ?
0: पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। खैर इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश, क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में, यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला, रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है।

0: प्यास जीवन की।
1: वाह वाह, क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट एंड इन टाइम यू विल बी अ ग्रेट पोएट बेंच।
0: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
1: हाँ
0: हाँ, हकीकत यही है। खैर, अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
1: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
0: अरे, पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
1: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
0: नहीं,
1: कुछ भी नहीं समझते?
0: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
1: सारी बातें मुंह से कहीं नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ? क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं? क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
0: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है जिनी।
1: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
0: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
1: बेंच,
0: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना। मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जिनी।
1: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूं।
0: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जिनी।
1: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
0: जिनी हाथ छोड़ो, शायद मां आ रही है।
1: अच्छा, तो मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
2: लिखाई पढ़ाई हो गई?
1: अब हाँ हाँ हाँ मौसी, हो गई।
2: अरे, थोड़ी चाय तो पी कर जा।
1: नहीं, आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
2: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर बहुत ही भला लड़का है। जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव
1: विल यू स्टॉप टू डू।
0: यस सर यस मिस्टर थॉमसन मैं तो
1: कुछ नहीं जानते। तुम उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और उन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी गलत है। बेंजामिन मोलाइस भला लड़का है उन ब्लैक स्वाइनों के लिए हमारे लिए नहीं। इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप सिलेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा इनकी इतनी हिम्मत? तब तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो। काले कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
0: ओके सर।
1: मेरा नाम थॉमसन है। स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता। हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों? सारा कुछ जलाकर राख कर डालूंगा। कमान चढ़ो।
0: यस सर।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बापू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूं बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
1: बेंस अंदर आ जाओ ना।
3: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
4: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंज?
3: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
5: अच्छा अच्छा, बैठिए आप लोग, बैठिए।
1: बाबू जी, बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
5: अरे इसे भला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
3: नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, भला मुझमें इतनी ताकत कहाँ?
6: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
3: देखिए, अब इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
5: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
5: अच्छा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी
0: जिन्नी, आओ बेटी, आओ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
1: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
1: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
1: न जाने वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की, बेंच कहाँ है, कैसा है?
1: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
1: अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंच वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
1: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग, गुप्त समिति?
1: हाँ।
0: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
1: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?
0: तुम ठीक कहती हो बेटी, मेरा बेंच जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी ही रहेगा। हाँ।

0: सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूं इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
1: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापड़कर का सुझाव एकदम सही है,
2: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
3: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
0: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
3: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उइसिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
2: कौन कौन कौन हो सकता है? कौन है? कौन कौन है? अरे ये तो जोन्सबर्ग के नेता मिस्टर रोयंगा की आवाज है। जेम्स जल्दी से दरवाजा खोलो।
4: अरे कैसे हुआ ऐसा?
2: क्या बात है?
4: क्या हुआ? उसका खून
2: खून ये क्या? किसने ऐसा किया?
5: पुलिस ने
2: ईश्वर,
5: यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया, चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दलबल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
4: ओह, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
5: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं ऊंची दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
4: ठहरिए, पहले मैं ये बैंडेज बांध दूं।
2: बांधो। देखो, जैसे भी हो रोयंगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना होगा।
0: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
5: जरूर चल सकूंगा।
2: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाईं ओर नहर के रास्ते से चले जाइए। देखो, ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, अब हमें क्या करना चाहिए?
4: बाबू, दरवाजा जरा देर से खोलना।
6: अच्छा, आता हूं।
7: हैंड्स अप!
2: आप लोग
7: जुड़ो, अंदर देखो जल्दी, क्विक, कहां है ये सब?
8: तो आप ही जोसेफ पिस्ते हैं?
6: जी हाँ सर।
8: ये कौन है? सर, वो लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी, जेम्स पिस्से।
9: टॉयलेट का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
6: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
8: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छोकरा आया था कहां गया?
6: यहां तो कोई भी नहीं आया सर।
8: शट अप! झूठा कहीं का। किधर है वो शैतान?
9: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
2: मैं सच कह रहा हूं सर, यहां कोई नहीं है।
8: मैं भी तो सच ही जानना चाहता हूं। तुम्हारे दोस्त के खून के दागों ने हमें ठीक जगह पर पहुंचा दिया।
9: मिल गया सर।
8: क्या मिल गया?
9: जख्म पर पट्टी नहीं बांधी गई है, ये रही खून में सनी हुई, तभी खून के दाग और पीछे की ओर दिखाई नहीं पड़ रहे।
8: यू आर राइट
9: सर। इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से कम 5 जने थे। अभी कुछ एक मिनट पहले उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां ली हैं। ये देखिए, चाय के 7 कप पड़े जो अभी भी ठंडे नहीं हो पाए हैं।
8: तो मिस्टर जोसेफ पिस्से, अब जरा बताइए तो सही, आपने अपने उस मेहमान का कहाँ चालान कर दिया? समझ तो रहे हैं, हम सब कुछ जान चुके हैं।
6: नहीं नहीं, मतलब हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी उधर।
4: हम लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते सर।
8: मैंने तुमसे नहीं पूछा है। हाँ, तो आप कहिए।
6: हाथ में बंदूक लिए एक अनजान आदमी अचानक घुसाया सर, उसने हमें डराकर जख्म पर पट्टी बांधने को मजबूर कर दिया।
8: फिर झूठी कहानी करने लगा।
4: सर, ये आप क्या कर रहे हैं? एक बूढ़े आदमी को आप लोग क्या हैं?
8: यू रास्कल!
6: सर, जेम्स मेरी एकमात्र संतान है।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा ये निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी

0: क्या जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं?
1: बाबू बाबू, तुम्हारे मुंह से राज की कोई बात निकलने पर भी ये हमें छोड़ेंगे नहीं।
0: इसका ब्लैकी बिल्कुल खत्म कर डालूंगा।
2: ओप चुड़ो, उसे मेरे पास दो। मिस्टर पेट्से, एक से दस गिनने के बीच जो कुछ भी जानते हैं फौरन बता दीजिए, वरना मेरी छोटी सी नली का गरम सीसा जेम्स की खोपड़ी को छेदकर पार हो जाएगा। और
1: बाबू बाबू, एक जेम्स के मरने से हजारों हजार जेम्स पैदा होंगे, पर मैं विश्वासघातक का बेटा होकर जीना नहीं चाहूंगा बाबू, कभी नहीं, कभी नहीं।
2: सोच लीजिए, तो फिर आप अपने खानदान के आखिरी चिराग की मौत की वजह खुद ही बन रहे हैं।
1: ये नहीं।
2: वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
1: नहीं नहीं रुकिए साहब, रुकिए बाबू, नहीं बाबू,
2: सेवन एट नाइन,
0: ठहरिए, हैंड्स अप।
3: सॉरी बेंजामिन,
2: दैट ग्रेट पोएट, आई सी,
0: बिल्कुल नहीं ना, वरना गोली मार दूंगा।
4: बस रहने दीजिए, ज्यादा बहादुरी ना दिखाइए। टेनरी में कच्ची चमड़ी बदन पर लपेट कर पड़ा था और देख रहा था इन दो बेगुनाह इंसानों पर की जाने वाली आप लोगों की ज्यादती की उछल कूद। खैर छोड़ दीजिए इन लोगों को, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं मैं बता रहा हूं आपको।
2: जरूर जरूर, आप ही तो बताएंगे, पर हां सीधे साधे शब्दों में कहिएगा, कविता में नहीं। हमें ये सब पसंद नहीं है। अब आपको हमारे साथ सरकारी मेहमान होकर जाना होगा। जुड़ू,
3: यस सर।
2: जरा अच्छी तरह से सावधानी के साथ लेकर जाना, इज डेंजरस।
3: यस सर।

0: मृत्युहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जेम्स लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आइए सुनते हैं इस गपशप का तीसरा भाग।
1: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
2: होया था नस नस में अब ये जग गया, ए, लहू मुलग गया।
1: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर दौड़

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हैं, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: शुक्रिया अमरकान जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अब टेरेस हम वापस आते हैं उस डायस पर, आपके टीवी का जो डायस वहां हाँ। पे आप जो जब बैठा हुआ देखते हैं हाँ। और जब वहां पे आपको बड़ी शुद्ध हिंदी में बात करते हुए देखते हैं हाँ। तो हमें लगता है कि यार भाई क्या है बात है, टेरेंस ने शायद हिंदी के लिए कुछ अलग से कोचिंग वोचिंग ली है शायद। तो ये हिंदी पे कुछ खास मेहनत की आपने और उसकी वजह?
0: आप चाहे उसे मजाक में ले लीजिए या जब बहुत पैसे मिलते हैं बोलने के लिए तो आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठ के कुछ भी नहीं बोल सकते। और मुझे पता है कि अगर मुझे यही मौका मिला अंग्रेजी में बोलने का, अगर मैं उसका विश्लेषण करूं, डांस का विश्लेषण करूं, तो मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं अंग्रेजी में, क्योंकि मैं अंग्रेजी में पला पड़ा हूं, मेरा एजुकेशन वैसा रहा है। तो जब मैं अपने क्लास में, जब मैं एज अ टीचर, मैं बहुत बारीकी में जाके देखता हूं और मैं नो बच्चों को बहुत डाइसेक्ट करता हूं, तब मेरी जबान फट फट फट फट करके चलती है और मैं बताऊँ कि ये सही नहीं, ये सही है, ये सही है, ये नहीं है, अब ये करना है, ये यहाँ पे सुधार लेके आना है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो

0: मैं अटक जाता हूं कि इसका शब्द क्या है, और मैंने लगा कि यार जो मैं बोलना चाहता हूं मैं बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। और मुझे ये नहीं बोलना है कि मुझे आपका डांस अच्छा लगा, ये कौन कहता है? तुम जज हो भाई, तुम्हें इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, तुम्हें इसकी टेक्निकल चीजें बतानी पड़ेगी, और वो टेक्निकल चीजें मैं अंग्रेजी में जानता हूं। तो फिर मैंने अपनी हिंदी को सुधारा, मैंने बोला कि ये देखते हैं कि क्या है इसका शब्द, अगर मैं ये अंग्रेजी में बोलता, इसको मैं अनुवाद करता हिंदी में, तो इसका अर्थ क्या निकलता। तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा हो, ये मैं बोलना चाहता हूं अंग्रेजी में, तो फिर मैं इसको ट्रांसलेट करता था अपनी, लिखता था, समझता था, क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चा जो हमारा डांस कर रहा है वो इतनी मेहनत कर रहा है और वो अपनी जान लगा रहा है। तुम ऐसे ही बोल नहीं सकते कि मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, ये अच्छा था, वो नहीं। आपको बताना पड़ेगा ऑडियंस को कि क्या क्या बारीकियां थी ताकि लोग उसको एक अलग नजर से देखें,
1: उस बच्चे को।
0: हाँ, तभी जाके हमारे बच्चों को वो रिस्पेक्ट मिलेगी।
1: जी बिल्कुल सही।
0: हम जज नहीं है, हम मेंटर है। मैंने कभी अपने आप को जज नहीं समझा, मैंने कभी समझा कि मैं मेंटर हूं, मेरा काम है आपको ये बताना कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और जो नहीं अच्छा कर रहे हो कैसे इसको सुधार सकते हो।
1: बिल्कुल सही।
0: उसका उपाय भी देना आपका फर्ज बनता है, अदरवाइज क्या अच्छा बुरा है, क्या गलती निकालना है, तो वो नॉर्मल ऑडियंस भी देख सकती है और बोल सकती है यहाँ पे इसने गलती कर दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो विश्लेषण आपको करना है एक गाने के बारे में या इसके डांस के बारे में या इसकी टेक्निक या उसकी विधि क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे शब्द, अगर मैं कहूँ कि आपके डांस में आप बहुत क्विक हो, ये क्विक क्या है अंग्रेजी में गलत है, वर्ड इज एजाइल। अभी एजाइल को क्या बोलूं? तो बोला कि एजाइल का वर्ड क्या है? चपलता। तो बोला कि आप बहुत चपल हो। तो वैसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है, अब हमारा जो माध्यम है हिंदी माध्यम है, हमारा जो ऑडियंस है, हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी सिटी वाली ऑडियंस नहीं होती। मुंबई दिल्ली वाले देखते नहीं हमारे शो, जो हमारी शो देखते हैं वो बी टाउन या सी टाउन सिटीज से होती है, छोटे शहरों से। वहां पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेच, अगर मैं ये बोलूंगा तो कभी कभी समझ में नहीं आएगा, तो बात निकल जाती है, तो उसकी जो अहमियत है वो निकल जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? लचीलापन। तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल करना लगा, और फिर मैंने बोला कि अच्छा ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन हमारे मेंटोरशिप में हमें अगर हमारे बच्चों को ऑडियंस पर लगाव लेके आना, तो टेक्निकल चीजें से नहीं होती हैं, उनके निजी जीवन में जो चल रहा है और कैसे उनकी परिस्थिति से वो जूझ कर निकल कर उभर कर आ रहे हैं, वो वाली चीज अगर मैं अपने ऑडियंस के सामने रखता हूं तब जाके ये शो बनेगा, लोगों में इंटरेस्ट आएगा, सिर्फ टेक्निकल चीजों से नहीं। तो मैंने अपनी हिंदी सुधारी ताकि मैं बच्चों के बारे में बोल सकूं अच्छा, ताकि वो लोगों तक पहुंचे, उनका काम लोगों तक पहुंचे। मेरी जिम्मेदारी है इज नॉट टू जज, मेरी जिम्मेदारी है कि जो काम बच्चों ने किया है वो लोगों तक सही मायने में पहुंचाए, और जो नहीं दिखता, क्योंकि डांस ना बड़े बड़े चीजें दिखती हैं, करतब दिखती हैं, लेकिन डांस में कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत सटल होती है, और वो सटल चीजें लोगों को दिखती नहीं है जब तक आप उनको बताओ कि नहीं, आप थोड़ा रिवाइंड करके देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने एक हल्का सा एक अपने अपने एक शरीर के अंग से यहां से खेला है, उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरती है। तो जब मैं बोलता हूं तो लोगों को भी लगता हाँ ये सही बात है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये सब कहना और वो बयां करना ताकि लोगों को और इंटरेस्ट आए। अगर आप अच्छा बोलते हो तो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, तो ये मेरे बच्चों के फायदे में रहता है एंड मेरे शो के इंटरेस्ट में रहता है।
1: अब टेरेंस, यहाँ पे कुछ इतनी टेक्निकल बातें आपने बताई, इतनी कुछ कठिन गाने,
0: हाँ,
1: जो आपको डांस के माध्यम से लगता है कि गाने बड़े कठिन है, यानी कि डांस इसका जो है बड़े कठिन रहे हैं, वो कौन कौन से गाने आपके शोज में रहे हैं?
0: लेकिन एक गाना है संजय लीला भंसाली, ये सभी जो गाने होते हैं ना वो कठिन होते हैं, बिकॉज एक बेंचमार्क कितना सेट किया ना
1: उनकी एक फिल्म आपने की हुई है,
0: हाँ, रामलीला। तो उनके गाने मुझे बहुत कठिन लगते हैं, जैसे जो ऐश्वर्या जी का हम दिल दे चुके सनम में ओपनिंग सॉन्ग है,
1: अच्छा
0: मनमोहिनी,
1: अच्छा मनमोहिनी,
0: उसके जो अल्फाज चल रहे ना इतने फास्ट है, उनको मैच करना डांस में लाइव स्टेज में, फिल्मों में क्या है कट कट करके कर सकते हो आप, हर एक शब्द को लेके फिल्म कर सकते हो, लेकिन स्टेज पर कैसे हर एक शब्द को वो, और वो इतने फटाफट बोल रहे हैं, और वो लड़की का मतलब एक औरत क्या होती है, एक लड़की क्या होती है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हीरोइन का डिस्क्रिप्शन है, पहला शॉट है। सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू कोरियोग्राफ ऑन स्टेज।
2: Hey!

मोहिनी तेरी अदा तुझे जब देख ले तो फिर गदा भर से झर झर झर झर झर झर झर झर नाच चमक चमक वो बिजली दीवानी है बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई तुझ में है कुदरत सारी खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई We'll be right back.

0: वो गाना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, लाइक ब्रेथलेस ऑल्सो भी जो गाना है वो बहुत डिफिकल्ट है. और कभी कभी जो ऐसे गाने होते हैं जिनके यू नो म्यूजिक बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वो बहुत वेरिएशंस होते हैं.
1: मसलन
0: जैसे इन्हीं लोगों ने तो मैं चाह रहा था कि इन्हीं लोगों में मैं कथक ना करूं, मैं सोचा कि ये गाने पे मैं जैज करूंगा विदेशी स्टाइल, तो बॉब फॉसी वाला स्टाइल. तो मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि हमारा चैलेंज था कि एक पुराने गाने को लेकर आप नए अंदाज में इसको पेश करोगे, फिरंगी अंदाज में पेश करोगे उसको. तो अभी इन्हीं लोगों ने वो गाना सेट है सब लोगों के दिमाग में, किस तरीके से वो किया गया है उसको अभी जैज बॉब फॉसी हैट टेल कोट वैसा वाला चमकीला वाला कॉस्ट्यूम पहना के वो कराना है. तो जो इसके बीट थे ठक ठक ठक ठक, हर एक बीट होता है तो वो पकड़ना पड़ता है. तबला है उसके अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं पकड़े तो फिर वो आपकी कमजोरी है कि आपको समझ नहीं है एज अ कोरियोग्राफर कि वो आपने छोड़ दिया. आप सब कुछ नहीं पकड़ सकते हैं हर बीट को, लेकिन कुछ चीजें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और अगर आपने नजरअंदाज कर दिया वो एक प्रोमिनेंट बीट को तो ये आपकी कोरियोग्राफिक गलती है. तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप ऐसे गाने को लेते हो जहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही कमाल का हो, एंड देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल.

0: जो आपने बात की कि संजय लीला बंसाली की फिल्म का ये गाना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट था,
1: हाँ।
0: लेकिन फिर आपने संजय लीला बंसाली जैसे डिफिकल्ट म्यूजिक डायरेक्टर की फिल्म भी की है, वो एक्सपीरियंस हाँ। आपका कैसा रहा? मैं रामलीला की बात कर रहा हूँ।
1: देखिए मेरा उसमें, मैं सही में कह रहा हूँ कि जब आप दूसरों का पता नहीं लेकिन मैं खुद का जरूर कहूंगा कि जब आप संजय लीला बंसाली सर के साथ काम कर रहे हैं, यू हैव टू रियलाइज कि वो एक कमाल के टेक्नीशियन है और वो खुद एक कोरियोग्राफर है। उनको डांस की जो समझ है ना वो हमसे भी ज्यादा है, सो यू लर्न मोर फ्रॉम हिम। वो बोलेंगे कि आपने ये छोड़ दिया, ये तो है, ही इज दैट गुड, सो दैट इज वन। दूसरी बात ये कि ही इज नॉट जस्ट टेक्निकल, उनका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ और ही लेवल का है। थर्ड लेवल, वो एक ऐसे डायरेक्टर है जो यू कैन प्लीज हिम वेरी इजीली, और उनका बहुत क्लियर विजन है। अगर किसी का विजन क्लियर है तो उनका है। मोस्टली जब गाने शूट होते हैं तो डायरेक्टर रिलैक्स करता है, ले लो कोरियोग्राफर काम करो तुम लोग, और हम 5-6 दिन के लिए लगातार काम करते हैं। डायरेक्टर को खोली बोलते हैं कि आपको ये अच्छा लगा सेट, ये शॉट अच्छा लगा। वो तो कभी कभी कोरियोग्राफी भी दिखते नहीं है, उनको उनको पता है, वो ट्रस्ट भेज जाता है कि हाँ कमाल का ही काम करेंगे। लेकिन संजय लीला बंसाली जी नहीं, उनको हर एक शॉट का डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन चाहिए, फिर वो उस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, फिर वो सुझाव देंगे, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। जो डिस्कशन होती है बिफोर वी इवन टीच द आर्टिस्ट वो 5 दिन की होती है, सो इट इज सो डिटेल्ड। मैं बताऊं रामलीला के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं गया था सेट पे शूट करने के लिए तब कॉस्ट्यूम ब्लैक वाला था, ब्लैक एंड रेड। हमने 2 दिन शूट कर दिया, फिर 2 बजे रात को संजय सर का मैसेज आया, आर यू अवेक? तो मैंने पढ़ लिया, सर हाँ सर मैं, सर ओके कॉल मी। सो मैंने कॉल किया, सर देखिए मुझे गाना मजा नहीं आ रहा। ऐसे तो मुझे डर गया कि मेरा काम पसंद नहीं, कुछ चेंज करें सर। नहीं नहीं तुम्हारा काम ठीक है, मुझे कॉस्ट्यूम में मजा नहीं आ रहा, दीपिका वो नहीं लग रही है जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरा विजन था वो नहीं आ रहा, तो हम फिर से शूट करेंगे कल। ऐसे कॉस्ट्यूम रातों रात हो जाएगा, मैं आपको अभी भेजता हूँ, आप बोलो एज अ कोरियोग्राफर क्या ये कॉस्ट्यूम ज़्यादा बेटर लगेगा। तो रातों रात दीपिका की जो कॉस्ट्यूम है वो हम लोग शॉट पे, उसने व्हाइट कपड़ा चढ़ाया है उसी ब्लाउज पर, काले ब्लाउज पर, और उसने मुझे फोटोग्राफ भेजा कि डू यू थिंक व्हाइट विल लुक बेटर, एंड फॉर मी व्हाइट इज माई फेवरेट कलर। आई सेड सर दिस विल लुक फिनोमिनल, बिकॉज ब्लैक में वो थोड़ा यू नो इट इज लुकिंग लाइक इट वॉज लाइक अ वेरी राजस्थानी कालबेलिया काइंड ऑफ अ कॉस्ट्यूम, बट ये व्हाइट में एक अलग ही एक यू नो एक
0: क्रेज
1: है। एंड प्लस सी वो ही थिंग्स मेटाफोरिकली, अच्छा ये सॉन्ग अंग लगा दे इस सुहागरात वाला सॉन्ग, वो अभी भी शादी करके आए हैं, दोनों के परिवार ने दोनों के भाइयों को मार डाला है, दोनों

0: शोक मना रहे हैं। और इस माहौल में
1: इस माहौल में
0: दीपिका को
1: दीपिका
0: यू
1: को
0: नो रणवीर को रिझाना है और उसको बोलना है कि सब भूल जाओ और हम लोग अपनी दुनिया बनाते हैं। सो इट्स ऑल्सो द सुहागरात वाला सीन, एंड येट इट हैज बी डन वेरी टेस्टफुली। फॉर हिम इट वॉज लाइक नॉट ब्लैक, ब्लैक इज ऑलरेडी फर्स्ट
1: वैसे
0: टाइम
1: भी
0: एक
1: ब्लैक
0: लड़की,
1: जो है, हाँ
0: हाँ, सो व्हाइट, इट शुड बी व्हाइट, उनके दिमाग में वो चलने लगा कि विजुअल। सो ही थिंक्स उनके हर सीन में ना एक कलर स्कीम होता है। तो वी शॉट द सॉन्ग ऑल ओवर अगेन, 2 डेज वापस शूट किया हम लोग ने। तो एक अलग ही लेवल का एक यू नो कमिटमेंट है और डिटेलिंग होता है। और एक इंसान सामने से इतना इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो हमें भी बहुत रुचि होती है कि यार कुछ अच्छा ही बन रहा
1: जाहिर
0: है।
1: है जहां आपकी काम की सराहना भी हो रही है
0: हाँ,
1: और आपको समझ में आ रहा है कि अगला बंदा भी आपके साथ उतना ही डूब
0: झुक
1: चुका
0: चुका
1: है,
0: है, तो मजा आता है
1: तो
0: काम
1: मजा
0: करने का।
1: आता है।
0: और हम भूल जाते हैं कि अभी टाइम हो चुका है, कैसे वक्त निकलता है पता नहीं चलता हमें, मुझे पता ही नहीं चला कब।

0: सेकंड में एक और मजे की बात करूंगा, यू नो एक चलने का शॉट है, वो लेके धूप लगाती है ओके तन्वी के सर पे, और फिर उसको चल के वापस आना है और बिस्तर पे लेटना है। तो मैंने दिखाया था कि ऐसे जाके ऐसे बैठना है, तो दीपिका ने समझ लिया, लेकिन उनका जो घाघरा था वो सही रूप में बिस्तर पर नहीं आ रहा था। अब हम दीपिका के चेहरे और एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मैंने वहां पे फोकस ही नहीं की कि घाघरा किस तरीके से यू नो बिस्तर पर फैलेगा। उन्होंने एटलीस्ट 10 कट लिए, क्योंकि दीपिका ने सभी एक्सप्रेशन लिया लेकिन वो घाघरा बराबर नहीं आया बेड पे। He's that detailed. फिर वो दूसरा शॉट जो धुनुची है उससे जो धुआं निकलता है वो सीजी में नहीं किया है, वो एक्चुअली धुआं निकला है। तो there was a assistant only for the धुनुची कि तुम्हें धुनुची, और वो सबसे घबरा हुआ इंसान था क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि धुनुची अगर वो नहीं है और उसका जो धुआं नहीं निकला तो उसको मार पड़ती थी तो वो सबसे डरा हुआ इंसान हमारे सेट पे वही वाला था कि अगर वो धुआं नहीं निकला धुनुची से, क्योंकि वो शॉट था कि वो अपने बालों वो धुनुची को अंदर रखती है, वो धूप अपने फेस पे लेती है और वो गा रही है और वो फेस से फिर वो अपना बालों को यू नो सरकाती है और वहीं से बालों से निकलता हुआ उसको वो धुआं चाहिए था। तो वो शॉट वो भी वो इस तरीके से ताकि वो जले नहीं, और वो कोयला है और मेकअप
1: भी नहीं से चिंगारी निकल जाए
0: मेकअप क्रैक भी नहीं होना चाहिए। इट वाज सच अ ट्रिकी शॉट। तो बहुत मुझे वो चाहिए, मुझे वो सीजी करवाना नहीं है, मैं लेके रहूंगा और वो लेके

0: देखिए कितनी बारीक बातें आपने बताई हैं, और हालांकि कोरियोग्राफी सुनने की चीज नहीं, देखने की चीज है, लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं, हमारे जितने श्रोता हैं वो शायद इसे देख पा रहे होंगे। बहरहाल अब हम एक खास सवाल आपसे करेंगे। शुरुआत में जब आपसे बातचीत शुरू हुई तो आपने कहा कि, जैसे मैंने कहा था कि अभी बहुत से कई आसमान आपको छूने हैं,
1: हाँ।
0: आपने भी कहा कई मकाम हैं,
1: हाँ।
0: क्या क्या सोच रखा है आपने?
1: खाना हाथ में और खाना हलक में बहुत फर्क है, तो मैं सोचता हूँ कि कभी किसी को बताऊं मत, क्योंकि फिर आप पे बहुत प्रेशर हो जाता है कि मैंने सबको बताया अभी तो करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वो सहज रूप में हो जाए, जब हो जाएगा तो हम उसको सामने रख देंगे। अब कोई प्रेशर नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए कि इसने ऐसा बोला था अब क्या हुआ, वो दबाव में नहीं आकर करना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने जो अरमा है वो अपने पास ही रखता हूँ, मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी अरमा है। मैं चाहता हूँ कि अपने आप पर, अपने काम पर, अपने आप पर भी, अपने व्यक्तित्व पर भी काम करूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत, मेरा पूरा एक लिस्ट है फ़ोन पे कि इस पर, ये साल 2020 में मेरा कोई लिस्ट, मेरा एक बड़ा लिस्ट था। 2021 में मैंने ऑलरेडी मेरा एक लिस्ट बनाया कि किस किस पर मुझे काम करना है, मेरे निजी लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे सोशल लाइफ में, किस तरीके से मुझे काम करना है, कैसे मैं अपने आप को उठकर लेके आना हूँ, बहुत सारे चीज़ें हैं।
0: दो सवाल और हैं।
1: हाँ,
0: एक तो बहुत ही ईजी है,
1: हाँ,
0: दूसरा बड़ा कठिन है। ईजी सवाल यह है कि एक्टिंग वेक्टिंग करने का इरादा है आपका?
1: हाँ। हाँ, लेकिन वो हीरो वाला नहीं है।
0: नहीं, अब तो खैर आपको कैरेक्टर रोल ही करने
1: पड़ेंगे। मुझे कैरेक्टर रोल ही पसंद है, और मुझे इंटेंस और जो मीनिंगफुल कैरेक्टर्स हैं, जब मैं पंकज त्रिपाठी को देखता हूँ, नवाजुद्दीन को देखता हूँ, या ऐसे कई किरदार हैं जो वो प्ले करते हैं जो हीरो के नहीं है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना बहुत ही सटल परफॉर्मेंस देते हैं, और वो दिल चुरा लेते हैं मेन वन। मुझे ज्यादा पसंद है कि मैं सामने ना रहूं लेकिन साइड में रहकर भी मैं किसी का दिल जीत लूं, वो ज्यादा मुझे पावरफुल लगता है। तो आई फील इट्स नाइस, आई मीन अगर मेन कैरेक्टर मिल जाए तो ग्रेट, नॉट एस्पेशली इफ इट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे ना, मैं भी थोड़ा चूजी हूँ, क्योंकि मुझे अब मेरी फिल्में जो मैं कर रहा हूँ, या मैं एक्टिंग की जो मुझे जो मैं अपने अरमान पूरा करना चाहता हूँ, इट्स नॉट बिकॉज मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, नहीं, मैं फ्री में भी करने के लिए तैयार हूँ, अगर रोल इतना अच्छा हो या जो मेरे दिल के करीब हो। और रोल ऐसा क्यों अच्छा लगेगा मुझे, अगर वो ब्लैक एंड वाइट ना हो। मुझे ब्लैक एंड वाइट रोल्स मुझे बहुत ही बकवास लगते हैं, मुझे ग्रे कैरेक्टर के रोल्स बहुत पसंद है। एक इंसान या एक कैरेक्टर में वो सब अच्छा नहीं हो सकता, उसमें शेड्स होने चाहिए, ग्रे होना चाहिए। वो ग्रे एरिया जो है वो हम दिखाते ही नहीं है। हम पिक्चर को बहुत ही, मोस्ट ऑफ टाइम्स आजकल दौर में एटलीस्ट फिल्में अच्छी बन रही हैं, बट मुझे वो हीरो विलन बहुत बोरिंग लगता है। अगर ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जहाँ पे एक इंसान है लेकिन तुम्हें पसंद भी है, लेकिन उसमें कोई दो तीन तीन चीजें उसकी खोट भी है, बिकॉज दैट इज नेचुरल, एवरीवन इज लाइक दिस,
0: खोट तो होती है।
1: एग्जैक्टली, तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है ना, जो जनरली फिल्म मेकर्स मेक की एक हीरो अच्छा है और ये विलन है, मुझे बहुत ही बकवास लगती है। आई डोंट लाइक दोज रोल्स, बिकॉज देयर इज नो चैलेंज एंड देयर इज नोबडी लाइक दैट, इट्स अनरियल, इट्स अ फेरी टेल। तो अगर रियलिस्टिक, अगर ऐसे फिल्में बनती हैं एंड रियलिस्टिक रोल्स, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं आज की तारीख में, जैसे अनुराग बासु या अनुराग कश्यप जी जो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, जोया अख्तर ने बहुत

0: अच्छी यू नो एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो मुझे बहुत पसंद आई। बहुत सारे अच्छे मीनिंगफुल डायरेक्टर्स हैं, जैसे मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं असगर फरीदी जो ईरान के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक फिल्म सेपरेशन और एक सेल्समैन बनाई है। अगर उनकी पिक्चर जब मैं देखता हूँ तो मैं मतलब बोलता हूँ कि ये क्या एक्टिंग है भाई, इतनी नेचुरल, इतने सहज रूप में, लगता ही नहीं कि इनको पता भी है कि कैमरा लगा था। वो वाला एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो सटल रूप में कि आप इतने इतने इतने खो जाओ वो सीन में कि जो दूसरा सामने वाला जो देख रहा है इसको पता भी नहीं कि कैमरा चल रहा है, ये तो ऐसे ही निकल गया। वो वाली फीलिंग आनी चाहिए, इट शुड नॉट फील कि अच्छा ये एक्ट कर रहा है, तो वो एक अलग लेवल का।
1: अब एक बड़ा कठिन सा सवाल है।
0: हाँ,
1: सवाल ये ऐसा है कि जो जो मैं पूछना चाहता हूँ उसमें जो आदमी एक्टिंग नहीं भी करता उसको भी एक्टिंग करनी पड़ जाती है फिर इस मोमेंट के बाद।
0: अच्छा।
1: और वो है कि शादी के बारे में।
0: देखिए मेरी जो विचारधारा है वो बहुत ही अलग है। मैंने कहा है कि मेरे लाइफ में, हमारे फैमिली में सभी मेरे सातों भाई बहन ने शादी कर ली, उनके बच्चे हैं।

0: मैं पूछना चाहता हूँ, उसमें जो आदमी एक्टिंग नहीं भी करता उसको भी एक्टिंग करनी पड़ जाती है फिर इस मोमेंट के बाद।
1: अच्छा।
0: और वो है कि शादी के बारे में।
1: देखिए मेरी जो विचारधारा है वो बहुत ही अलग है। मैंने कहा है कि मेरे लाइफ में, हमारे फैमिली में सभी मेरे सातों भाई बहन ने शादी कर ली, उनके बच्चे हैं, लेकिन मेरी माँ को अगर एक एक तो चाहिए ना जो संतान जो एकदम अलग करे, तो वो मैं हूँ। और आई कॉल माय सेल्फ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, क्योंकि मेरी जो विचारधारा है कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ जल्दी किसी के साथ के, किसी इंसान के साथ भी और किसी चीज के साथ भी। मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को यू नो इवॉल्व करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, यू नो ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, और मैं किसी एक के साथ नहीं जुड़ा रख सकता। सो आई नो कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ। तो अगर ऐसा इंसान हो तो फिर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे का जीवन नष्ट कर सकता है। मैं रिलेशनशिप में रहा हूँ और मैंने देखा है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं ये पहले क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि मैं फिगर ही नहीं करता। मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अपनी मंजिलें पर ज़्यादा अमल करना चाहता हूँ, और मुझे इट्स नॉट कि मुझे कोई किसी का साथ चाहिए। मैं अपने आप खुद, मैंने पूरी लाइफ खुद ब खुद जी है, की है, तो मुझे कोई लगता नहीं कि मुझे किसी की यू नो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इमोशनली मैंने अपने आप को संभाला है बचपन से।

किसी को भी आप अपना मानते हो, और मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, बच्चों जो मेरे साथ सीखते हैं उनको मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, चीज़ें जो मैंने सीखा है, समझा है, दे दिया है उनको। जो मेरी विरासत है वो वैसे भी मेरी नहीं है, मुझे सौगात में मिली थी, मुझे आशीर्वाद के रूप में मिला था, तो मैं अपने पास नहीं रख सकता उसको। मेरा फर्ज है कि मैं जो मुझे मिला है, जिसकी वजह से मुझे धन संपत्ति और शौहरत मिली है, मैं उसको बांटूं, क्योंकि ये करेंसी है, ये चलनी चाहिए, ये लक्ष्मी है, ये दुर्गा है, ये सरस्वती है, ये एक के पास नहीं देनी चाहिए, ये जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना आते जाएगा, इट्स अ कंटिन्यूस फ्लो। तो मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, और बहुत लोग जैसे शक्ति हो, पुनीत हो, बड़े बड़े ये तो फिर भी जाने माने लोग हैं जो पर्दों में दिखाई देते हैं, बट बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, जिन्होंने मुझसे सीखा है और जो आगे लेके जा रहे हैं, और अगर वो उसकी उसकी बात कर रहे हैं तो उसकी कोई कमी नहीं है। मैं किसी को भी अपना मना सकता हूं और उसको बता सकता हूं, अगर उसको इंटरेस्ट है या उसको सीखना है, मैं अपने पास रखना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं तो, हम क्या है, हम तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा काम है, या जो हमने दिया है, जो हमने समझा है, वही हमें बांटना है। हमें खुशबू की तरह आए हैं और खुशबू की तरह चले जाएंगे।

0: अब एक और बात है
1: हाँ,
0: कि आपने अब ये तो तय कर लिया, बता दिया कि हाँ, ये नहीं करना है,
1: नहीं करना है,
0: लेकिन आपके अंदर जो कला है,
1: हाँ
0: देखिए कला बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे आपकी अलमारी में रखा हुआ आपका धन,
1: करेक्ट,
0: जिस तरह से अलमारी में रखा हुआ धन बाप अपने बेटे को दे के जाता है, उसी
1: हाँ,
0: तरह से अपने अंदर की कला विरासत में अपने बच्चों को दे के जाता है,
1: हाँ,
0: तो आप अपनी विरासत किसको देंगे?
1: एक एक जो आप कह रहे हैं, लोग लोग बहुत कहते हैं हाँ ये जो आपके गुण हैं वो आ जाएंगे, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे बाप में क्या डांस का गुण था जो मेरे में आ गया? कुछ नहीं था ना, मुझे विरासत में डांस तो मिला ही नहीं, लेकिन एक एक लगाव आ गया। तो मैं समझता हूँ कि जो भी

0: आप खुशबू की तरह तो अभी नहीं जाने देंगे हम आपको, एक सुरीली खुशबू जरूर हम चाहता हूं कि आप फैलाएं। यहां पे क्या लगता है आपको कि ये जो इतनी लंबी बातचीत जो हुई, अपनी जिंदगी की बहुत सी बातें आपने आज विविध भारती के श्रोताओं के साथ बांटी हैं, पहले तो ये बताइए कैसा लगा आपको?
1: बहुत ही अच्छा। जिस तरीके से आपने माहौल पैदा किया है, जो कंफर्ट लेवल आपने पैदा किया

0: कि मैं भी खुल गया, मैं बहुत सारी चीजें शेयर कर पाया। कभी कभी बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी आप फील करते हैं कि नहीं, आप अगर जो आपका सत्य है, अगर आप प्रेम से बात करें और जो सामने वाला भी है जो आपको कंफर्ट महसूस कराए, तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल करवाया। और जो सवाल जो आपने पूछे वो बहुत ही कुछ निजी थे, कुछ प्रोफेशनल थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा और जिस तरीके से आपने उसको गाइड किया बहुत मज़ा आया। और ऑल्सो यू नो मैं बहुत ओवरवेल्म हो चुका हूँ बिकॉज विविध भारती ये शब्द मेरे बचपन से जुड़ा है,
1: जी
0: बिकॉज हम सिर्फ रेडियो सुनते थे। आजकल के बच्चे शायद ये बहुत कम सुनने में आएगा कि विविध भारती, जो मिलेनियल्स बोलते हैं ना हम, उनको क्या है विविध भारती क्या है, लेकिन हमें पता है कि इसकी अहमियत क्या है बिकॉज हम ये सुनते आ रहे हैं। तो फॉर मी व्हेन जब आपका कॉल भी आया ना, तो मैंने इमीडिएटली बोला हाँ हाँ हाँ मुझे जाना है क्योंकि इतनी ये जो आपकी जो विरासत है, जो जो यू नो ये जो आपकी जो परंपरा है जो चली आ रही है 1957 से, एक अलग ही परंपरा है और इसके साथ जुड़ना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
1: सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन यहाँ एक मैं चाहता हूँ, वो एक सुरीली खुशबू की जो मैं बात कर रहा था,
0: हाँ
1: आपको क्या लगता है यहाँ कौन सा गाना हमें सुनना चाहिए?
0: कौन सा गाना जो एकदम लोगों को खुश कर देना? है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आ

0: इस गाने में एक लाइन थी, न जाने किस पे आएगा।
1: करेक्ट।
0: आपका दिल तो अब छोड़ देते हैं,
1: बहुत
0: पे आया और अपनी जगह पे
1: आया है और चला गया अभी,
0: और फिर वापस अपनी जगह पे आ गया,
1: आ गया हाँ।
0: लेकिन एक खास बात है, हमारे जितने सुनने वाले हैं हाँ। सबका दिल आप पर आ गया।
1: अरे क्या बात है।
0: और फिलहाल तो मेरा मन तो नहीं हो रहा, इतनी लंबी बातचीत के बाद भी लगता है बैठ के बात करते रहे आपसे हाँ। लेकिन आज के लिए हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर एक बार एक किसी और आसमान पर जब आप पहुंच जाएंगे
1: हाँ।
0: तब हम आपसे फिर एक और मुलाकात करेंगे।
1: जरूर जरूर।
0: और आज तमाम सुनने वालों की तरफ से मैं अमरकांत आपसे विदा लेता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहता हूं। और ये हमारी बहुत खुशनसीबी रही कि आपने न सिर्फ टाइम दिया बल्कि इतने इत्मीनान से इतनी सारी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अमरकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया ताकि मैं दिल खोल के बात करूं, तो शुक्रिया। क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही एंडियरिंग है, जब प्यार सामने से आता है तो एक इंसान भी खुल जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर द लव। और जबी सभी जो सुनने वाले हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, आप ज़रूर ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, और आपका प्यार आपका आशीर्वाद मेरे सर पे सर रहा तो बहुत सारे जो मकाम है ज़िंदगी में मैं ज़रूर हासिल करना चाहूँगा आपके आशीर्वाद से।

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का तीसरा और अंतिम भाग। तकती के सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: शामिल हुए। श्री मोदी ने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। इससे पहले मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने ओडिशा की प्रगति की सराहना की। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय भागीदारी के रूप में उभर रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण को दोहराया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य

0: से आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री इस समय पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
0: आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। उन्होंने महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित किया। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक शामिल है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 43वें ओवर में 9 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। श्रृंखला में भारत 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हर रोज की तरह आज भी आप सुनेंगे भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:10 पर, और 5:30 पर हम आपके लिए पेश करेंगे युवाओं को संबोधित हमारा प्रसारण युवा वाणी।

कर 5 मिनट पर सुनिएगा आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन। 6:10 पर हमारे किसान भाई अपना प्रसारण सुनेंगे किसानवाणी। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है विजय बहादुर सिंह से डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी की बातचीत, अति सघन बागवानी के फायदे। अलावा इसके धान में नील हरित शैवाल के प्रयोग की भी चर्चा होगी और साथ ही चर्चा होगी दैनिक जीवन में योग के महत्व की। सुनना नहीं भूलिएगा। सांझ गीत के तहत भोजपुरी फिल्म संगीत आप सुनेंगे 6:40 पर, और 7:50 पर सुनिएगा हेलो मन पसंद। और रात्रि 10:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम चित्रपट तराने। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास आप सुनते हैं 7:15 पर, और आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनिएगा 7:30 पर।

8:45 पर दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या आप सुनते हैं और रात्रि 9 बजे हम आपके लिए पेश करेंगे भोजपुरी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक धारा। गीत और गजल से दिल बहलाइएगा महफिल कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर, और रात्रि 10 बजे सुनिएगा हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग।

रात्रि 8 बजे का समय है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का, और हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि आज के किसान वाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता अति सघन बागवानी के फायदे विषय पर। विजय बहादुर सिंह से बातचीत करेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी।

तो यह थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा आपके लिए। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 5:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदन।

बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान राम, जानकी जी और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। रास्ते में नदी पार करनी थी। केवट पहले से ही अपनी नाव लिए खड़ा था। उसे मालूम था आज प्रभु आ रहे हैं, आज सेवा का अवसर मिलेगा और मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। प्रभु पहुंचे, केवट ने स्वागत किया। प्रभु ने कहा, केवट हम लोगों को उस पार उतार दो। केवट ने कहा, प्रभु आपका सेवक हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है मेरी। प्रभु ने कहा, क्या शर्त है? केवट बोला, प्रभु पहले अनुमति दें कि मैं आपके चरण पखार लूं। मैंने सुना है आपके चरण किसी पत्थर को लग गए थे तो पत्थर ने नारी का रूप ले लिया था। प्रभु मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरे पास एक ही नाव है बस, और वो भी मेरी जीविका का सहारा है। इसको कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रभु मन ही मन मुस्कुराए, समझ गए केवट क्या चाहता है। अनुमति दी, केवट ने प्रभु के चरण पखारे, चरणामृत पिया और ले चला उस पार।

उतार दिया उस पार। प्रभु ने सोचा केवट का तो यही काम है, यह व्यवसाय है, इसको मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन बनवासी राम देते क्या, कुछ था ही नहीं। सीता जी की ओर इशारा किया। सीता जी ने अपनी एक मुद्रिका उतार के केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। प्रभु ने कहा ले लो केवट, ये तो तुम्हारा व्यवसाय है, तुम्हारी मजदूरी है। केवट ने कहा प्रभु एक विशेष कारण है, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। प्रभु ने कहा क्या कारण है? केवट बोला प्रभु एक ही व्यवसाय करने वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं करते। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा और केवट का व्यवसाय एक कैसे हो गया। केवट ने कहा प्रभु है, और बोला

नाविक हूं, आप भी नाविक हैं, थोड़ा ही सा फर्क है। मैं इस छोटी सी नदी का मल्लाह हूं और आप इस भवसागर के मल्लाह हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: इस संदेश के पहले आपने अनूप जलोटा की आवाज में यह भक्ति रचना सुनी। अब आइए सुनते हैं सुनील पवन की आवाज में यह भक्ति रचना।

भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए, युवा साथियों को संबोधित हमारा प्रसारण युवावाणी

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। जी हाँ, ये सांध्य वेला है और हर रोज़ की सांध्य वेला बहुत कुछ कह जाती है। सबसे पहले तो यही कहती है कि दिन अपने अवसान की ओर है, दिवस का अवसान समीप है और इसलिए ज़िंदगी भी इसी तरह से एक शाम को पहुंचती है। ज़िंदगी का मतलब हमारी दिनचर्या।

हमारे कार्यकलाप, हम जो भी काम करते हैं उसकी एक शाम होती है। कहते हैं ना कि हर सुबह की एक शाम होती है, तो वैसे ही हमारे कार्यकलापों की भी शाम है। शाम का मतलब विश्राम भी है, शाम का मतलब तरोताज़ा होना भी है, शाम का मतलब रिफ्रेश होना है, ताकि हम पुनः पूरे दिल से, पूरे दिमाग से, पूरे मन से कल के काम में जुट जाएं। अब देखिए ना, कल जो एक शब्द आ गया ना, तो हमें याद आई कि कल 21 तारीख है, और आपको शायद याद हो, आप भूले नहीं होंगे, 21 जून बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है हमारी ज़िंदगी में। अब 21 जून जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खगोलीय और भौगोलिक दृष्टिकोण से वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, छोटी रात होती है सबसे, तो ये भी एक है कि भाई दिन जो है वो कल सबसे बड़ा, वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून, और 21 जून जो है दिन का सबसे, ये वर्ष का सबसे बड़ा दिन है, तो सोचने वालों ने कह लिया जाए, यह भी सोचा कि इस बड़े दिन को क्यों नहीं विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाए, तो वो भी हम लोग कल मनाएंगे। विश्व संगीत दिवस भी कल है, और विश्व संगीत दिवस फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे धीरे धीरे संगीत जो है इसकी, इसके महत्व को जब हर कोई ने, हर किसी ने जब महसूस किया, तो ये अब केवल फ्रांस की बात नहीं रह गई, पूरी दुनिया में कल का दिन जो है वो विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है, मनाया जाएगा। हमारे देश की तो हवा में ही संगीत है, ऋषि महर्षि देवी देवता किसने नहीं संगीत जाना। भगवान श्री कृष्ण की बात कर लीजिए, भगवान शिव जी की बात कर लीजिए, महावीर जी की, अब किसकी बात करेंगे, हर जगह आप देखेंगे देवी देवताओं ने भी संगीत के रहस्य को, माँ सरस्वती तो हैं ही अधिष्ठात्री कला और संगीत, ज्ञान कला और साहित्य संगीत की, तो ये जो है ना हमारी ज़िंदगी को मर्यादित भी बनाता है, अनुशासित विनम्र बनाता है, सभा समाज में बैठने के लायक हम बनते हैं संगीत की साधना करके, संगीत सीख करके। हमारे देश में पुरातन संस्कृति के रूप में संस्कृत का, ये संगीत का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। नृत्यम गीतम वाद्यम च, ये तीन चीज़ों से संगीत जो है वो संपूर्ण होता है। तो खैर, ये कल इसकी व्यापकता है आप महसूस कर रहे होंगे, हम लोग भी रोज़ गाना सुनते हैं, गाना बजाते हैं, सुनाते हैं, कभी कभार गुनगुना भी लेते हैं, तो ये भी एक चीज़ है कि भाई अपने आप को अगर ताज़ा करना हो, रिफ़्रेश करना हो, तो भाई थोड़ा गुनगुना लीजिए, या अच्छे साहित्य को सुन लीजिए, सरस संगीत सुन लीजिए, मधुर संगीत सुनिए, तो ये भी एक है। और सबसे महत्वपूर्ण, अभी तो हमने जिसका अभी नाम ही नहीं लिया है, आप सोच रहे होंगे मन में अपने, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जी हाँ, 21 जून को हमारे देश का ये विशुद्ध जो एक योग, योगाभ्यास हमारे देश की उपज है, हमारे देश की देन है, जिसको पूरी दुनिया ने अंगीकार किया है, और पूरी दुनिया भर में योग के महत्व को, योग भगाए रोग, जो व्यक्ति योग के सानिध्य में है, जो योगाभ्यास करता है, उसको सच में सांस संबंधी बीमारियां, मांसपेशियों या हड्डियों संबंधी बीमारियां, यकृत लीवर जो भी होगा, हर्ट, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये योगाभ्यास जो है वो हमारे शरीर को और मन को, दोनों को ही परिष्कृत करता है, और हम तरोताज़ा हो जाते हैं। चलिए हम और भी बात करेंगे इसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं, आप भी सुनिए।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: तो अभी आपने नगमा सुना, नगमे के बाद आपने संदेश भी सुना, और चलिए एक बार फिर से लौट आते हैं। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाएंगे, और योग से शारीरिक और मानसिक दोनों ही लाभ होते हैं। नियमित योगाभ्यास से कई लाभ हो जाते हैं, जैसे शारीरिक ताकत, लचीलापन और संतुलन बढ़ाता है। इसके साथ ही मानसिक तनाव को कम करता है योगाभ्यास, मस्तिष्क को शांत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, और हृदय स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलता है योगाभ्यास से। अब जैसे शारीरिक लाभों की तो बात हो गई, और वैसे यदि कल के महत्वपूर्ण आयोजनों पर हम ध्यान दे लें तो इस वर्ष मुख्य आयोजन ऐतिहासिक शहर कोलकाता के रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयोजित होगा, और इस वर्ष की इस दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। जी हाँ, तो स्वस्थ आयु के लिए योग, ये कल के आयोजन का थीम है। और हम लोग ये जानते चले कि आयुष मंत्रालय और अन्य विभागों द्वारा देश भर के 100 प्रतिष्ठित स्थानों सहित लगभग 2500 स्थानों पर सामूहिक योग शिविर, जागरूकता रैली

और वेलनेस कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा कई ऑनलाइन प्रतियोगिताएं जैसे योग सेल्फी और प्रश्नोत्तरी इत्यादि भी चलाई जा रही है, और इसके बारे में और भी अधिक जानकारी के लिए माई भारत पोर्टल पर भी हम जाकर देख सकते हैं, वहाँ कई जानकारियाँ हमको मिल सकती हैं। योगाभ्यास आप भी करें, योगाभ्यास हम भी करें, सब लोग करें, इसे प्रेम का भी, अपनापन का भी, एकात्मता का भी प्रादुर्भाव होता है, सूत्रपात होता है, तनाव कम तो होता ही है गहरी सांस लेने और ध्यान लगाने से। कोर्टिसोल ये तनाव हार्मोन है, इसकी कमी आती है शरीर में, स्तर गिरता है जिससे मानसिक शांति मिलती है। योगाभ्यास दिमाग को तेज करता है, बच्चों व वयस्कों दोनों में अभ्यास और एकाग्रता बढ़ता है इससे, और बेहतर नींद आती है। सोने से पहले योग करने से अनिद्रा की समस्या दूर होती है और गहरी नींद आने में मदद मिलती है, ऊर्जा और जागृति भी मिलती है इससे। योग से एंडोर्फिन जैसे अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे आप और हम दिन भर तरोताज़ा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। लोग कहते भी हैं कि भाई योगाभ्यास करके आए हैं, देखिए स्फूर्ति कमाल की है। तो ये सबके साथ है, हर शरीर में स्फूर्ति और चंचलता और उदासी तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, अब व्यक्ति मुस्कराता हुआ मिलेगा। फिटनेस का स्तर जो है उम्र के साथ अच्छा होना चाहिए, और ये सुनिश्चित योगाभ्यास ही करता है, क्योंकि नियमित अभ्यास से मांसपेशियों में खिंचाव आता है जिससे शरीर का लचीलापन और ताकत बढ़ती है। योगासन और प्राणायाम रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं जिससे ब्लड प्रेशर और दिल के रोगों का जोखिम कम होता है। वजन नियंत्रण आजकल बड़ी समस्या है, हर कोई परेशान है, चिंतित है कि भाई शरीर का वजन बढ़ रहा है ही खान पान वैसा, किया क्या जाएगा, आदतें भी वैसी कुछ बन गई हैं। तो सक्रिय योग मुद्राओं से कैलोरी जलाने और चयापचय को संतुलित करने में मदद मिलती है, और दर्द से भी राहत है, जोड़ों के दर्द में यानी अर्थराइटिस में और पीठ दर्द में योग से माध्यम से काफ़ी आराम मिलता है। आज योगाभ्यास टेलीविज़न के कई चैनलों पर दिखाए जाते हैं और लोगों से उसमें सहभागिता बढ़ाने की अपील की जाती है, बस इसी बात को लेकर कि लोगों में बढ़िया सेहत की के प्रति जागरूकता आए। तो योगाभ्यास के केवल कल ही नहीं करना है, ज़िंदगी भर करना है, लेकिन कल का ख़ास दिन है और ये पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला है, तो आप भी शरीक होंगे, यह हमें उम्मीद है। एक गीत सुनकर के फिर आगे बढ़ते हैं।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: स्वागत है एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। और अब हम बात कर लेते हैं आज ही, जी हाँ, आज के दिन यानी 20 जून को मनाए जा रहे विश्व शरणार्थी दिवस की। शरणार्थी वैसा व्यक्ति है जो किसी कारणवश प्राकृतिक आपदाओं के कारण या युद्ध की विभीषिका के कारण या किसी भी कारण से जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में बस गया या निर्वासित हो गया, किसी अपने जगह को छोड़ करके सारा कुछ छूट गया, खो गया, गंवा दिया गया और वो व्यक्ति लाचार मजबूर होकर के ही सही कहीं और चला गया। अब उसको शरण तो मिलना चाहिए ना, तो वैसे ही लोगों को हम लोग शरणार्थी कहते हैं और वैसे लोगों की मदद हर किसी को करनी चाहिए, सरकार को भी, हमको भी, आपको भी, क्योंकि भाई वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सभी इंसान हैं, इंसानों की समस्याएं एक ही सी होती हैं। शरणार्थी कोई शौक से नहीं है, भारी मजबूरी के कारण है। विश्व शरणार्थी दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर के शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए नामित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और यह प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है और उन लोगों के साहस और शक्ति का सम्मान करता है जिन्हें संघर्ष या उत्पीड़न से बचने के लिए अपने देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हर वर्ष 20 जून को दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और यह दिन हिंसा, संघर्ष और अत्याचार के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोगों के साहस, शक्ति और संकल्प को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। अब इस दिवस का उद्देश्य है वैश्विक शरणार्थी संकट और विस्थापितों की परेशानियों के प्रति दुनिया को जागरूक करना और साथ ही साथ शरणार्थियों के संघर्षों को स्वीकार करना और उन्हें जहां वे शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं वहां सम्मान दिलाना, देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता को प्रोत्साहित करना ताकि शरणार्थियों को सुरक्षित स्थान और बेहतर जीवन मिल सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 4 दिसंबर 2000 को पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया और पहली बार यह दिवस 20 जून 2001 को मनाया गया। यह तारीख 1951 के शरणार्थी सम्मेलन कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज यानी 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य

में चुनी गई थी और इससे पहले इसे अफ्रीका शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो यह एक चीज़ है। और शरणार्थी जो है जेनेवा कन्वेंशन में उत्पीड़न के 5 कारण बताए गए हैं जिनके आधार पर शरणार्थियों का या शरणार्थी का दर्जा मिलता है। ये कारण है नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता और राजनीतिक मत। ये एक दूसरे से परस्पर विरोधी नहीं है और किसी विशेष मामले में एक से अधिक आधार प्रासंगिक भी हो सकते हैं। तो यदि हम अपने देश की बात कर लें तो हमारे देश में UNHCR के 2021 के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में लगभग 212,874 शरणार्थियों और शरण चाहने वालों की मेज़बानी करता है हमारा देश। श्रीलंका में भारत में 47.3%, चीन में 37.4%, म्यांमार में 10.4% और अफगानिस्तान में 4.4% शरणार्थी हैं। तो आज का ये दिन उन्हें ही समर्पित है जो शरणार्थी की ज़िंदगी जी रहे हैं और जिनको हमारे और आपके सहयोग की भी आवश्यकता है, देशों की सरकारों की के सहयोग की आवश्यकता है। तो आज की ये खास बात हुई। चलिए एक और नगमा सुन लेते हैं आगे बढ़ने के पहले।

तो सोचता हूँ अब हम बात कर लेते हैं चलते चलते राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य देश को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन से निपटने और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वर्ष 2030 तक, जी हाँ, वर्ष 2030 तक भारत में प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य है और भारत को क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा के मामले में दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बनाया जाना है। सामान्य हाइड्रोजन को पानी से अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन तैयार किया जाता है और जब इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक बिजली सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त की जाती है तो उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। इसमें कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल शून्य होता है। इस मिशन के तहत 8 लाख करोड़ से अधिक का कुल निवेश आने का अनुमान है और इसे लगभग 6 लाख नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल और कोयला के आयात में 1 लाख करोड़ से अधिक की कमी आने की उम्मीद है और इस मिशन के पूरी तरह लागू होने से हर साल लगभग 5 करोड़ टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोका जा सकेगा जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो अब इन्हीं बिंदुओं के साथ ही आज के युवाणी कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

तो अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों को संबोधित हमारा प्रसारण युवावाणी। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजे हैं, लीजिए सुनिए लोकगीत।

भरत सिंह भारती और साथियों की गाई इसी बरसाती गीत के साथ ही लोकगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रणाम, ई आकाशवाणी के पटना केंद्र है। अब रहुआ सूर्य प्रकाश उपाध्याय ले भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 23वीं किस्त के जारी राशि जारी कैले। श्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम ले 9,44,00,000 किसानन के बैंक खाता में 18,880 करोड़ रुपया से बेसी के राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कैले। बिहार के 73,00,000 से बेसी किसानन के बैंक खाता में योजना के राशि ट्रांसफर कैल गेल। यही अवसर पर पटना के बामेती सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गो गणमान्य लोग उपस्थित रहले। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA काल होखे वाला नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले आज देश भर में मॉकड्रिल के आयोजन कर रहल बिया। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण खातिर अभ्यास कैल जा रहल बा। यही बीच पटना में बापू परीक्षा भवन समेत राज्य के प्रमुख केंद्रन पर परीक्षा के आयोजन के पूर्वाभ्यास कैल जा रहल बा। एकरा के लेके यातायात व्यवस्था में भी बदलाव कैल गेल बा। नीट पुनर्परीक्षा खातिर राज्य के 34 जिला में 331 केंद्र बनावल गेल बाड़े। परीक्षा में 1,56,000 से ज्यादा परीक्षार्थी लोग के शामिल होके के संभावना बा। परीक्षा के दिक्कत बेली रोड पर मेट्रो काम आज से प्रस्तावित ट्रैफिक ट्रायल भी फिलहाल स्थगित कर दिहल गेल बा। इन्हें राज्य सरकार कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न करावे खातिर

0: सुरक्षा के कड़ा इंतजाम के लिए भी आ इन्हें परीक्षार्थी लोग के सुविधा खातिर राज्य सरकार के ओर से परिवहन विभाग विशेष बस चलाई, साथ ही रेलवे की ओर से भी नीट परीक्षा के परीक्षार्थी लोग खातिर विशेष ट्रेन चलावल जाई। मुख्यमंत्री चौधरी आज भरत तिवारी के मौत मामला के जांच के निर्देश देले बाड़न। भोजपुर जिला के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून के भयल पुलिस मुठभेड़ के स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच खातिर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच करावे के फैसला लिहल गई। न्यायिक जांच के मकसद घटना के सब पहलुओं के निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच पक्का कैल बा। काल 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका पर देश भर में कईन गो कार्यक्रम के आयोजन कैल जाई, एकरा के लेके तैयारी के अंतिम रूप दिहल जा रहल बा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं। ओहिजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होकर के नेतृत्व करी हैं। इस साल के योग दिवस के थीम बा स्वस्थ वृद्धावस्था खातिर योग। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सन में भी योग शिविर आयोग जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन कैल जाये। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शामिल हुई हैं। ओहिजा प्रदेश के सब सरकारी और निजी स्कूलन में भी योगाभ्यास सत्र के आयोजन कैल जाये। जनता दल यूनाइटेड के राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद के बैठक काल पटना में आयोजित कैल जाये। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बतौलन कि जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पार्टी के आगामी रणनीति पर चर्चा कैल जाये। वहां के बतौनी की बैठक में मंत्री सब सांसद विधायक और एमएलसी मौजूद रही हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सा में भीषण गर्मी के दौर जारी बा। मौसम विभाग अगला 24 घंटा के दौरान भभुआ भोजपुर बक्सर जिला में लू चले के आशंका के लेके येलो अलर्ट जारी कैले बा। विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान कैमूर के भभुआ राज्य के सबसे गर्म जगह रहल, जहां के अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज कैल गेल। एने विभाग अपन पूर्वानुमान में कहले बा कि आज राज्य के उत्तरी या दक्षिण पूर्वी हिस्सा में कुछ जगह पर तेजी आंधी के साथ पानी बरस सकेला। राज्य सरकार क्रिकेटर मुकेश कुमार आकाशदीप के पुलिस उपाधीक्षक यानी DSP पद पर बहाली खातिर अनुशंसा के लिए भी आ। उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधे नियुक्ति नियमावली 2026 के तहत यह अनुशंसा कल गई बा। गोपालगंज के रहे वाला मुकेश कुमार और रोहतास के आकाशदीप तेज गेंदबाजन बढ़न। वहां लोग कईन गो खास मैचन में भारतीय टीम के प्रतिनिधित्व कैले बानी। गृह विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक नियुक्ति के तारीख से अगला 5 साल तक दोनों खिलाड़ी लोग के सक्रिय रूप से खेल प्रतियोगिता में भाग लेहल जरूरी हुई। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं संयुक्त परीक्षा के परिणाम आज जारी कल गई बा। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने आज परिणाम परीक्षा जारी कैले। हजार नियुक्ति के वर्ष 2024 में परीक्षा का आयोजन किया गया था। औरंगाबाद जिला के रफीगंज थाना क्षेत्र में रफीगंज गोह मुख्य मार्ग पर पिकअप वैन ऑटो रिक्शा के टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गो और लोग घायल बढ़न। भोजपुरी अंचल के अत्यंत प्राचीन लोक कला पीढ़िया पेंटिंग के भारत सरकार से भौगोलिक संकेत GI टैग मिलल एगो बड़ उपलब्धि मानल जा रहा बा। ई खाली भोजपुरी के एगो कला शैली नहीं बल्कि भोजपुरी अस्मिता लोक परंपरा आ भोजपुरी विकास के बड़ समान हा। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंग एजा समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है किसान भाइयों का प्रसारण किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: किसान बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोता भाई बहन लोग के रज्जू भाई के तरफ से नमस्कार। आज झुनी बहन रौरा के भी नमस्कार।
1: नमस्कार रज्जू भाई और सब श्रोता भाई बहन लोगन के झुनी बहन के तरफ से प्रणाम।
0: देखी झुनी बहन कहल गई बा कि बोली के बारे में कहल गई बा कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी।
1: माने जैसे तराजू पर समान तौल के कर बराबर करे के चाहिए। उसी देखिए कहल गई बा कि एक बार अगर मुँह से रहो जबान जो निकल गई वो फिर वापस ना जा सकेला, ओकरा कोनो कारण से ना बदल सकेला।
0: यही से हमने के सोच समझ के बात बोले के चाहिए।
1: देखी बातें एगो ऐसा चीज बा कि देखी शब्द एगो ऐसा चीज है कि मतलब वही से रुआ कितना प्रसन्न हो जाता नहीं और वही से रुआ कितना दुखी हो जाता
0: जी। आ देखी यही से कहल गई बा कि आदमी के वैसने शब्द दूसरा खाती बोले के चाहिए जवन की अपने पसंद हो। अभी ना कि मतलब हमारा खातिर यदि कोई शब्द बोलता तो वो हमारा दुख लग जाता, हम दूसरा के बोलते नहीं तो हमारा नीमन लागता। ऐसे हमनी के देखल जा झुनी बहन तो हमनी के घर होखे, गांव होखे, समाज होखे, जहाँ भी यदि बोली सुधार दिया तो पूरा समझी कि गांव समाज घर के झंझट खत्म हो जाए।
1: कोई से ना बिगड़े,
0: कोई से ना बिगड़े,
1: बोलिए तो कोई सन चीज बा कि कोई से बनाव हो जाता, कोई से बिगाड़ हो जाता। व्यवहार जौन बाटे सबसे बड़ा
0: हाँ मतलब बोली एगो ऐसा चीज बा कि घर में यदि भाई भाई से प्रेम से बोले के सीख जास, पति पत्नी प्रेम से बोले के सीख जाओ, बाप बेटा या पिता पुत्र या माता पिता जे भी बा, यदि परिवार में भी या गांव घर में भी कोई मधुर शब्द बोले के सीख जाओ तो समझी कि ओकरा कोई से झंझट होके के सवाल नहीं। आ देखी यही से तुलसीदास जी कहले रही कि जौन संत होलन उ आम के मतलब मौसम चल रहा बा, आम के पेड़ जैसन होलन, जैसे कि तुलसी संत स्वयं बतरु फूल फल ही परहेत, इतते वे पाहन हने उतते वे फल देत। मतलब कहल गई बा कि जैसे कि आम के पत्थल माले से उ वृक्ष जौन बा तौन मधुर मीठा फल देला, वही तरह से हमनी के संत के भी होके चाहिए या संत समाज में जे हमनी के समझदार लोग बा ओकरा भी एक तरह के होके चाहिए कि यदि कोई कठोर वचन भी बोल देलस तो ओकरा बदला में यदि रौरा मीठा वचन बोलतनी तो ओहिजा से पूरा समस्या के ही
1: समाधान हो
0: जाता। तो हमनी के कोशिश कर जाओ कि अपना घर में द्वार में समाज में बोली के तौल के
1: बोली पर हां ध्यान दिहल जाए कि माने हमरा से कोई दुखी ना होके
0: जी,
1: हमरा बात से कोई कहे कि देखी कहल गेल बा कि एक बार बंदूक से निकलल गोली या जुबान से निकलल बोली फिर वापस ना जा सकेला, ऐसे एकरा पर मतलब नियंत्रण रखे के चाहिए। तो देखी आज हमनी के कार्यक्रम में का जानकारी मिले वाला बात नहीं करा के बारे में भी बता दे।
0: देखी झुनी बहन सबसे पहले नु हमनी के अपना किसान भाई खाती कृषि पर आधारित खबर सुनल जाए आज देश विदेश के अंतर्गत
1: जी, जी।
0: फिर हमनी के आज की बातों में एगो भेंट वार्ता सुनल जाए जावना में कि अति सघन बागवानी से का फायदा बा, ए विषय पर हमनी के बातचीत सुनल जाए जेकरा में कि भेंट वार्ताकार बानी विजय बहादुर सिंह आ यहाँ से भेंट कैले बानी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। फिर हमनी के चलल जी नया दौर की नई बातों के अंतर्गत जहाँ की धान में नील हरित शैवाल के प्रयोग कैल जाए एकरा पर हमनी के चर्चा कैली। फिर आज के नसीहत में हमनी के निरोग आ स्वस्थ रहे खाती योग के महत्व पर भी हमनी के चर्चा कैली। आ फिर आज के मौसम के मियाज भी हमनी के जानल जाए आ मौसम पर आधारित हमनी के किसान भाई खाती कृषि सलाह भी अपना श्रोता भाई लोगन के दिहल जाए। तो अब आई हमनी के कृषि पर आधारित खबर सुनल जा देश विदेश के अंतर्गत।
1: देखिए रजू भाई खबर बा कि हमनी के जिला के राजपुर प्रखंड के मुख्यालय स्थित किसान भवन परिसर में शुक्रवार के यानी

0: कल खरीफ महाअभियान के तहत कर्मशाला सह परीक्षण शिविर के आयोजन कैल गेल। एकरा में आत्मा के अध्यक्ष बसंत शाह कहलन कि अपना खेत से बेहतर उत्पादन करे खातिर किसान भाई लोग जीरो टील कृषि उपकरण के उपयोग कर से। किसान अभी भी रासायनिक उर्वरक के प्रयोग काफ़ी मात्रा में कर रहा बाड़न। ये स्वास्थ्य और मिट्टी दोनों खातिर हानिकारक बा। देखी रासायनिक खाद से का होता कि मतलब शरीर में तो तरह तरह के रोग लगते बा, लेकिन हमने के जन मिट्टी बा वो भी बंजर हो जाता। किसान लोग के पुनः प्राकृतिक खेती के तरफ लौटे के होई। खेतन में यूरिया खाद डाले के बजाय नैनो यूरिया के प्रयोग करे के होई। आ किसान भाई लोग खातिर ज़्यादा लाभदायक होई। गोबर के खाद के प्रयोग एक बार फिर शुरू करे के चाही। आ देखी मोटा अनाज के उपज पुनः एक बार बढ़ावे या खाए दोनों के जरूरत फिर से आ गई बा। देखी कहीं भी जाते हैं तो डॉक्टर लोग ही बताओ ताकि मोटा अनाज खाएं, तो मोटा अनाज उपजाई तबे ना खाई
1: जी। मोटा अनाज के आज जरूरत बा, मतलब निरोग रहे के बा, तो सब कोई के मोटा अनाज अब खाही के बा।
0: तो देखें ये तरह कृषि से संबंधित जानकारी
1: देखी, ये बहुत निमन जानकारी मिलल
0: जी।
1: आ अब हमने के चले के अपना खेत खलिहान की ओर, जहाँ कि हमने के बहुत सा किसान भाई बागवानी कैले बनी, बाकी बहुत नीमन बागवानी कैसे होके लाभदायक कैसे हुई एकरा खातिर आई हमने के एगो भेंट वार्ता सुनत नहीं जा कि सघन बागवानी से हमने के का लाभ बा। तो एकर जानकारी दे रहल बनी विजय बहादुर सिंह, आ यहाँ से भेंट कैले बनी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी, ताई हमने के सुनल
0: सुनल जा।
2: श्रोता सब बरसात में पौधन के लगावल जाला। आ इस समय नया जौन तकनीक आइल है पौधन के लगावे के, पेड़ पौधा लगावे के, ओकरा में अति सघन बागवानी
3: जी,
2: ये एक नया तकनीक बा जौन कि इजराइल से शुरू भई रहे
3: जी,
2: हमरा देश में भी आइल बा कि कम जगह में अच्छा उत्पादन जौना से लेहल जा सके
3: जी।
2: पहले आम का पेड़ रोल हों से बड़ा बड़ा पेड़ हुई हैं सन, अमरूद बा या एकरा अलावे अन्य भी जौन कटहल बा
3: जी,
2: जामुन बा, तो बड़ा बड़ा पेड़ हुई हैं सन, और वो अनुपात में फलन नहीं हो पाई। बहुत बड़ा पेड़ बा, पुराना पेड़ बा, मुश्किल से 3 क्विंटल 2 क्विंटल आम का फलन मिलेला। ओकरा चलते हमने के अति सघन बागवानी के तरफ आवे के पड़ी। अति सघन बागवानी हो भी रहल बा देश भर में। हमनी के क्षेत्र में किसान बनी विजय बहादुर सिंह जी जौन अति सघन बागवानी करीला, यहाँ का सबया राजपुर रोहतास का रहे वाला हैं। तो आज यहाँ से जानल जाओ कि अति सघन बागवानी से का लाभ बा आ कैसे करे के चाही। विजय बहादुर सिंह जी आपका हमारा स्टूडियो में स्वागत बा। ये बताई कि जौन अति सघन बागवानी कैली आ पहले पारंपरिक रूप से खेती करत रही, पौधा लगावत रही पेड़न के, दोनों में फर्क का महसूस
3: जी। किसान भाई अभी जौन बातन सघन बागवानी अति सघन बागवानी आ एक पारंपरिक के जो विधि से जौन हमनी के पूर्वज लगावत रहन तो ओकर जौन दूरी रहत रहे 10 से 12 मीटर रहत रहे। सघन बागवानी में दूरी 5 मीटर बाई 5 मीटर हो गई। आ अति सघन बागवानी, सघन बागवानी के मतलब कि हाई डेंसिटी, अति सघन बागवानी मतलब कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी, वो और दूरी कम हो गई। जबकि आम्रपाली के पौधा जौन बढ़ुए, मल्लिका के पौधा बढ़ुए आम के, तो अति सघन बागवानी में 1 एकड़ में 1600 पौधा होला। 1 एकड़ में 1600 पौधा अति सघन बागवानी। लेकिन ओकरा में कैनोपी मैनेजमेंट कइल जाला। अति सघन बागवानी में किसान के बहुत सतर्क रहे के पड़ला। सघन बागवानी में तो ज्यादा सतर्क नहीं के रहे के, ऐसे ओकर दूरी 5-5 मीटर हो गई। तो 5 मीटर के बात भइल तो जहाँ हम 1 हेक्टर में 100 पौधा लगावत रही, ओहिजा जौन बा तौन हम सघन बागवानी में हाई डेंसिटी में 5 मीटर के दूरी पर जब लगाओ तनी 5 मीटर लाइन से लाइन आ 5 मीटर पौधा से पौधा, तो ओह में हमार 4 गुना बढ़ गए, यानी 400 एक हेक्टर में हो गए। आ उहे जब हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी लगाओ तनी अति सघन बागवानी, तो ओह में हो गए 2.5 मीटर, तो ओह में 1600 पौधा हो गए। 1600 पौधा 1 हेक्टर में हो गए। तो किसान भाई ओकरा में बहुत सचेत रहे के बा। सचेत ऐसे रहे के बा कि किसान के उतने हाई डेंसिटी हाई पावर में रहे के बा कि हमार जब फल के तुड़ाई हो जाए

0: तो हम ओकरा के 25% बायोमास बा तवन जैसे हम बाल अपन काट तानी वैसे ओकरा के निकाल देवे के बा, सूर्य के प्रकाश में लागे के चाही, एक पौधा से दूसरा पौधा के सटे के ना चाही, जब सट जाई तो फिर जौन बा तवन अगला साल फली ना।
1: जी विजय बहादुर जी, लेकिन ई कहल जाला कि जैसे कहत ली है कि एक हेक्टेयर में हमनी के पहले 100 गो लगावत रहे, सघन बागवानी में 400 हो गई, अति सघन बागवानी में 1600 हो गई। अब एक चीज बताई कि पौधा तो हमनी के ज्यादा लगावे के पड़ल, तो खर्च ज्यादा पड़ल, ओकर देख रेख ज्यादा हो गई, का फलन जोन बाटे जैसन कहल जाला कि फलन ओकरा में ज्यादा होला, उत्पादन ज्यादा होला, का ई सही बात बा?
0: अब देखी, अब अगर 100 पौधा से हम लेता नहीं, बीजू पौधा लगावतानी या कलमी पौधा लगावतानी, अगर 100 गो पौधा हो तो ओकरा तैयार होखे में भी हमरा पूरा समय लागी, लेकिन जब सघन बागवानी लगावतानी 400 पौधा, तो उ पौधा जौन बढ़ुए तौन हम नीचे से ही तुड़ाई कर लेब, उ नीचे से तुड़ाई कर लेब, अति सघन बागवानी में भी हम नीचे से तुड़ाई कर लेब, आ कम समय में ज्यादा उत्पादन होई, हमार जौन जौन ज्यादा उत्पादन होई। कारण का बढ़ुए कि हमार कोई भी क्षेत्र खाली नहीं खे रहत, आ उसमें जौन पारंपरिक रूप से जौन लागत रहे उसमें पूरा जमीन परती रहत रहे,
1: बीच के जगह खाली रहत रहे
0: जी, आ कुछ ना नीचे धा से कुछ होत ना रहे, आ ये हमें पूरा जमीन के माने सदुपयोग हो रहल बा, तो सदुपयोग हो रहल बा तो उ जौन बा तवन ओमे फलन ज्यादा आई, रह गई कि बस थोड़ा सचेत रहे के बा कि ओकरा में कैनोपी मैनेजमेंट आदि छत्र प्रबंधन काट छाँट करे के बढ़ुए, ट्रेनिंग प्रूनिंग हमेशा करे के बा, हमेशा करे के मतलब बढ़ुए कि मतलब कि बरसात जैसे ही आई फल के तुड़ाई हो जाए तो ओकरा के 25% ओकर जौन बा तौन काट छाँट कर देवे के बा जी, काट छाँट करके हटा के जला देवे के बा ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा जौन बा तवन ओकरा के अथी ना हुई हन।
1: जी जी, अब अति सघन बागवानी करे के कैसे हुई, हमनी के कैसे लगावे के
0: करे के बढ़ुए कि अति सघन बागवानी में हमनी के खेत के जैसे मान ली एक एकड़ खेत बढ़ गए तो एक एकड़ खेत के हम जुताई कर देनी, जो भी हो एक एकड़ खेत के जुताई कर देनी, कुछ दिन सूखे खाती ओकरा के मिट्टी के छोड़ देनी, एकरा बाद में हम नापी करके जैसे अति सघन बागवानी में 2.5 मीटर के दूरी पर जौन हम बातवन 3 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा 3 फीट गहरा हम गड्ढा खान के 15 दिन ओकरा के मिट्टी निकाल के धूप लागे खाती छोड़ देनी, एकरा बाद में 15 दिन के बाद में हम जौन बा तवन ओकरा में बर्मी कंपोस्ट होखे चाहे पुराना कंपोस्ट होखे ओकरा के कम से कम 15 किलो 20 किलो या 50 किलो कंपोस्ट डालल जी, 15-20 किलो अगर बर्मी कंपोस्ट डालतान जा तो 50 किलो कंपोस्ट डाले के पड़ी, दोनों में कौनों में मात्रा इतना कम बेसी होखे के चाहिए
1: जी।
0: दूसरा चीज बा कि एक चुटकी थाइमेट हरेक थाला में डाले के पड़ी जी, ताकि कि खेत में जौन दीमक होलन या व्हाइट ग्रब जौन कहालन मंगरा ई सब चीज जौन बढ़ुए तवन ई कीड़ा मकोड़ा उसमें ना लगी हन
1: जी।
0: आ कुछ जमीन जैसे कमजोर बा तो मिट्टी जांच के आधार पर ओकरा में हम कुछ मिट्टी खाद भी डाल सकीना, मान ली कि 100 ग्राम के हिसाब से डाल के फिर वो गड्ढा के भर देव, आ भर देव एकरा बाद बरसात के इंतजार करब, बरसात में बैठ जाई, बैठला के बाद में हम पौधा के चुनाव करब, आ पौधा हम कोई बढ़िया संस्थान से ले आई जहाँ जैसे मान ली कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब और बा या कृषि विज्ञान केंद्र में भी पौधा आयल बाड़ी सन, तो ऐसन ऐसन जगह से हम पौधा ले आई, आ ले आके आ ओकरा के उसमें या तो पुआल लगाओ रहला या प्लास्टिक के लगाओ रहला, ओकरा के फिर उतने हम माने लगभग 1 फीट गड्ढा करके या वो गड्ढा में जौन बात उन प्लास्टिक निकाल के आ थोड़ा पानी डाल के या फिर जौन बात बैठा दे, बैठा के या खड़ा होके या ओकरा के मिट्टी से भर दे पूरा दबा के या गोड़ से दबा दे आ एकरा बाद में पानी दे दे जी।
1: एह तरह समनी के रोपण कर ले
0: आ ई सब चीज बात ना पटवन करे खाती सिंचाई करे खाती हमरा ड्रिप सिस्टम जौन बात वन एकरा में लगाना जरूरी बा, ड्रिप सिस्टम या माइक्रो लगाई जी, फ्लडिंग सिस्टम से उतना पानी ना एथी हो पाई, अब ज्यादा घास ओस जामे के एथी रहला लेकिन ड्रिप सिंचाई से बहुत अच्छा होला।
1: अच्छा घास ओस के बात करते हैं तो घास के हमनी के समय समय पर
0: समय समय पर चाहे अभी रवा बहुत सस्ता है घरी पावर बीडर चलल बा 34,000-40,000 में मिल रहल बा पेट्रोल इंजन से चले वाला, ओकरा में रोटावेटर बा ओकरा से जोताई कर दही साल में 2 बार जोताई कर दही, कीड़ा मकोड़ा भी वातावरण बेथी से सूख जइह ना घास भी एको ना जामे
1: जी जी
0: जी।
1: अच्छा सिंचाई हो गई
0: जी,
1: जौन कल यहाँ कैनोपी मैनेजमेंट कटाई छटाई
0: जी
1: हमनी के कितना ऊंचा तक पौधा रखे

0: चाहिए।
1: हम जैसे कि शुरू शुरू में एक मीटर के बाद में ओकरा के ऊपर वाला काट दिया,
0: मेन जो तनाबा,
1: हाँ, मेन तनाबा ओकरा के काट दिया, तो साइड से ब्रांच निकली, शाखा निकली, तो दू गो तीन गो शाखा निकली, तो हर एक साइड में एक गो शाखा छोड़ल जाय, एक गो शाखा में से फिर ऊपर बढ़ी, जब ऊपर बढ़ी तो फिर ओह में दू गो तीन गो छोड़ल जाय, बाकी फिर ओकरा के काटल जाय, तो फिर ओहिजा से अथी होई, तो ऊपर से जो बीच वाला कटले बनी ओहिजा से धूप लागी, तो धूप लागी तो हमार पौधा बहुत अच्छा विकास भी करी आ एथी भी रही, माने स्वस्थ
0: धूप जड़ तक
1: धूप जाए के चाहिए, धूप जाए के चाहिए
0: जी
1: जी। या साल में दो बार कम से कम चूना क्लोरोपाइरीफास आ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के मिला के आ दो बार ओकरा के कम से कम एक मीटर तक पुताई करे के चाहिए, ताकि कि जैसे मान ली कि छाल बड़ुए ओकर तमन फाटे मत आ कोई कीड़ा मकोड़ा लगी हन्ना
0: जी जी। अच्छा जैसे जो अति सघन बागवानी बा
1: जी,
0: तो एकरा में जैसे कनी मल्लिका बा, आम्रपाली बा, या और जोन बौनी प्रभेद बनी सन,
1: हिमसागर बा,
0: हिमसागर बा, या अन्य जोन बनी सन, या एकरा अलावे जैसे जामुने का करे के बा, हमनी के अमरूद का करे के बा,
1: कटहल
0: का करे के बा, तो ई सब जोन बौनी प्रजाति बनी से उहे हमनी के लगावे के,
1: हां उहे लगावे के होई, आ सब उहमे सघन बागवानी में जाई, अति सघन बागवानी में उ सब ना हो सके जी।
0: अति सघन
1: बागवानी में आमे अमरूद हो सकला,
0: अच्छा
1: अति सघन बागवानी में आमे अमरूद हो सकला, बाकी जोन बड़ुए तन माने उतना एथी ना करी,
0: अच्छा
1: जी, ओकर विकास होखे के चाहिए तभी फल फलन आई
0: जी। लेकिन जैसे नींबू बाटे, अनार बा, तो ई कुल
1: अति सघन बागवानी में ई माने छोटा छोटा पौधा होला ऐसे आ सकला अति सघन बागवानी में, लेकिन कुछ दिन के बाद में फिर ब्रांच आई, तो अगर नहीं ही काटत तो समझ ली कि हानि ही करी,
0: तो काटे के तो पड़बे करी अति सघन बागवानी में
1: जी
0: जी। तो एह तरह से अगर हमनी अति सघन बागवानी करते हैं तो अच्छा उत्पादन हो सके,
1: बहुत अच्छा उत्पादन हुई, ज्यादा हुई।
0: आ सबसे बड़ी समस्या बा होला हमनी का, बड़ा पेड़ हो गई, आन्ही आई पूरा फरल बा, अब बदबदा के पूरा आम गिर जाला, ई सब अति सघन बागवानी में नहीं होला, ऐसे कि 7-8 फीट तक ऊंचाई होला,
1: ऊंचाई होला,
0: हाथ से पकड़ करके ओकरा के तोड़े के बा,
1: किनारा किनारा जैसे कि बीजू आम बा, बीजू अमरूद बा, एति बा, ई जामुन बा, तो कुछ ऐसन ऐसन पौधा किनारा किनारा लगा दे, तो हवा के रोक जौन पश्चिमी छोर आ उत्तरी छोर पर लगावल जला, तो ओहमे हवा के झोंका कामना करे, एते सघन बागवानी में, अति सघन बागवानी में बहुत फायदा बा कि किनारा किनारा को वायु रोधक वृक्ष जरूर लगावे के चाहिए
0: जी जी जी। तो एह तरह से हमनी का अति सघन बागवानी करके अच्छा उत्पादन कर सकी
1: जी, जी, जी।
0: तो विजय बहादुर सिंह जी आ पहली इतना नीमन जानकारी देनी, एकरा खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
2: अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
4: देखिए झुनी बहिन, कितना नीमन जानकारी देनी विजय बहादुर सिंह, आ यहाँ के कितना बढ़िया से बतैनी कि अति सघवानी जौन
5: सघन बागवानी में क्या फायदा बा ओकरा से,
4: तो इतना नीमन जानकारी दिहला खातिर यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। देखी हमनी के अभी धान के खेती चल रहल बा, बहुत जगह बिया डाला था, कुछ बिया तैयारो हो गई बा, अब रह गई कि ओकरा में हमनी के नील हरित शैवाल के प्रयोग यदि कइल जाय,
5: खाद मान कैसन दिहल जाओ कि माने ज्यादा
4: बहुत फायदा हुई, तो अब रह गई कि एकरा पर चर्चा करे से पहले आई थोड़ा संदेश सुन लिया।

ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब

0: कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वहीं रेट पर कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
0: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

देखी झुनी बहन, अभी धान के जौन खेती हमनी के किसान भाई लोग कर रहल बनी, एकरा में यदि धान के फसल में नील हरित शैवाल के प्रयोग हमनी के किसान भाई करस तो हमनी के खेती में बहुते लाभदायक हुई। आ एकरा में ई जौन बा ई सस्ता उर्वरक भी पड़ेला। आ ई का करला कि नील हरित शैवाल जौन बा वातावरण से नाइट्रोजन सोख के आ पौधा के देवेला, आ हमनी के पैदावार एकरा से बढ़ेला। एकरा के रोपाई करे खातिर खेत में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगभग 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से सूखा शैवाल के पाउडर चाहे गुच्छा के छिड़काव करे के चाहिए। धान के रोपनी के 6 से 10 दिन बाद एकर प्रयोग सबसे नीमन मानल जाला। एकरा साथे साथे खेत में पानी के हिसाब से देखल जाओ तो छिड़काव के पहले खेत में 2 से 3 इंच मतलब कि 8 से 10 सेंटीमीटर पानी ओकरा में खेत में रहे के चाहिए। एकरा साथे साथे देखी ई का एकरा से हमनी के लाभ बा कि नील हरित शैवाल जौन बा ई यूरिया के बचत करेला। ई प्रति

0: 25 से 30 किलोग्राम तक नाइट्रोजन के पूर्ति करेला, जवना में लगभग 40 से 50 किलोग्राम यूरिया बच जाला। आ मिट्टी में भी सुधार होला। अभी हमनी के बहुत सा रासायनिक खाद जौन खेत में डालते हैं ओकरा से जौन फसल उपज होता उ शरीर खातिर उतना लाभदायक नहीं है, लेकिन यदि हमनी के नील हरित शैवाल के प्रयोग करते नहीं जा तो एकरा से माटी के जौन बा कार्बन आ प्राकृतिक हार्मोन जिसे ऑक्सीजन आ जिब्रेसिंग के भी छोड़ेला, जवाना से भूमि उपजाऊ बनेला। तो एकरा में यदि लागत के बात कही जाए तो 150 से 200 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई के खर्चा पड़ेला, जौन कि उर्वरक के तुलना में काफ़ी कम होला।
1: कम होला, खेत के भी लाभदायक होला।
0: जी
1: तो देखिए बड़ा बढ़िया बात रहल कि नील हरित शैवाल के प्रयोग से हमें कितना फायदा बा। रजू भाई
0: जी,
1: हमनी के देखी दैनिक जीवन में योगा जौन बाटे शारीरिक मानसिक आ भावनात्मक स्वास्थ्य के संतुलित रखे के सबसे उत्तम आ प्राकृतिक साधन है। इ न केवल बीमारी से बचावेला बल्कि एकाग्रता ऊर्जा आ आत्मविश्वास

0: कि नील हरित शैवाल के प्रयोग से हमनी के कितना फायदा बा। रजू भाई,
1: जी
0: हमनी के देखी दैनिक जीवन में योगा जौन बाटे शारीरिक मानसिक आ भावनात्मक स्वास्थ्य के संतुलित रखे के सबसे उत्तम आ प्राकृतिक साधन है। न केवल बीमारी से बचावेला बल्कि एकाग्रता, ऊर्जा आ आत्मविश्वास आ ध्यान के बढ़ा के जीवन के गुणवत्ता में सुधार करेला। ओतने नहीं, देखी प्राणायाम जौन बाटे इकरा से हमनी के मस्तिष्क शांत रखेला आ मानसिकता स्पष्ट जौन बा तौन बढ़ेला आ तनाव कम होखेला। नियमित योगासन से शरीर में लचीलापन, मजबूती आ जौन रक्त संचार बा बेहतर होखेला। आई देखी कल यानी 21 जून के हमनी के पूरा देश भर में एकरा के मनावल जाला। एकरा मनावे के मतलब ई बा कि हमनी के मतलब जागरूकता बढ़ावल बा
1: जी, मतलब निरोग रहे के बाद तो हमनी के व्यायाम करे के चाही,
0: करे के चाही।
1: तो देखी अब हमनी के चले के थोड़ा मौसम पर एक नज़र रहल जा। तो देखी भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 21 जून तक मतलब जिला में 1 से 2 स्थान तक पानी हो सकेला। एकरा में 40 से 45 किलोमीटर के रफ्तार से हवा भी चल सकेला। आय में अधिकतम तापमान 31 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड आ न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। आ देखी एकरा में हमनी के सामान्य सलाह ई बा किसान भाई खातिर कि आगामी कुछ दिन में वर्षा के संभावना बा, ए में खड़ा फसल के जौन सिंचाई करे के बा ओकरा में रोक देवे के चाही। आ खाद कीटनाशक के छिड़काव भी तब करे के चाही जब आसमान साफ होखे। आ एकरा साथे साथे अभी हमने के धान के जौन किसान भाई अपन खेती बाड़ी करतन तो एकरा में अच्छा किस्म जौन बा एकरा में सबौर श्री बा, सरवणा बा, राजश्री बा, राजिंदर मंसूरी बा, राजिंदर श्वेता बा आ राजिंदर नर्सरी में एकरा के तैयार करे के चाहिए। एकरा खाती नर्सरी तैयार करे खाती 1.25 से 1.50 मीटर तक लंबा सुविधा अनुसार तैयार करे के चाहिए। आ 1 हेक्टेयर क्षेत्र खातिर रोपाई खातिर 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार करे के चाहिए। आ बीज खातिर प्रमाणित बीज के ही प्रयोग हमने के किसान
0: बीज ओकरा के उपचार करके तभी डाले
1: के चाहिए।
0: देखी रजू भाई, हमने के समय हो गेल बा किसान भाई बहन लोगन से विदा लेवे के। तो चले चले के बेरा में सब श्रोता भाई बहन लोगन के झुनी बहन के तरफ से प्रणाम। रजू भाई रहुआ के नमस्कार।
1: नमस्कार झुनी बहन, सब श्रोता भाई बहन लोगन के भी रजू भाई के तरफ से नमस्कार। आ देखी एक कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही संतोष कुमार। तो अब स्टूडियो के घड़ी और कुछ इजाजत नहीं दे
0: अपन मोटरी गठरी समेटल जाओ।

अभी हमारे किसान भाई अपना प्रसारण सुन रहे थे, किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। सांझ गीत के अंतर्गत लीजिए सुनिए कुछ भोजपुरी फिल्म संगीत।

अभी आपने दंगल फिल्म का गीत सुना, आशा भोसले की आवाज़ में। कुलवंत जानी के लिखे गीत की संगीत रचना की थी नदीम श्रवण ने। अब आइए सुनते हैं मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में एस के चौहान का लिखा और आरपी ठाकुर का स्वरबद्ध किया गीत। फिल्म है आपन माटी आपन देश।

0: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देही ओके बुलंदियन के पांख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
0: ता बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत।

अभी आप कल्पना और साथियों की आवाज़ों में ये नगमा सुन रहे थे। फिल्म थी चलत मुसाफिर मोहलियोरे। आइए सुनते हैं मोहम्मद अजीज़ के साथ नंदिता को। सुधाकर शर्मा के लिखे गीत की तर्ज बनाई है राजन गुरुजी ने। फिल्म है पीरितिया तुहार।

तो श्रोताओं, अभी आपने सांझ गीत कार्यक्रम में प्रीतिया त्योहार फिल्म का गीत सुना। गायक कलाकार थे मोहम्मद अजीज और नंदिता। सुधाकर शर्मा के लिखे गीत की तर्ज बनाई थी राजन गुरुजी ने। और इन्हीं गीतों के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चतुर्वेदी का सादर नमस्कार। श्रोताओं, नीट परीक्षार्थियों के लिए बिहार सरकार की विशेष पहल, 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए राज्य भर की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। यह पहल विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन सुनिश्चित करने हेतु की गई है। 21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की तैयारियों का शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम वन ने सासाराम में विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परीक्षा संबंधी सभी तैयारियों का गहन जायजा लिया और केंद्राधीक्षकों एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, CCTV कैमरों की कार्यशीलता, बैठने की व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का विस्तार से निरीक्षण किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो तथा अभ्यर्थियों को अनुकूल एवं शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही परीक्षा पूर्व

होने वाली बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा के निष्पक्ष संचालन के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाओं एवं सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया कि परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। दिनांक 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के सफल एवं कदाचार मुक्त संचालन तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु आज जिला पदाधिकारी रोहतास एवं पुलिस अधीक्षक रोहतास के द्वारा संयुक्त रूप से समाहरणालय परिसर स्थित DRDA सभागार में ब्रीफिंग की गई। सभी संबंधित पदाधिकारियों को अभ्यर्थियों की हर सुविधा का ख्याल रखने एवं उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन, सुचारू यातायात संचालन तथा सुदृढ़ विधि व्यवस्था संधारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इस परीक्षा में सभी पदाधिकारियों को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के बारे में बारीकी से अवगत कराया गया तथा उन्हें अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस परीक्षा के सफल संचालन हेतु कई बार उच्च स्तरीय समीक्षा हो चुकी है। उच्चतम स्तर से अधिकारियों तैयारियों का सतत अनुश्रवण किया जा रहा है। इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षा को लेकर रोहतास जिले के सासाराम में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें श्रीशंकर उच्च महाविद्यालय माध्यमिक विद्यालय, SP जैन कॉलेज, रोहतास महिला कॉलेज, शेरशाह सूरी इंटर कॉलेज, शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज, श्रीशंकर कॉलेज, शेरशाह कॉलेज शामिल हैं, जहां 3598 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुन लेते हैं एक नगमा।

0: श्रोताओं, रोहतास जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला प्रशासन रोहतास ने आम जनों से अपील करते हुए कहा है कि गर्म हवाओं एवं लू के प्रभाव से बचने के लिए सभी नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रशासन द्वारा लोगों को सतर्क रहने तथा आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है, ताकि लू एवं अत्यधिक गर्मी के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए विशेष रूप से बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं एवं बीमार व्यक्तियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। गर्मी के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें तथा शरीर में पानी की कमी न होने दें। हल्के रंग के ढीले ढाले एवं सूती वस्त्र पहने, भोजन में हल्का एवं पौष्टिक आहार लें तथा तरबूज, खरबूजा सहित पानी युक्त फलों का सेवन करें। इसके अलावा सत्तू, पुदीना, सौंफ एवं खस जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों को भी दैनिक आहार में शामिल करने की सलाह दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आना, अत्यधिक कमजोरी, सिर दर्द या तबीयत खराब होने जैसी समस्या महसूस हो तो तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लें। प्रशासन द्वारा बताया गया है कि लू लगने के प्रमुख लक्षणों में चक्कर आना, घबराहट होना, दिल की धड़कन तेज होना, अत्यधिक पसीना आना, सिर दर्द, बेहोशी, तेज बुखार, शरीर की त्वचा का अत्यधिक गर्म हो जाना एवं जी मिचलाना इत्यादि शामिल है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए तथा तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। बच्चों एवं पालतू जानवरों को बंद वाहनों में अकेला नहीं छोड़ने, घर एवं कार्यस्थल को यथासंभव ठंडा रखने तथा बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखने की भी सलाह दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। किसी भी आपात स्थिति में लोग सहायता हेतु टॉल फ्री नंबर 101 एवं 112 पर संपर्क किया जा सकता है। वही समाहरणालय रोहतास में स्थापित कंट्रोल रूम के नंबर 06184226072 एवं 06184226093 पर भी सहायता के लिए संपर्क करने की अपील की गई है।
1: हमसे क्या पड़ता है जब आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, हाँ कोई माने।
0: तो श्रोताओं, इसी के साथ ही गुड इवनिंग रोहतास से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा, नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार एवं जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 73 लाख किसानों समेत देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि अंतरित की। प्रदेश भर के 331 केंद्रों पर कल नीट यूजी पुनर्परीक्षा का होगा आयोजन। एनटीए के निर्देश पर आज सभी केंद्रों पर हुआ मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर के शाहपुर में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। और 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी। श्रद्धा पांडे बनी टॉपर, शशांक गौरव को दूसरा स्थान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि जारी की। पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में योजना की राशि अंतरित की गई है। इस अवसर पर पटना के बामेती सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह अभ्यास किया गया। इस दौरान पटना में बापू परीक्षा भवन समेत राज्य के प्रमुख केंद्रों पर परीक्षा के आयोजन की तैयारियों को परखा गया। इसे लेकर यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया। नीट पुनर्परीक्षा के लिए राज्य के 34 जिलों में 331 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 1,56,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इधर राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राज्य

0: सरकार की ओर से परिवहन विभाग विशेष बसों का परिचालन करेगा, साथ ही रेलवे की ओर से नीट परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। नीट यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर पटना में कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन के आसपास विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। कई मार्गों पर वन वे ट्रैफिक लागू रहेगा। ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर डायवर्जन भी लागू किया जाएगा।
1: जो बापू परीक्षा सेंटर खास करके है, जहां पर जाम की समस्या प्राय हो जाती है, उसके मद्देनजर हम लोग कल ट्रैफिक की व्यवस्था में कुछ डायवर्जन प्लान बनाए हैं। जो धनकी के तरफ से चाहे जो पहाड़ी के तरफ से जितने पिकअप हैं, टेम्पो हैं, ई रिक्शा हैं, 8 बजे के बाद हम उसको डाइवर्ट किए हैं। अगर उनको टाउन में आना ही है तो बिस्कुमान ऊपर है, बिस्कुमान से होके जो कुम्हरार वाला पुल है उससे फिर जा सकते हैं टाउन में। जो भी बस धनकी पर आएंगे, जो गांधी सेतु की तरफ से आते हैं, चाहे जो पूर्वी दिशा से टोल प्लाजा की ओर से आते हैं, न्यू बाईपास होकर, मीठापुर होकर, गांधी मैदान, चाहे कहीं भी अन्यत्र जाना है तो जाएंगे। धनकी से या बिस्कुमान से कोई भी बस नीचे, चाहे कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी, जब तक एग्जाम होगा उस पीरियड में जाने की अनुमति नहीं होगी।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि इस मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि पिछले दिनों भोजपुर जिले के शाहपुर में भरत तिवारी नाम के एक व्यक्ति की कथित पुलिस मुठभेड़ के बाद मौत हो गई थी। पुलिस ने अपने बयान में मृतक युवक के आपराधिक घटनाओं में शामिल होने की बात कही थी, जिससे आक्रोशित मृतक के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 2027 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने आज परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बताया कि 593 अंक प्राप्त कर श्रद्धा पांडे टॉपर बनी हैं, वहीं 592 अंकों के साथ शशांक गौरव सेकंड टॉपर बने हैं, जबकि आयुष विजय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2024 में आयोजित 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के पीटी में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जनता दल यूनाइटेड की राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की बैठक कल पटना में आयोजित की जाएगी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि बैठक में जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में मंत्री, सभी सांसद, विधायक और एमएलसी मौजूद रहेंगे।
2: यहाँ जो है बिहार प्रदेश जनता दल कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद का, राज्य परिषद का बैठक होने जा रही है, उसको लेकर हम लोग काफी उत्साहित, सब हमारे पार्टी के जो भी प्रदेश के स्तर के जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, सब उत्साहित है। बिहार में पहली बार जो है, पहली बार इसके पहले भी हुआ है, लेकिन बिहार में जो है राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। परिषद के सभी डेलीगेट सभी प्रदेश से आ रहे हैं, उनको यहाँ गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज पार्टी पदाधिकारियों की सूची जारी की। नई कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 5 महासचिव और 6 सचिव बनाए गए हैं। मधुबनी से विधायक माधव आनंद को एक बार फिर प्रधान महासचिव बनाया गया है। अरविंद वाजपेयी को राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि नई टीम सामाजिक न्याय, सुशासन और विकास के एजेंडे को संकल्प के साथ आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल में अपने विभाग से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए 3 मंत्रियों को अधिकृत किया है। इनमें उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा नीतीश मिश्रा के नाम शामिल हैं। श्री चौधरी ने गृह विभाग के सवालों का जवाब देने के लिए विजय कुमार चौधरी को, कार्मिक विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय और सिविल विमानन विभाग से संबंधित सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को दी है। वहीं निगरानी विभाग और निर्वाचन विभाग से जुड़े सवाल, ध्यानाकर्षण सूचनाओं का जवाब नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा देंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें।

0: ani sunayega digital.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। यह विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होकर नेतृत्व प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हुगली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वे स्वयं बंगाल में योग दिवस का हिस्सा बनेंगे।
3: कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा।
0: इधर प्रदेश भर में कई स्थानों पर योग शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। विभिन्न योग संस्थानों, सार्वजनिक और निजी संस्थानों, सभी सरकारी और निजी स्कूलों समेत विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया जाएगा। राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में आंधी बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। विभाग ने नवादा और पश्चिम चंपारण जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
4: राज्य के पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर, जबकि शेष भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के मध्य एवं पश्चिमी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के नवादा एवं पश्चिम चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भभुआ, भोजपुर और बक्सर जिले में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

0: जिले के कवैया थाना क्षेत्र अंतर्गत संसार पोखर के पास खुदाई में मिली काले पत्थर की दुर्लभ प्रतिमा को संग्रहालय में स्थानांतरित किया गया है। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सह सहायक संग्रहालय अध्यक्ष मृणाल रंजन को आज प्रतिमा सौंप दी गई। 2 फीट ऊंची अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ प्रतिमा 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच पाल काल से जुड़ी मानी जाती है। राज्य सरकार ने क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप को पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 157 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय जिले की पुलिस ने एफसीआई थाना क्षेत्र से छिनतई मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले की एक स्थानीय अदालत ने अपनी मां की हत्या के मामले में दोषी पुत्र लाल बाबू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 22,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। 18 अगस्त 2024 को हरलाखी थाना क्षेत्र में इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया गया था। सीवान के प्रसिद्ध व्यवसायी सुनील कुमार श्रीवास्तव ब्लड डोनर क्लब के संरक्षक बने हैं। श्री श्रीवास्तव को दधीची देहदान समिति की जिला इकाई का भी संरक्षक मनोनीत किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 73 लाख किसान समेत देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि अंतरित की। प्रदेश भर के 331 केंद्रों पर कल नीट यूजी पुनर्परीक्षा का होगा आयोजन। एनटीए के निर्देश पर आज सभी केंद्रों पर हुआ मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर के शाहपुर में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। और 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी। श्रद्धा पांडे बनी टॉपर, शशांक गौरव को दूसरा स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90.
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्णिया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता होमी चंदन।
2: जिले में कल 12 परीक्षा केंद्रों पर नीट पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के प्रवेश का अंतिम समय अपराह्न 1:30 बजे तक निर्धारित है। NTA के निर्देश पर आज विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला अधिकारी अंशुल कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में नीट पुनर्परीक्षा 2026 से संबंधित केंद्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी, जोन दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा के आयोजन को लेकर आवश्यक निर्देश दिया। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुभवी पदाधिकारियों को सभी परीक्षा केंद्रों पर सशस्त्र बल के साथ स्टैटिक दंडाधिकारी सह परीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों को जोनल दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। जिला पदाधिकारी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV और वीडियोग्राफी के द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी। वही

0: सभी केंद्रों पर बायोमेट्रिक व जैमर का इंतजाम भी किया गया है। जिला साइबर सेल भी सोशल मीडिया पर लगातार कड़ी नजर रख रही है। केंद्रीय पंचायती राज मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने जिले के सहारा वृद्धाश्रम का विशेष निरीक्षण किया और संवाददाता कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने आवासीय कक्ष, भोजनालय, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र एवं मनोरंजन कक्ष समेत वृद्धा आश्रम के विभिन्न भागों का अवलोकन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सभी वृद्ध जनों को सम्मान स्वरूप शॉल भेंट किया और उन्हें फल एवं अन्य खाद्य सामग्री के पैकेट प्रदान किए। श्री सिंह ने कहा कि वृद्धजन समाज की अमूल धरोहर है और उनकी सेवा करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। इस अवसर पर राज्य सरकार की मंत्री लेसी सिंह, कस्बा विधायक नीतीश कुमार सिंह, वरिष्ठ पदाधिकारी समेत गणमान्य लोग मौजूद थे। आपदा प्रबंधन मंत्री सह पूर्णिया जिला के प्रभारी मंत्री रत्नेश सदा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संभावित बाढ़ सुखाड़ की पूर्व तैयारी, जल जीवन हरियाली और 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और सभी सातों विधानसभा क्षेत्र के विधायक उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने आपदा में मृत लोगों के परिजनों को चेक प्रदान किया। उन्होंने दिव्यांग लोगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया। श्री सदा ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को जिले में सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया है। कृषि विभाग एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण पूर्णिया की ओर से एक दिवसीय जिला स्तरीय शारदीय महाअभियान सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि हितकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान कर उन्हें लाभान्वित करना है और खरीफ मौसम में नवीन कृषि तकनीकों एवं नवाचारों को बढ़ावा देना है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने किसानों से कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी खेती बचाओ अभियान से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान सॉयल हेल्थ कार्ड के अनुशंसा के अनुरूप उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर अधिक लाभ ले सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रखंडों में 10 जून से 22 जून तक प्रखंड स्तरीय शारदीय महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 11 जून से 30 जून तक कृषि जन कल्याण चौपाल सह खेत बचाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 9 जून को जिला अस्पताल से लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित शिविर में गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच किया गया। लाभार्थियों को चिकित्सकीय सहायता भी दी गई। इसे लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार कनौजिया ने बताया कि 2016 में शुरू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध प्रसवपूर्ण जांच सेवाएं उपलब्ध कराया जाता है। पूर्णिया जिले में लगातार आंधी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश और तेज आंधी से कई स्थानों पर बड़े पेड़, घर और बिजली के खंभों को नुकसान हुआ है।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्णिया जिले की हलचल। पूर्णिया जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता होमी चंदन।
2: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मन पसंद

0: हेलो मन पसंद, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फॉरेन फार्मेसी कार्यक्रम में। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। नमस्कार श्रोताओं, फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई है, देखते हैं यह पहला कॉल किनका है। हेलो मन पसंद, बोल रहे हैं?
1: पसंद सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर खुरमाबाद से बोल रहे हैं।
0: खुरमाबाद से कौन सा बोल रहे हैं?
1: भारत चौरसिया बोल रहे हैं।
0: क्या करते हैं?
1: देर से फोन लगा सर, बहुत लगाते लगाते परेशान है, कौन हफ्ता से लगा रहे हैं, चिट्ठी बहुत सुनते हैं, इसलिए सुन के आए। फोनिंग फरमाइश में लगा दे, कॉल बार लगाए लेकिन नहीं लगा, आज लग गया।
0: भाग्यशाली है कि आज लग

0: तो भरत जी क्या करते हैं?
1: अंडा दुकान है, दोबारा पर अंडा दुकान खोलते हैं, छोटा मोटा दुकान है।
0: अच्छी बात है, कोई भी काम धंधा करना चाहिए। आकाशवाणी के और कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं? उसको सुनते हैं?
1: कार्यक्रम सब सुनते हैं, 7-10 बजे भोजपुरी कार्यक्रम सुनते हैं, शाम को सुनते हैं, ये मन पसंद है। आपको कार्यक्रम का पूरा नियमित सोता हूँ सर, पुराना हूँ, 15-20 साल से रेडियो सुनता हूँ। दुकान
0: मैंने दुकान पे रेडियो बजते रहता है।
1: पर तो रेडियो सब बताता है कि आपके पास रेडियो देखने को मिलता है, ना तो कहीं नहीं मिलता है, कि रेडियो का माहिर है। अच्छा,
0: जी बहुत धन्यवाद। क्या सुनना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम में?
1: घर परिवार से नाम लेना चाहते हैं।
0: हाँ लीजिए।
1: रामजी चौरसिया, भरत चौरसिया, प्रियंका कुमारी, भरत प्रसाद चौरसिया।
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर लैला मजनू सुनवा दीजिए ना,
0: कौन सा गाना?
1: कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को।
0: अपने परिवार के साथ सुनिए लैला मजनू फिल्म का यही गाना।

0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का शेष नगमा आप सुनेंगे 8:15 से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान उड़ान उड़ान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबों के बीच आ गया। अति उत्साहित हूँ, हाँ, क्योंकि पिछले सप्ताह जो कार्यक्रम बजा था उसमें ढेर सारे फोन कॉल इस बार आए हैं। उसको सुनने के बाद क्या बक्सर, क्या भागलपुर, क्या बेतिया और क्या कटिहार, क्या आरा, पटना, छपरा, सिवान, हर जगह से हाँ फोन कॉल आए और उन्होंने कहा कि इंतजार था आपके इस कार्यक्रम का। जब आपका कार्यक्रम सुनते थे तो उस वक्त हमने इंटरमीडिएट नहीं किया था और आज आपने आकर हमें फिर से मार्गदर्शन किया। एक ही बात कहना चाहता हूँ पूरे बिहार वालों कि भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। अगर टेक्निकल पढ़ाई किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपने कर लिया, हाँ, जिसमें कि BCA और BBA, कंप्यूटर से और मैनेजमेंट से BCA और BBA की पढ़ाई जो आपने कर ली, तो रास्ता सहल हो जाता है। और अच्छा संस्थान इसलिए कहा कि वैसा संस्थान जिसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टीचर अच्छे हो, जॉब प्लेसमेंट अच्छा हो, किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो। तो आपको जैसा कि हम हमेशा बताते रहे कि आर्केड बिजनेस कॉलेज आर्य कुमार रोड, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना में जो संस्थान है जिसके तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है और 27 वर्षों से ध्यान से सुनिए, आप युवाओं के साथ इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। सगुना मोड़ हो या राजेंद्र नगर आर्य कुमार रोड, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना विहंगम कंप्यूटर लैब और बहुत ही उत्तम शिक्षक की व्यवस्था है। और जो डायरेक्टर हैं, हाँ, आशीष आदर्श जी, हमेशा उनसे आप मिल सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम नंबर बता रहे हैं, अगर BCA और BBA करना होना तो कम से कम आर्केड बिजनेस कॉलेज में एक बार फोन जरूर कर लीजिएगा। नंबर है 7520800800। अगर ऐसे कहें 7520800800, वाह वाह क्या बात है, 7520800800, ये याद हो गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से बताते हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का ये एकमात्र संस्थान है जिसे BCA और BBA के लिए स्थायी मान्यता दी गई है।
3: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
4: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
3: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
4: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
3: फिर तो आर्केड से ही BCA या BBA करना सेफ है।
5: आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना।

0: पटना। कॉल करें 7520-800-800। याद रखें 7520-800-800।
1: और अब बुलाते हैं आशीष आदर्श जी से और थोड़ा बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं। पीसीएम जो करते हैं ना, खास करके लड़के, उनकी पहली इच्छा होती है कि हम इंजीनियरिंग करें। लेकिन आज सवाल पूछते हैं आशीष जी से कि उनके लिए क्या बेहतर होगा। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप हमें बताइए, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किए हुए युवा साथियों के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है इंजीनियरिंग के अलावा? क्योंकि पीसीएम से पढ़ने वाले बच्चे जो है ना, युवा जो है ना, वो सोचते हैं कि 4 साल में हम इंजीनियरिंग कर लेंगे और उसके बाद हमको नौकरी मिल जाएगी। उनके माता पिता भी यही सोचते हैं और आगे क्या होता है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और उनको भी पता चलता है। तो क्या इंजीनियरिंग के अलावा भी पीसीएम के युवा साथियों के लिए बीसीए, बीबीए या इस तरीके के कोई और कोर्सेज हैं, या आपका एक्सपीरियंस यानी 27 वर्षों का अनुभव क्या कहता है?
2: देखिए, ऐसा है कि अगर आप एक डेटा, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर, आज के डेट में एक डेटा कहीं मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि आज हमारे देश में जो इंजीनियर्स की जो संख्या, इंजीनियर्स की जो संख्या है वो लगभग 14 लाख के आसपास में है। मैं ये 14 लाख उनको बोल रहा हूँ जिनके पास बीटेक की डिग्री है। इस 14 लाख में से मात्र 4 लाख के पास जॉब है, मात्र 4 लाख के पास। उसके अतिरिक्त 3 लाख ऐसे हैं जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग छोड़ दिया, उसके बाद वो कहीं बैंक में काम कर रहे हैं या कोई इंश्योरेंस बेच रहा है कहीं, या किसी ने बिजनेस कर लिया। और बाकी 7 लाख लोग निकल गया, बाकी 7 लाख आज भी रोड पर जॉब के लिए ढूंढ रहे, घूम फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो टहल रहे हैं, उतना पैसा लगा करके, इतना समय लगा करके। मेरा यही कहना है, यदि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर आपका मजबूत नहीं है तो केवल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए इंजीनियरिंग मत कीजिए। उसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि आपकी आपका जो टैलेंट है वो एवरेज है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स मैं बताता हूँ, जिस कोर्स को आप ज़रूर करिए और आप देखिए उसका कितना फ़ायदा आपको मिलता है। उस कोर्स का नाम है BCA, बैचलर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। 3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स करने के बाद आप 2 साल आप MCA कहीं से कर लीजिए, फिर आपको देखिए कितने सारे एवेन्यूज। MCA करने के बाद में बैंक से लेकर के इवन के जो IT कंपनी से लेकर के जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आप TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का या विप्रो का विज्ञापन उठा करके देखिए, उसमें लिखा रहता है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन MCA। वो MCA आप कीजिए BCA करने के बाद में, या BCA करने के बाद भी इवन बहुत सारी IT कंपनीज वो आपको एंट्री लेवल जॉब के लिए आपको अब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि BCA एक अच्छा कोर्स है, इस कोर्स को आप करिए और करने के बाद आपको लगेगा आगे चल करके कि हमने इंजीनियरिंग से बेहतर किया। हाँ, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मजबूत है, एकदम आप उसमें टॉपर्स में हैं, तो फिर आपको जरूर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मैं देख रहा हूँ कि बेरोजगार इंजीनियरों की भीड़, बीटेक स्टूडेंट्स की भीड़, तो मुझे लगता है आप कंपेयर कर दीजिए दोनों को, BCA करने के बाद स्टूडेंट्स की भीड़ जो बेरोजगारों की भीड़, और इंजीनियरिंग करने के बाद बेरोजगारों की भीड़। आपको ये लगेगा कि इंजीनियरिंग में बेरोजगारों की भीड़ ज़्यादा है और BCA करने के बाद कम है। तो मेरा समझना यही है कि आप BCA करिए और उसका आप लाभ लीजिए, आगे चल के MCA कीजिए, बाकी सब मतलब बहुत अच्छा होगा।
1: क्या बात है आशीष जी, आपसे बात करना हमेशा एक नया अनुभव होता है। डाटा जो है ना, आंकड़े आपके जुबान पर रहते हैं। 27 वर्षों का आपका अनुभव और 27 वर्षों का आर्केड बिजनेस कॉलेज का अनुभव निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक नया रास्ता खोलता है। यदि आप PCM किए हैं, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ आपने किया है इंटरमीडिएट, तो BCA और BBA कीजिए और एक बार जरूर नॉक कीजिएगा आर्केड बिजनेस कॉलेज को, क्योंकि 27 वर्षों का अनुभव है। आशीष जी खुद एक करियर काउंसलर हैं, हम नंबर बता रहे हैं वही एकदम रिदम में 7520-800-800, यानी 7520-800-800। और ये उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करते हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज वाले, समाज में युवाओं को अवेयर करना चाहते हैं। चलिए वापस चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी, आपने PCM वालों को तो बता दिया, आर्ट्स वाले जो युवा साथी हैं हमारे जिन्होंने कला क्षेत्र से इंटरमीडिएट किया है, उनके लिए भी अगर थोड़ा मार्गदर्शन कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।
2: देखिए, आर्ट से जिसने किया है, वैसे तो देखिए अभी कई विश्वविद्यालय BCA के कोर्स के लिए मैथमेटिक्स जरूरी मांगती है 10+2 में, लेकिन कईयों ने रिलैक्स भी कर दिया है। लेकिन मेरा समझना यही है कि यदि आपने आर्ट से अगर 10 प्लस

0: किया है तो फिर बीबीए कोर्स बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स बहुत बेहतर हो। तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी ऐसे फील्ड की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर आपका निश्चित जॉब मिले। वैसे स्थिति में बीबीए कीजिए बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद अगर आपने किसी अच्छी जगह से एमबीए कर लिया तो फिर पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सेम मैसेज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी देना चाहूंगा जिन्होंने 10+2 कॉमर्स के साथ किया है, क्योंकि कॉमर्स के बहुत सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जो पेपर्स उनको बीबीए में फिर से दोबारा पढ़ने पड़ते हैं, तो उनको बहुत सुविधा होगी। कॉमर्स करने के बाद अगर आप बीबीए करते हैं उसके बाद एमबीए करते हैं तो आपको फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: तो आर्ट्स और कॉमर्स वालों, आपके लिए भी आशीष जी ने दो बातें कही है, उस पर सोच विचार करना अब आपकी जिम्मेदारी है। हम तो कहेंगे बीसीए और बीबीए बहुत ही वाइब्रेंट है और इसको हमने देखा है, हमने देखा, एक लंबा अनुभव है हमारे पास भी, कि जो युवा बीसीए और बीबीए किए किसी अच्छे संस्थान से लाइक आर्किट बिजनेस कॉलेज और इस तरीके से, तो उनका करियर बहुत आगे गया है, उड़ान चल रहा है। उड़ान कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, करियर गाइडलाइन है ये, है ना, और खास करके टेक्निकल पढ़ाई पर एम्फेसाइज करता हूँ जिससे कि कल को बेरोजगारी नहीं हो, आपको रोजगार मिल जाए। एंड ऑफ द डे अंत में तो एक ही मोटो होता है, अच्छा पैसा कमाना, और अच्छा पैसा तभी मिलेगा जब अच्छा रोजगार या नौकरी होगी, और अच्छी नौकरी तभी होगी जब किसी अच्छे संस्थान से आपने टेक्निकल पढ़ाई की होगी जिसमें बीसीए और बीबीए बहुत ही अव्वल है। हम एक बार आर्किट बिजनेस कॉलेज का नंबर बता रहे हैं, वही 7520800800 7520800 पूरे बिहार में हम ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, आकाशवाणी के 6 केंद्र से इसका प्रसारण हो रहा है। हम नहीं चाहते कि कोई भी युवा छूट जाए और कल को कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था, तब हम कैसे अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। इसीलिए आप भी फोन कीजिए दिए गए नंबर पर, एडमिशन लेना हो ना लेना हो जानकारियां लेना ही चाहिए। जी हाँ, और अब आशीष जी एक बात बताइए, अगर बीसीए और बीबीए में से किसी एक कोर्स को चुनना होगा तो युवा किसको चुने?
0: देखिए, मैं यही कहूंगा कि अगर आपका 10+2 में पीसीएम रहा है और मैथमेटिक्स अगर आपका ठीक है, अच्छा है, तो फिर आपको बीसीए करना चाहिए। और अगर आपका ठीक है, आपने पीसीएम भी कर लिया है उसके बाद भी, लेकिन मैथमेटिक्स भी एवरेज है, तो आप बीबीए चुन सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एमसीए बीसीए और एमसीए करने के बाद एक आप प्रोग्रामर बनते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो आदमी जिसका मैथमेटिक्स और फिजिक्स जितना बेहतर होता है वो उतना ही अच्छी एनालिसिस कर सकता है, और एनालिसिस अगर आपकी जो जो आपकी स्किल अगर है तो आप उतने अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो मेरा समझना यही है कि कुल मिलाकर के अगर आपका आपको खुद आकलन करना है, अब मार्क्स के हिसाब से मैं चलिए बोल देता हूँ, अगर आपको पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अगर आपको 70% से ज़्यादा मार्क्स है या 60% से भी ज़्यादा मार्क्स है तो आप बीसीए ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे कम है, 60-70% से कम अगर है, तो फिर आपको बीबीए की तरफ जाना चाहिए। और वैसे ही आर्ट्स के स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी यही थ्योरी में कहूँगा कि अगर आपको आपके अपने सब्जेक्ट में, अगर मान लीजिए कॉमर्स को, तो मैं बोलूँगा कि वो बीसीए की तरफ ना जाएं, बेहतर है वो बीबीए ही लें, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनका कॉमर्स का एक बैकग्राउंड रहा है और आगे चल करके उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनको पढ़ने में सुविधा होगी बीबीए कोर्स में, और फिर आगे एमबीए में भी वही सारी चीज़ें विस्तार से पढ़ना होगा उनको।
1: एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल है आशीष जी आपसे, आपका अनुभव है, आप बता पाएंगे कि जो बच्चे बीसीए और बीबीए करके आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या रोजगार मिल जाएगा, कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो?
0: देखिए, आप आर्किट बिजनेस कॉलेज में आइए अगर आप ऐसा समझते हो, बेहतर समझते हो तो, और फिर आप केवल अपना समय दीजिए हमें, आपको प्रॉपर आप क्लासेस करिए, आप प्रॉपर जो भी जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं, जो भी अभी मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, उन सबों को अटेंड कीजिए। आपको हम आर्किट बिजनेस कॉलेज में वो चीज़ देते हैं जो नॉर्थ इंडिया में कोई दूसरा नहीं देता। कारण क्या है कि जितने बड़े बड़े जो वर्कशॉप्स होते हैं यहाँ पे, अब जैसे कि अवध ओझा आते हैं, सोनू शर्मा आते हैं, चेतन भगत आते हैं, सारे के सारे, इन सबों के वर्कशॉप को अगर आप दिल्ली जाकर के अगर अटेंड करेंगे तो एक एक वर्कशॉप का 10-10, 15-15 हज़ार रुपये उसका शुल्क है, जो सब कुछ हम यहाँ पे फ्री आपको देते हैं। मनोज वाजपेयी ये भी बीच में आए थे, उनका सेशन हुआ, फिर अभी बहुत सारे जितने भी सेशन आप गौड़ गोपाल दास आए, मतलब जो भी इंडिया के जो टॉप जो इंस्टीट्यूशन जो मोटिवेटर्स हैं वो सारे हमारे यहाँ आते हैं बच्चों को कुछ सीख देने के लिए। डॉक्टर किरण बेदी कई बार आ चुकी हैं। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि आप ज़रूर आइए और आकर के यहाँ पे जो भी जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं सबको आप अटेंड कीजिए, और आप खुद देखिए कि आप किस प्रकार बन

0: करके 3 साल के बाद यहाँ से निकलते हैं।
1: आशीष जी, पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहते हैं बताइए, माता पिता का क्या रोल होना चाहिए?
0: देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि जो पेरेंट्स से बेहतर करियर काउंसलर्स और कोई नहीं होते बच्चों के, क्योंकि वो अपने बच्चों की सारी लिमिटेशंस को जानते हैं कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं। मैं समझता हूँ कि उनको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और अपने बच्चे को वही ऑप्शन सेलेक्ट करने की छूट देनी चाहिए जो करना चाहता है। देखिए, हमेशा मान के चलिए कि एक थर्ड क्लास इंजीनियर से एक फर्स्ट क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा ज़्यादा बेहतर है। तो जो उसका फील्ड में जिसमें वो जाना चाहता है उसमें ज़रूर जाए और उसके लिए पूरा जो पेरेंट्स का सपोर्ट उसको होना चाहिए।
1: आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। बने रहिए, अगले एपिसोड में आपसे आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल आशीष जी चले गए, आपको बताएं। वैसे युवा साथियों, अगर आपके मन में झिझक है कि मैं गांव का रहने वाला हूं, कैसे क्या कर पाऊंगा, तो आपके लिए बताएं, आर्किड बिजनेस कॉलेज में अलग से क्लासेस यहां लिए जाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। क्रेडिट कार्ड से यानी पैसे की समस्या है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो संस्थान है ना, आर्किड बिजनेस कॉलेज, जिसकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं उड़ान, ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है।
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्किड से ही BCA या BBA करना सेफ है।
4: आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड, पटना। कॉल करें 7520800800। याद रखें 7520800800।
1: तो बस आज के लिए, चलने से पहले नंबर है 7520800800, 7520800800, जरूर डायल करें BCA और BBA के लिए आर्किड बिजनेस कॉलेज को। नमस्कार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
6: उड़ान, अभी आप सुन रहे थे यह प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है हेलो मनपसंद कार्यक्रम के शेष नगमे।
7: हेलो मनपसंद।
8: नमस्कार सर।
7: नमस्कार।
8: प्रेश गगनेजा जलालाबाद वेस्ट पंजाब से जी।
7: जलालाबाद वेस्ट से गगनेजा जी बोल रहे हैं
8: जी? बिल्कुल ठीक हुआ है। आप बताएं, आप कैसे हैं जी?
7: हम बहुत बढ़िया हैं।
8: कौन सर बोल रहे हैं जी?
7: मेरा नाम लाल बहादुर सिंह हुआ।
8: अरे वाह वाह, क्या बात है जी, आपकी मीठी आवाज में हम मेल वाला प्रोग्राम सुनते हैं जी।
7: हाँ, आप मेल तो आता है ये मनपसंद कार्यक्रम में
8: जी। बिल्कुल बिल्कुल जी।
7: चलिए अग्निजा जी, और क्या करते हैं
8: जी? खेती बाड़ी का काम जी।
7: खेती बाड़ी बहुत अच्छी बात है, भारत तो कृषि प्रधान देश है ही। किस चीज की खेती बाड़ी लगी हुई है आजकल?
8: अभी धान की पनीरी की बिजाई की हुई है जी, और अभी एक हफ्ते में ना उसकी अब रोपाई शुरू हो जाएगी।
7: हाँ हाँ हाँ, चलिए, धान की खेती होती है
8: जी, और गेहूँ की, धान की और गेहूँ।
7: हाँ ठीक है, अच्छी बात है। आज क्या सुनना चाहते हैं?
8: आज सुना रहे जी, फिल्म है पगला कहीं का और गीत है जी तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, रफी साहब की आवाज में सुनाइएगा।
7: जरूर, हम आपको नहीं भुला पाएंगे। तो चलिए, हम आपकी पसंद पर पेश कर रहे हैं यही गीत।

0: हेलो मनपसंद,
1: सबसे पहले आपको तमाम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार सर।
0: आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे, खंडिया ग्रेट कॉलोनी जिला चाकू वाले रामपुर उत्तर प्रदेश से।
0: क्या करते हैं अमरजीत जी?
1: मैं सर अपना हैंडवर्क का जरी का काम करता हूँ। सूट होता जो है, जो मोती होते हैं, सितारे होते हैं, रेशम होता है, कसब होता है, दबका होता है, कटदाना होता है, तमाम प्रकार का मटेरियल होता है और हम उस पर सूटों पर कढ़ाई करते हैं, लहंगों पर, साड़ियों पर।
0: तो काम धंधा ठीक चल रहा है?
1: काम धंधा एकदम अच्छा है सर, आपके प्रोग्राम सुनते रहते हैं, काफी अच्छे प्रोग्राम रखते हैं आपके यहाँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कौन कौन से और कार्यक्रम सुनते हैं?
1: किसान भाइयों का प्रोग्राम रहता है सर, वो सुनता हूँ मैं। जो बच्चों का प्रोग्राम रहते हैं सर, वो सुनता हूँ। और जैसे कि ये फोन इन फरमाइश वाला प्रोग्राम तो मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें चंद सुनने वाले साथी लोग आपसे फोन कॉल के जरिए मुखातिब होते हैं प्रोग्राम में, तो उनकी पसंद को आप लोग पूरा करते हैं, तो काफी अच्छा लगता है सर।
0: कौन सा गीत सुनवार?
1: फिल्म का नाम रहेगा जान, और इसमें गीत के बोलेंगे, बेईमान प्यारे, छोटी सी उम्र में बड़ा दर्द दिया रे, इसका इलाज नहीं कोई, और अब मुझे रोग तो लगा, ये गीत लगा देना सर।
0: अमरजीत जी, हम आपको सुना रहे हैं आप ही के पसंद पर ये गीत।

0: हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद, नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: आलमगंज
0: आलमगंज से शहजादी खातून जी बोल रही हैं। आलमगंज सासाराम से। शहजादी जी क्या करती हैं? ओ, गृहिणी हैं। हाँ, रेडियो सुनने का शौक रखती हैं। देश भर से हमारे श्रोता कॉल करते हैं। चलिए, आपका कॉल लग गया, आप भाग्यशाली हैं। शहजादी जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: नए साल का मुबारक हो हम लोगों का। तो
0: हमारे तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक।
1: गाना सुनना है, अच्छा गाना उर्दू।
0: तो ठीक है, हम आपके लिए पेश कर रहे हैं ये गीत।

0: हेलो मनपसंद।
1: हेलो सर।
0: हाँ कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी सर, हम मझियाओं से बोल रहे हैं।
0: हाँ माझियाओ से कौन सा बोल रहे हैं?
1: जी संजय कुमार सिंह, संजय जी।
0: हाँ संजय कुमार सिंह जी, क्या करते हैं,
1: खेती करते हैं
0: किस
1: सर।
0: चीज़ की खेती हो रही है अभी?
1: अभी तो सर बीज डलाया है धान वाला।
0: अच्छा धान का सीजन तो बिचड़ा पड़ रहा है,
1: जी
0: अच्छी बात है। आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर, गाना सुना दीजिए, वही नदिया के पार साथी कहे तो यावन से हमरे।

0: हेलो मनपसंद।
1: नमस्कार। मनपसंद कार्यक्रम मध्य
0: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं,
1: मंदसौर जिले के नाटाराम से बोल रहा हूँ। मैं दशरथ सेन,
0: क्या करते हैं दशरथ जी?
1: हेयर कट की दुकान है। काम
0: जी अच्छी बात है।
1: करते करते आकाशवाणी भी हम सुनते हैं।
0: चलिए, आज तो तरह तरह के हेयर स्टाइल्स चल रहे हैं,
1: या
0: खासकर नव युवकों में।
1: ये बिल्कुल नई जनरेशन आजकल की जो कटिंग मांगती है हमारे द्वारा, उसको हम कोशिश करते हैं कि आपने जो मांगा वो हम दे पाए।
0: चलिए अच्छी बात है। आकाशवाणी सासाराम के और कार्यक्रम सुनते हैं।

विविधता होने के कारण आपके प्रोग्राम हमें मोबाइल ऐप पर मिलते हैं और ज्यादातर हम कोशिश करते हैं फोन इन प्रोग्राम से जुड़ने की। और इसमें यूँ नहीं कि हमने फोन लगाया तो इसलिए सुन रहे हैं, हम वैसे भी इस कार्यक्रम को सुनते हैं। यूँ अच्छा लगता है कि दूर दूर छोटा भाई आकाशवाणी सासाराम पर फोन लगाते हैं, वहाँ की कल्चर का हमें पता चलता है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है भारत में, तो अलग अलग श्रोता बंधु फोन लगाते हैं। उस टाइम बहुत अच्छा लगता है कि वाह कहाँ से फोन आया हमारे आकाशवाणी सासाराम बिहार में। दिनों बाद फोन लगाना भी अच्छा लगता है, दूसरों को मौका भी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और इसी बीच में फिर आकाशवाणी के साथ हम फ्रेश सलून का काम भी करते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे कस्टमर बैठे।

0: आकाशवाणी सासाराम को भी सुनते हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: फिल्म है अंधा कानून में एक गीत है, मौसम का तकाजा है, आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज।
0: हम आपको सुना रहे हैं आप ही की पसंद पर ये गीत।

इस गाने के साथ ही हेलो मनपसंद कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओ, हेलो मनपसंद कार्यक्रम के लिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं हर बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0618422110, 0618422110। तो इस नंबर पर आप अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करा सकते हैं। अब दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया।

0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
1: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए

0: ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक, ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते

0: हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में एक विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। लोकधारा कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए टूकू पाठक की गाई ये पूर्वी।

ये हैं ललन सिंह गहमरी।

लोकधारा कार्यक्रम में अभी आपने भोजपुरी लोकगीत सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर महफिल। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में कुछ गजलें और गीत।

शब्द रचना डॉक्टर शफी हसन। जितने भी गम थे दिल के नवाओं में आ गए, हम तो चराग लेकर हवाओं में आ गए। अभी आपने हरिहरन को सुना और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आखिर में गुलाम अली की गई एक रचना। शब्दकार हैं मोहसिन नकवी।

0: जब से उसने शहर को छोड़ा हर रास्ता सुनसान हुआ। मोहसिन नकवी की शब्द रचना, गायक कलाकार गुलाम अली, और इन्हीं रचनाओं के साथ ही आज की ये महफिल अब यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में विविध भारती के मुंबई केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितो ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

बासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था।

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमति और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रचे और इसका संगीत कनू रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका यह विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई, आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनू।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही। हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह

अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

वासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। वासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में वासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और

0: शबाना आजमी की बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 बासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

20 जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये सीख

0: कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। रस रंग के तहत लीजिए सुनिए कुछ एल्बम सॉन्ग्स।

वो मुझको छोड़ जाना चाहता है मगर कोई बहाना चाहता है। जी हाँ, अभी आपने आसिफ बिजनौरी का लिखा गीत सुना। गायक कलाकार थे सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल। अब आइए सुनते हैं श्रीनिवास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें। शब्द रचना है समीर की।

अभी आपने सुनिधि चौहान की गई ये रचना सुनी, और अब आइए सुनते हैं नुसरत फतेह अली खां को।

0: गाई इस रचना से।
1: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

सोनू निगम की गई इसी रचना के साथ ही एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। चित्रपट तराने कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त संजय चतुर्वेदी। स्वीकार कीजिए हमारा सप्रेम नमस्कार। बहुत चाहा नहीं रखूं अपने मन की पीर कागज़ पर, बना दी आंसुओं ने पर तेरी तस्वीर कागज़ पर, तेरी तस्वीर रख कर सामने जब शेर कहता हूँ उतर आती है मुझ में मीराबाई मीर कागज़ पर।

निगाहों में किसी तस्वीर को जड़कर बहुत रोए, तुम्हारे नाम लिखी चिट्ठियाँ पढ़कर बहुत रोए। तुम्हें एक बार दिल ने बेवफा कह तो लिया, लेकिन फिर उसके बाद अपने आप से लड़कर बहुत रोए।

ये दिल सब कुछ गंवाना चाहता है, लेकिन कोई बहाना चाहता है। मुसलसल उम्र भर खामोश रहकर न जाने क्या ये पाना चाहता है।

अश्क पलकों पर ठहर जाए तो आंसू कहियो, और बह जाए तो दरिया की रवानी कहना। लोग चाहे जो कुछ भी कहें, तुम मेरी ही कहानी कहना।

श्रोताओं, आज के चित्रपट तराने कार्यक्रम में गीतों का सफर बस यहीं तक। दीजिए संजय चतुर्वेदी को आज्ञा, नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। एक नज़र हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों पर। जी हाँ, प्रातःकालीन सभा में 7:30 पर आप प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम सुनते हैं नमस्ते रोहतास, और 8:20 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

गीत मालिका के अंतर्गत आप फिल्मी नगमे सुनेंगे 9:10 पर, और कल रविवार है और 10:05 पर हमारे नन्हे श्रोता अपना साप्ताहिक प्रसारण सुनते हैं अंकुर, तो आप भी अवश्य सुनिएगा।

आप हमारे केंद्र से प्रातःकालीन सभा में लोक माधुरी कार्यक्रम सुनते हैं नित्य प्रति 10:30 बजे और रसधार कार्यक्रम सुनिएगा 10:45 पर।

सांध्यकालीन प्रसारण सभा में 5:30 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक प्रसारण विज्ञान एवं पर्यावरण। कल के इस कार्यक्रम में आप मुख्य रूप से सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर की गई भेंट वार्ताएं और साथ ही सुनिएगा पद्मश्री भरत सिंह भारती से की गई बातचीत। संदर्भ होगा विश्व संगीत दिवस। सुनना नहीं भूलिएगा।

गांव घर कार्यक्रम 6:20 पर आप सुनते हैं और क्षमा करेंगे 6:10 पर आप सुनते हैं और लोकधारा कार्यक्रम रात्रि 9:00। श्रोताओं, एक नज़र कल के मौसम पर।

हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और हवा की गति 40 प्रतिशत हो सकती है। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित।

0: विपरीत समाचार पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की यह सभा अब यहीं संपन्न होती है।

0: losing one wicket. India Meteorological Department has issued a red color warning for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for tomorrow. The Met Department has predicted heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। 5:53 पर इसी मीटर पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।